मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 की श्रावण मास की छठी तिथि तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 और 5 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्रीय मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे

0: से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के दो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: दुखों को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगल में हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी हैं। श्री हनुमान संकट मोचन और कृपा निधान भी हैं।
1: रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह

स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

न कोई। जे सुख तो चाहे सदा शरण प्रभु की ली, अर्थात सारे सुखों को देने वाले श्री राम का नाम ही सच्चा नाम है, और वो मिलता है सिमरन करने से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे मोहम्मद रफी, अनुराधा पौड़वाल, सुरेश वाडेकर और साथियों के। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं संत दादू के विचार।
1: इस भौतिक संसार में आनंद सभी का अंतिम काम है। आनंद की अमृत धारा को प्राप्त करने के लिए ही हमारे समस्त क्रियाकलाप होते हैं, किंतु लाख चेष्टा के बावजूद भी उस अमृत तत्व की एक बूंद भी हमारे मुख में नहीं पड़ती। इसका क्या कारण है? यदि हम इस तथ्य पर विचार करें तो निष्कर्ष अमृतत्व की सिद्धि में सतत व्याघात उपस्थित करता है। अतः मन ही हमारा प्रबल शत्रु है, ये इंद्रियों का सम्राट है, जिसे वश में करना ही समस्त प्रकार की साधनाओं का लक्ष्य है। मन उस मतवाले मेडल की तरह है जो पूर्णतः अनियंत्रित होकर महावत के अंकुश की चिंता नहीं करता। मन की शक्ति का अनुमान भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि संख्यातीत साधक भी उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे, किंतु कितने साधकों ने हठी और पागल मन को अंकुश देकर अंतर्मुखी बनाया। मन मरकर भी जीवित हो उठता है। समुद्र में जितनी लहरें हैं, मन में उतने मनोरथ भी पलते हैं।

0: रहते हैं। जैसे जैसे हम इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे, इच्छाएं भी सुरसा की भांति अपना मुख प्रसार करती जाएंगी। अतः इच्छाओं का नियमन आनंद की उपलब्धि के लिए आवश्यक है। इंद्रियां अनेक हैं और सभी अपने अपने रस की प्राप्ति के लिए लालायित रहती हैं। हमें समस्त प्रकार के विषय विकारों से ऊपर उठना होगा। जब तक वशियों की परिसमाप्ति नहीं होगी, तब तक आत्यंतिक कल्याण की उपलब्धि कल्पना मात्र है। वास्तव में सच्चा शूर वही है जो मन की प्रखर धारा को ऊर्ध्वमुखी बनाकर अपने परम आराध्य के चरणों में उसे केंद्रित कर देता है। मन का सहज रूप तब स्पष्ट हो जाता है जब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। ये द्वैत भाव ही माया है जिसके मोह जाल में मूर्ख मन उलझ जाता है। माया के स्थूल और सूक्ष्म दो रूप होते हैं। यदि मन वैराग्य भाव की भूमिका में कंचन और कामनी जैसी स्थूल माया का परित्याग कर एकांतिक साधना की तैयारी के लिए एकांत वन प्रांत में चला भी जाता है, तब भी सूक्ष्म माया उसका साथ नहीं छोड़ती। मान सम्मान प्राप्ति की आकांक्षा बनी ही रहती है। इस छीनी माया का निरसन अति कठिन है और जब तक साधक इससे ऊपर नहीं उठता, तब तक उसे संतत्व की सिद्धि नहीं होती। निर्विकारी और उठस्थ मन को सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती। मन की चंचलता समाप्त करने के लिए कोई आधार तो चाहिए ही। इसके लिए परमात्मा का स्मरण ही दृढ़ आधार है। जब मन पूर्णतः राममय हो जाता है, तब उसकी समस्त चंचलता तिरोहित हो जाती है। जैसे पानी में नमक घुलकर एकाकार हो जाता है, जैसे जल में दूध मिलकर अभिन्न हो जाता है, और जैसे अग्नि के रूप और गुण को तप्त लोहखंड ग्रहण कर लेता है, वैसे ही मन के नियंत्रित हो जाने पर आत्मा और परमात्मा में अविच्छिन्न संबंध स्थापित हो जाता है।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे संत दादू के विचार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कांड।

कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी। बरसात में पशुधन सुरक्षा के विषय में डॉक्टर लाभ सिंह कौशल की वार्ता। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश वीर सिंह बच्चों के स्वास्थ्य पर फास्ट फूड के प्रभाव के विषय में जानकारी देंगे। दामोदर शर्मा के गाये लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर।

प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत की कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रागुन कली में संतूर वादन। कलाकार होंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का के बारे में और सुनवाएंगी उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे जल, जंगल, जमीन।

बारह बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आप सुनेंगे गृहिणी के अवैतनिक कार्यों के मूल्यांकन के विषय में डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह चौहान की वार्ता। कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। चर्चा का विषय होगा वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण। अप टू डेट का विषय होगा डिजिटल लेन देन में बरती सावधानी। और हमारा स्वास्थ्य के तहत हम जानकारी देंगे हेपेटाइटिस के कारण और निवारण के विषय में। शुद्ध और जॉली भल्ला की गायक हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर।

हमारे सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम ये वाणी में शाम 5:30 पर सुनी जा सकेगी चारू शर्मा की वार्ता, जिसका विषय होगा मानव स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आवश्यक है बेहतर वायु। फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा एनजीटी अतुल्य भारत के तहत हम जानकारी देंगे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में, और हेल्थ प्लस का विषय होगा वर्षा ऋतु में आहार विहार।

शाम 6 बजे क्रामेलोक कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी बरसात में आवश्यक शस्य क्रियाओं के विषय में फैज बख्श सैयद की वार्ता। लोकगीतों के साथ हम चर्चा करेंगे कृषक समग्र विकास योजना के बारे में, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री विजय कुमार गोयल की वार्ता, जिसका विषय होगा स्वदेशी और स्वावलंबन से मजबूत होता भारत। फिल्मी गीतों के साथ हम चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस दिवस के बारे में। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा डॉक्टर योगेंद्र सिंह अग्र की वार्ता, जिसका विषय होगा प्रकृति से सीखें सजग रहने के सबक। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे राग यमन में बांसुरी वादन और राग हंस ध्वनि में संतूर वादन। कलाकार होंगे पंडित भोलानाथ और पंडित शिव कुमार शर्मा। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है

वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान गायक कलाकार थे रविन्द्र साठी। मीडियम वेव 196.91 मीटर अर्थात 1530 के दो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं बरसात में पशुधन सुरक्षा के विषय में डॉक्टर लाभ सिंह कौशल की वार्ता।
1: वर्षा काल प्राय जून से सितंबर तक ही माना जाता है। इस मौसम में भीषण गर्मी के उपरांत शीतल ठंडी फुहार जहाँ तन को शीतलता व मन को शांति प्रदान करती है, वहीं इस मौसम में अनेकों पशु रोगों का जन्म होता है। पशुपालक की जरा सी असावधानी कारण पशु रोग ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे पशुपालकों को भारी हानि उठानी पड़ती है। अतः पशुपालक भाई बताई गई बीमारियों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। गलगोटू, इसे HS या हेमरोजेक सेप्टिसिमिया भी कहते हैं, देहाती भाषा में इसे घुरका कहते हैं। ये एक छूतदार रोग है जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इसे संक्रामक रोग है। प्राय वर्षा के प्रारंभ में इसका प्रकोप होता है, जो जानवरों के लार, मल, उत्सर्जन

0: से प्रदूषित जल एवं वायु द्वारा फैलता है। यह सभी पशुओं में होता है, किंतु भैंसों में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। इसमें पशुओं को तेज़ बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री तक आता है। फिर गलकम्बल निचले जबड़े में सूजन आ जाती है। जानवर को सांस लेने में कष्ट होता है, जीभ बाहर लटक जाती है और निकल आती है। दम घुटने से घुरघुर की आवाज़ आती है। जीभ से सूजन व लार आती है और लार टपकती रहती है। समय से चिकित्सा न मिलने पर जानवर 12 से 24 घंटे के अंदर मर जाता है। निदान, स्थानीय पशु चिकित्सक से लक्षण प्रकट होते ही चिकित्सा कराएं तथा प्रतिवर्ष वर्षा से पूर्व अपने सभी जानवरों को HS का टीका लगवाएं। पशुशाला साफ रखें, स्वच्छ जल पशुओं को पिलाएं, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। मरे पशु को गाड़ देना चाहिए, जिससे चील, कुत्ता, कोए, गिद्ध इसको न खाएं तथा ये बीमारी फैलाने में सहायक हैं। दूसरा भी है लंगड़ी बुखार, इसे ब्लैक वाटर या विषहरी भी कहते हैं। इसे परसूजा या लंगड़िया रोग भी कहते हैं। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिकतर पशुओं में फैलता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है। इसमें पशु की 100% मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण, पशु को 3-4 दिन तक लगातार तेज़ बुखार आता है। बाद में ग्रसित होकर अगले बार पिछले पुट्ठे तथा गर्दन में सूजन आ जाती है, जो बढ़ती ही रहती है, जिसके दबाने से ऐसा लगता है कि इसमें हवा भरी हो। साथ ही चर चर की आवाज़ आती है। यह स्थान अत्यंत गर्म दर्दीला होता है, जो बाद में ठंडा पड़ जाता है। चीरा लगाने पर काला बदबूदार खून निकलता है, चमड़ी चटक कर फट जाती है, पैरों में दर्द पशु लंगड़ा कर चलता है। समय से उपचार न मिलने पर पशु की मृत्यु हो जाती है। इसका उपचार केवल स्थानीय अनुभवी पशु चिकित्सक से ही कराएं। इस रोग का एंटी बीकू सीरम व पेंसिलिन इंजेक्शन ही इसमें अधिकतर कारगर है। जैसा कि पहले मैंने कह चुका हूँ कि इस रोग के भी टीके सभी पशुओं का बरसात से शुरू में लगवा देना चाहिए और बीमार पशुओं को अलग रखें, स्वच्छ जल व उपयुक्त आहार दें।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी बरसात में पशुधन सुरक्षा के विषय में डॉक्टर लाभ सिंह कौशल की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारी दिल्ली के दिस से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: पर्यंतः अर्थदण्डः तथा दोषसिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणं च सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्। एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षकस्थानके अभिलिखितदिनाङ्कात् द्विमासाभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत्, तथा च आरोपपत्रप्रस्तुतेः त्रिमासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः सम्पन्नः भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य पवनचन्दना नागाभरत डाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम 1 इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता, अन्येष्वपि कतिपयेषु रोचक विषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री तयोः जीवनयात्रां भावि योजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्। तेनोक्तं यत् तयोः ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, सकारात्मक दृष्टिश्च भारतस्य निज अन्तरिक्ष परितन्त्रस्य सजीव भावनां प्रतिबिम्बयति। प्रधानमन्त्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तरप्रदेश प्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्यास्थितस्य राममन्दिर न्यासाय प्राप्तदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां चतुर्सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्यप्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषणदले पञ्चमसदस्यरूपेण न्यायिक लेखापरीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं द्विसाप्ताहाभ्यन्तरे स्वप्रथमस्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिर दान चौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् एकं स्वर्णपदकं, त्रीणि रजतपदकानि, एकं कांस्यपदकं च एवम् आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस ले

0: की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: उस व्यक्ति की गलती नहीं होती, हम जितना जल्दी समझेंगे उतना आसान होगा इसका इलाज। और
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in the protest over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar's State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6

0: है क्योंकि इनकी मात्रा के बारे में प्रायः वैज्ञानिक जानकारी का अभाव होता है। स्वादिष्ट होने की वजह से बच्चे फास्ट फूड की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, हालांकि बड़े व बुजुर्गों में भी इसका आकर्षण कम नहीं है। बढ़ते हुए वयस्क बच्चों का स्वास्थ्य फास्ट फूड के सेवन की वजह से सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होता है। हानिकारक प्रभावों में जो बच्चे सिर्फ फास्ट फूड पर ही निर्भर रहते हैं, उनकी वृद्धि सामान्य बच्चों की तुलना में कम होती है। इनके कुपोषण का शिकार होने की अधिक संभावना रहती है। चूंकि फास्ट फूड खाने के बाद भूख मर जाती है, अतः बच्चे घर पर सामान्य भोजन भी नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वजन व लंबाई का बढ़ना कम हो जाता है। साथ ही साथ पोषक तत्व जैसे विटामिन व मिनरल्स की भी कमी होने लगती है। कुछ बच्चे जो सामान्य भोजन के बावजूद अधिक वजन वाले फास्ट फूड का सेवन करते हैं, उनमें ओवरवेट व मोटापे जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं बच्चों में बड़ा होने पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप व हृदयघात जैसी बीमारियों की संभावना बहुत अधिक होती है। फास्ट फूड का सेवन करने वाले बच्चों की बुद्धि का विकास भी सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है। अधिक कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने वाले बच्चों की हड्डियां कैल्शियम की कमी की वजह से कमजोर हो जाती हैं। अधिक तले हुए फास्ट फूड ऑक्सीडेंट्स की अधिक मात्रा की वजह से कैंसर जनित होते हैं। समाज में फास्ट फूड के प्रचलन के कारणों में आधुनिक तकनीक का विकास व अतिविकसित सूचना तंत्र प्रमुख कारण है। तकनीकी विकास की वजह से फास्ट फूड बनाने की ऐसी विधियां विकसित की गई हैं जिनकी वजह से फास्ट फूड्स को जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सकता है। कई नए किस्म के फास्ट फूड विकसित करने में भी खाद्य तकनीकी का हाथ है। अतिविकसित सूचना तंत्र की वजह से फास्ट फूड का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। व्यावसायिक विज्ञापन इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। दूसरा कारण है खाद्य एवं पोषण शिक्षा का अभाव। खाद्य एवं पोषण शिक्षा के अभाव की वजह से लोग वो बच्चे असंतुलित आहार व इसके महत्व के प्रति अनभिज्ञ हैं। शहरों में चौराहे, बाजार, यहाँ तक कि गली मोहल्लों में भी फास्ट फूड की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दुकानें व घरों में फास्ट फूड को पहुंचाने की व्यवस्था ने फास्ट फूड कल्चर को बढ़ावा दिया है। बदलती हुई भोजन करने की आदतें भी एक कारण है। बच्चों में सुबह के नाश्ते की जगह फास्ट फूड का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वयस्क बच्चों में कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स का अधिक प्रचलन देखने को मिल रहा है। बच्चों में फास्ट फूड के प्रचलन की रोकथाम के कुछ प्रमुख उपाय हैं, जिनमें सबसे पहला है खाद्य एवं पोषण शिक्षा। बच्चों को स्कूली शिक्षा के जरिए संतुलित भोजन के बारे में, पोषक तत्वों के महत्व के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ संतुलित भोजन, पोषक तत्वों की कमी व फास्ट फूड के प्रचलन से होने वाली बीमारियां व हानिकारक दुष्प्रभावों के बारे में भी अवगत कराना आवश्यक है। बच्चों के माता पिता से अनुरोध है कि वे बच्चों में फास्ट फूड्स को डिस्करेज करें, उन्हें समय से अपने साथी भोजन कराएं। भोजन में हरी सब्जी, फलों, दालों, सलाद, दही, कार्बोहाइड्रेट्स व वसा नियमित प्रयोग करें। बच्चों में भोजन करने की अच्छी आदतों को विकसित करें। चूंकि बच्चे स्वाद की वजह से फास्ट फूड की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, अतः घरों में बनने वाले खाने को भी अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाएं। खाना बदल बदल कर बनाएं, क्योंकि एक ही तरह का खाना बच्चों में घर के खाने के प्रति अरुचि पैदा करता है।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी बच्चों के स्वास्थ्य पर फास्ट फूड के प्रभाव के विषय में डॉ. मुकेश्वर सिंह की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देश गान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेश्वर में देशकान। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।
1: मैं सभी कष्टों को सह सकूं, महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है, रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से।

0: लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा

0: विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कल सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय SIT का गठन किया है। इस बीच इस मामले में अयोध्या में कल एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि इस अवसर पर श्री योगी गोरक्षपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए कल मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है।
3: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मनीषा एवं सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना गया है। श्री योगी ने कहा कि गुरु शिक्षा ही नहीं देते, जीवन को दिशा भी देते हैं। गुरु स्वयं ज्ञान का आलोक हैं, जो शिष्य को अज्ञान रूपी तम से निकालकर सत्य, संस्कार और प्रकाश के पथ पर अग्रसर करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अपने गुरुजनों का सदैव स्मरण रखें, उनके दिए आदर्शों को जीवन में उतारें। श्री योगी ने कहा कि इससे लोगों का विकास निश्चित होगा तथा विकसित प्रदेश का मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराए।

0: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
1: प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। अगले माह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए नागरिकों से न्यू इंडिया के निर्माण से जुड़े अपने विचार, सुझाव और विजन साझा करने का आग्रह किया गया है। इनमें से चुने गए सुझावों को प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार और सुझाव MyGOV प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। बलरामपुर जिले की सदर सीट से पूर्व विधायक और कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हनुमंत सिंह का कल लखनऊ में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में हनुमंत सिंह ने अपनी सेवा भावना एवं संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी परिवार की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रदेश एवं समाज की असीम सेवा की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में कल हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी तथा बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर।
5: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, डीओ की दूसरी सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब छात्रों की नजर तीसरे राउंड पर है। ये चरण उन विद्यार्थियों के लिए अहम साबित हो सकता है जिन्हें अब तक मनचाहा कॉलेज या पाठ्यक्रम नहीं मिला है। हर वर्ष दूसरे राउंड के बाद सीटों में बड़ा फेरबदल होता है और कई कॉलेजों में नई सीटें उपलब्ध हो जाती है। पहले और दूसरे राउंड के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी सीट अपग्रेड कर लेते हैं या फिर आईआईटी, एनआईटी, जामिया, बीएचयू या अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों में प्रवेश मिलने पर डीयू की सीट छोड़ देते हैं। ऐसे में तीसरे राउंड में कई कॉलेजों में रिक्तियां सामने आएंगी। तीसरे राउंड में सबसे अधिक बदलाव उन कॉलेजों में देखने को मिल सकता है जहां बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के छात्र दाखिला लेते हैं। वहीं शीर्ष कॉलेजों में भी कुछ सीटें अपग्रेड के कारण खाली हो सकती हैं।

वरिष्ठ छात्र दोस्ती का हाथ बढ़ाकर फ्रेशर्स का स्वागत करेंगे, नृत्य संगीत कार्यक्रमों के साथ मनोरंजन करते दिखेंगे, तो वहीं प्रोफेसर रैगिंग और नियम कायदों को लेकर जागरूक बनाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, नए विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों का पहला दिन यादगार और सहज बनाने के लिए कुछ ऐसी ही तैयारियां की गई हैं। डीयू के कॉलेजों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सभी कॉलेज नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कॉलेज के बारे में जानकारी पाने के साथ ही पुराने छात्रों से घुल मिल सके, इसके लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कॉलेजों में ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के साथ सत्र की शुरुआत होगी, जहां विद्यार्थियों को कॉलेज पाठ्यक्रम सुविधाओं, सोसाइटी और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। किसी कॉलेज में नए छात्रों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाएगा तो कहीं नए साथियों के साथ मिलकर फ्रेशर्स पौधारोपण करेंगे। संस्थानों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, इंटरैक्टिव सत्र और विभागीय परिचय कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। श्रोताओं, इसके साथ साथ कॉलेज परिसर में पहले दिन छात्रों को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो या फिर कोई दुविधा हो तो उसकी मदद के लिए खास हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने 4 वर्षीय स्नातक पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया है। ये व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। शुरुआत में वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी और संस्कृत विषयों में 1 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में केवल वही विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं जिन्होंने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो और निर्धारित पात्रता को पूरा किया हो। 1 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम शुरू होने से वर्तमान के 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों प्रकार के कार्यक्रम साथ साथ संचालित किए जा सकेंगे। विद्यार्थी कोई भी पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। वहीं 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में सीमित सीटों के कारण कॉलेजों में प्रवेश नहीं पाने वाले विद्यार्थी भी अब बिना नुकसान उठाए एसओएल के माध्यम से 1 वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं।

कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसके लिए शहरी स्तर पर परिवहन निगम भी तैयारियों में जुट गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शहर के हिसाब से कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या और फेरे निर्धारित किए जाएंगे। अभी तक पर्याप्त बस हैं, पर आगामी स्थिति को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे कि कोई असुविधा न हो। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या और फेरों में बढ़ोतरी की जाएगी। शहर से सबसे अधिक कांवड़िये सौरव जाते हैं। वर्तमान में वहां के लिए करीब 50 बसें संचालित की जा रही हैं। पहली फेर में बढ़ोतरी की जाएगी, उसके बाद अगर अतिरिक्त भीड़ होती है तो बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार के लिए भी लोग

जाते हैं, पर उनकी भीड़ ज्यादा नहीं होती। ऐसे में 10 बसों का संचालन किया जा रहा है। पूर्व में हरिद्वार की बस आईएसबीटी बस स्टैंड से मिलती थी, पर फौजी नगर बस डिपो बनने के बाद अब वहीं से बसों का संचालन किया जा रहा है। तो सौरव जाने के लिए श्रद्धालुओं को आईएसबीटी से ही बस मिलेगी।

श्रोताओं, आज हेपेटाइटिस दिवस है। हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज न कराने से लिवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है, जबकि इनका इलाज संभव है। मगर हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित मरीजों में लक्षण नहीं आते, इसके चलते मरीज जांच नहीं करा पाते और बीमारी बढ़ती चली जाती है। आज विश्व हेपेटाइटिस डे पर डॉक्टर मरीजों को बीमारी से बचाव और इलाज के लिए जागरूक करेंगी। हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित मरीजों में लक्षण नहीं आते, इसलिए मरीज जांच भी नहीं कराते। लिवर सिरोसिस होने पर जांच में हेपेटाइटिस की पुष्टि होती है। ऐसे में हेपेटाइटिस बी और सी की निशुल्क जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी और सी की दवाएं भी यहां पर उपलब्ध हैं। इससे वायरल लोड कम हो जाता है और लीवर को बचाया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनके घर में किसी को भी हेपेटाइटिस बी और सी है, उन्हें अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। बच्चे और जिन लोगों में बीमार होने पर खून चढ़ा है, जिन्होंने टैटू बनवाया है, उन्हें वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए। श्रोताओं, गर्मी और बारिश में दूषित पानी और खाद्य पदार्थ का सेवन करने से हेपेटाइटिस ए और ई की समस्या बढ़ने लगती है। इसमें उल्टी, पेट दर्द, फूक न लगना और बुखार आना ये आम लक्षण हैं। अधिकांश मामलों में हेपेटाइटिस ए और ई 15 से 20 दिन में ठीक भी हो जाता है। 1% केस में बीमारी बिगड़ सकती है, तो इससे बचाव के लिए हेपेटाइटिस ए का टीका जरूर लगवाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रखें अपना और अपनों का ख्याल।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा आज कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में केंद्र बनाए गए हैं। ये पहला अवसर होगा कि कंपार्टमेंट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं को एजेंसी के माध्यम से स्कैन कराकर मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन भेजा जाएगा। इस तरह परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। ये परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। प्रथम पाली में सुबह 8:30 से 11:45 तक हाईस्कूल की और द्वितीय पाली में दोपहर 2 से 5:15 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा कराई जाएगी। कंपार्टमेंट की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन भी कराया जा चुका है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को प्रशिक्षण देकर नियुक्त भी कर दिया गया है।

परीक्षार्थियों के लिए एक और सूचना है। देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थानों और अन्य शीर्ष बिजनेस स्कूलों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट के यानी कि कैट 2026 का आयोजन इस वर्ष IIM इंदौर करेगा। परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और आवेदन प्रक्रिया कैट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कैट 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 3 अगस्त से शुरू होंगे, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। इस परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 3 सत्रों में किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 4 नवंबर को जारी किए जाएंगे, वहीं परीक्षा परिणाम जनवरी 2027 के पहले सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है।

जो लोग रेल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 04173 और 04174 प्रयागराज वेरावल प्रयागराज स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ये ट्रेन प्रयागराज से 6 अगस्त से 24 सितंबर तक हर गुरुवार को और वेरावल से 7 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन प्रयागराज से गुरुवार को सुबह 10:10 पर चलकर शाम 6:20 पर ईदगाह जंक्शन और अगले दिन शाम 6:15 पर वेरावल पहुंचेगी। ये ट्रेन वेरावल से शुक्रवार रात 10 बजे चलकर अगले दिन रात 8:15 पर ईदगाह जंक्शन स्टेशन पहुंचेगी। श्रोताओं, इसके साथ साथ रेलवे ने गाड़ी संख्या 64167 और 64168 गाजियाबाद टुंडला दैनिक ईएमयू का परिचालन 15 जुलाई से अस्थायी रूप से आगरा सिटी स्टेशन तक बढ़ा दिया है। गाजियाबाद से प्रातः 6:10 पर चलकर सुबह 11:25 पर टुंडला और उसके बाद 11:35 पर एतमादपुर, 12:13 पर यमुना ब्रिज और 12:45 पर आगरा सिटी स्टेशन पहुंचेगी और वापसी में ट्रेन आगरा सिटी स्टेशन से दोपहर 2:20 पर चलकर 2:35 पर यमुना ब्रिज, 3:01 पर एतमादपुर और 3:30 पर टुंडला पहुंचेगी।

जलापूर्ति बाधित होने पर टैंकर मंगाने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-270-2722 या कंट्रोल रूम नंबर 8192095401 पर संपर्क कर सकते हैं। इससे संबंधित क्षेत्र में पानी का टैंकर उपलब्ध हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, इस टोल फ्री नंबर को पुनः नोट कर लीजिए या अगर आपने नोट कर लिया है तो इसका मिलान कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-270-2722 और दूसरा नंबर है 8192095401।

श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। समला पुत्री कौरी शंकर निवासी नगला सुरई थाना क्षेत्र हाट आगरा से दिनांक 11 जून 2026 से लापता है। समला की उम्र 13 वर्ष, कद 3 फुट 6 इंच, चेहरा गोल और रंग सांवला है। गुमशुदगी के समय समला ने काला सूट और सलवार पहनी हुई थी। समला के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना चित्रा हाट आगरा के पते पर

एक अन्य सूचना के अनुसार पूजा पत्नी राजेंद्र सिंह निवासी नगला सरस्वती सेवला सराय थाना सदर बाजार आगरा से 8 जून सन 2026 से लापता है। पूजा की उम्र 26 वर्ष है। गुमशुदगी के समय पूजा ने आसमानी रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। पूजा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना सदर बाजार आगरा के पते पर सूचित करें। और एक अन्य सूचना के अनुसार पूजा चाहर पत्नी संतोष सोलंकी निवासी जकोठा थाना मलपुरा आगरा से दिनांक 13 जून सन 2026 से लापता है। पूजा की उम्र 25 वर्ष है। गुमशुदगी के समय पूजा ने काली साड़ी पहनी हुई थी। पूजा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना मलपुरा आगरा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

शुद्ध राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला। ये केवल मेला नहीं, सनातन की आत्मा का विराट उत्सव है। यहाँ गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचते ही प्रदेश, भाषा, जाति और संस्कृति की सभी सीमाएं स्वतः विलीन हो जाती हैं। राजस्थान की पगड़ी, गुजरात की रंगत, मध्य प्रदेश की सादगी, बंगाल की भक्ति और दक्षिण भारत की श्रद्धा, सब कुछ एक ही सूत्र में बंध गया है। गोवर्धन के जग प्रसिद्ध मुड़िया मेले के तीसरे दिन गोवर्धन मानो संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत स्वरूप बन गया। चारों ओर एक ही उद्घोष गूंज रहा था, राधे राधे, गिरिराज महाराज की जय। सोमवार को हर दिशा से श्रद्धालु गोवर्धन पहुंचे। भक्ति का समंदर ऐसा उमड़ा कि परिक्रमा मार्ग पर मानव श्रृंखला बन गई। 5 दिवसीय राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले के तीसरे दिन सोमवार को गिरिराज प्रभु की सप्त कोसीय परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 21 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की ऐसी अखंड मानव श्रृंखला दिखाई दी जिसका ओर छोर ही नजर नहीं आ रहा था। भीषण गर्मी और तपती धूप भी श्रद्धालुओं के विश्वास के आगे बेबस नजर आई। दोपहर की धूप में भी परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से खचा खच भरा रहा। जैसे जैसे शाम ढली, जयकारों की गूंज और तेज होती चली गई और रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही चली गई। इस परिक्रमा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के श्रद्धालु हैं। कोई परिवार सहित आया है तो कोई संतों की टोली के साथ। किसी की भाषा अलग थी, किसी की वेशभूषा, लेकिन सभी के संवाद का माध्यम केवल एक ही, राधे राधे। इशारों और मुस्कान के साथ श्रद्धालु एक दूसरे का मार्गदर्शन करते रहे।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम वन की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम वन, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
1: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
1: हम बहुत खुश हैं हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाकर।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
4: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल।

0: President Munmu congratulated Valluri Ajay Babu on securing the silver medal in the men's 79-kilogram weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated Bindya Rani Devi Sorokhaibam for winning bronze in the women's 58-kilogram event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neena Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. After protest, Parliament to debate tougher paper leak bill, leads Hindustan Times. Pradhan resignation fails to break Parliament logjam as opposition blocks business, headlines the Statesman. The Pioneer in its editorial piece, A Digital Fix for a Crisis of Trust, says restoring trust in examination system demands a secure and tamper-proof architecture, and who better than Nandan Nidekani to help build it. India's weightlifters continue to do the heavy lifting, bring home three more Commonwealth Games medals, reports Hindustan Times. Kiyoko Higashino, who made Japanese crime fiction a global obsession, dies at 68, reports the Indian Express. And finally, the Odyssey nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। और दौलती मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉर्टपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागभारत दाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दीगर दिलचस्प मौजूदात पर खास तौर से तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई, जोश और मुस्बत अंदाजे फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निजाम के मुतहर्रिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम 1 की कामयाबी की सताइश की थी।
3: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।

0: बिहार सरकार ने उन अफराद के खिलाफ केस और दीगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर एहतजाज में हिस्सा लिया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बिहार के महकमे दाखिला की तरफ से जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से कबल रियासत में कहीं भी एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कोई ताजीरी, इंतकामी या नामुआफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दत तक दर्ज कराई गई सभी FIR फौजदारी शिकायतों और वजह बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कानूनी अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक वक्त की मजकूरा हद से कबल दाखिल किए गए केसों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह यकीन दहानी भी कराई है कि इस मुद्दत से पहले के वाकयात के सिलसिले में मुस्तकबिल में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: आसाम के उमूर दाखिला और सियासी उमूर के महकमे ने भी कहा है कि नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर एहतजाज के सिलसिले में रियासत में केस दर्ज किए गए थे और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता रियासती सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुजाहिरों में शामिल होने वाले अफराद के खिलाफ रियासत के अंदर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई नामुवाफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। वजीर आजम ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। इधर तृणमूल कांग्रेस से अलहदा होने वाले ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को भी NDA की मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाहती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदामात के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैनुल अक्वामी नेटवर्क को बरूए कार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत की हामिल बैनुल अक्वामी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने के लिए भारत की मुतनव्वे सियाहती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवीयत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के जेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने कहा है कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनत को मजबूत करने, मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ्त की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयांग से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिश्री ने इस नजरिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार हैं और तिजारती और इक्तिसादी राबतों में बाहमी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया।

0: से कबल जनाब मिस्री ने बीजिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के राब्तों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराय स्वामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर वार्निंग जारी की है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि रियासत में कई मकामात पर कल रात से लगातार बारिश होने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उत्तराखंड में देहरादून और कई दीगर हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज आज बंद हैं। लगातार बारिश होने से पहाड़ी खित्तों में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। देही इलाकों में तकरीबन 50 सड़कों का रास्ता बंद है और बहाली का काम जारी है। अलबत्ता चार धाम यात्रा का रास्ता फिलहाल खुला है और इंतजामिया सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में अगले चंद रोज तक मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर औसत बारिश होने जबकि कई मकामात पर तेज बारिश होने की भी पेशगोई की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनी नौए इंसान की बहबूद फितरत को महफूज रखने और इसका ख्याल रखने में पिनहा है। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की रिवायत भी सभी को इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आज पीरू के यौम आजादी के मौके पर वहां की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत पीरू के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वजारत खारजा ने एक तिजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद कल भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ऑलेक्जेंडर पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने तिजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकड़ ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुटर F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान शर्मिला धनकड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों के उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनकड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने भी मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। सदर जमहूरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सर्वेश को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शानदार कारकर्दगी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके अलावा वेट लिफ्टर वलूरिया अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी का एक एक तमगा जीता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मर्दों के वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल करने पर वलूरी अजय बाबू के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खवातीन के शॉर्टपुट F57 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर शिल्पा के शैला को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनका अज्म और मुसलसल कोशिश करते रहने का जज्बा सभी को तरगीब देता है। मर्दों की 16वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 आज सुबह तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में शुरू हो रही है। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मर्दों की बेहतरीन हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी जो 12 दिन यानी 8 अगस्त तक मुकाबला करेंगे जिसमें कौमी चैंपियन का फैसला होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिवीजन सी के पूल ए मैच में आसाम और मिजोरम के दरमियान मुकाबले से होगा। یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔

0: अहमद। शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इंकलाब की छह सुर्खी है, पेपर लीक के खिलाफ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। अखबार प्रताप लिखता है, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 21% इजाफा, 5 गुना से ज्यादा की छलांग। अखबार ने तजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की मौत के वाक़े पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यूक्रेन के सफीर को तलब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वजीर आला रेखा गुप्ता के हाथों त्यागराज स्टेडियम में 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामेनाई के इस बयान को अहमियत दी है कि अमन मुआहदा लबनान पर इसराइली हमलों के खात्मे से मशरूत। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह है, गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद नेतन्याहू अमरीका रवाना।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है। वजीर आजम ने विक्रम वन की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

नुसरत फतेह अली खान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रही थी जावेद अख्तर की शब्द रचना। सरदा उदित नारायण का फिल्म थी और प्यार खो गया।

साथियों अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है कयामत से कयामत तक। स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। संगीतकार है आनंद मिलिंद।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की शब्द रचना। स्वर थे कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की फिल्म थी बादल। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है दिल का रिश्ता, स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल है समीर की, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है उदित नारायणा और अलका याग्निक के। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है लावारिस।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का।
1: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ पर हुए समारोह का कलेक्ट्रेट सभागार भैरू में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह एवं जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षक शिक्षिकाओं शिक्षा मित्रों अनुदेशकों एवं रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने संबंधी प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही योजना के अंतर्गत शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से लाखों शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक विशेष शिक्षक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत रसोइये तथा उनके आश्रित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश एवं प्रदेश के लिए विकास का स्वर्णिम काल है। प्रदेश सरकार शिक्षा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया कि वे समय से विद्यालय पहुंचें, विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी संपन्न संस्कारयुक्त एवं राष्ट्र भावना से उत्प्रोत शिक्षा प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संभल में संभव अभियान 6 के अंतर्गत जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित होने वाले 3 माह के विशेष अभियान के तहत जनपद संभल में जून 2026 के वजन एवं लंबाई मापन के आधार पर चिन्हित 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा सभी चिन्हित बच्चों को विभागीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद सौंपा गया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अभियान के प्रभारी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 2 बार अपने आवंटित SAM बच्चे के घर भ्रमण करेंगे तथा परिवार को कुपोषण वृद्धि रुकावट संतुलित एवं पौष्टिक आहार खानपान की आदतों में सुधार बच्चों की विशेष देखभाल तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री से पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के संबंध में जागरूक करेंगे। बच्चों का नियमित वृद्धि मापन कराया जाए। शासन

0: संचालित पोषण संबंधी योजनाओं एवं सुविधाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाया जाए तथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं ताकि परिवारों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। अभियान के अंतर्गत जिन सेम बच्चों के परिवार मछली का सेवन करते हैं उन्हें 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों से उपलब्ध मछली का लाभ दिलाया जाएगा जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन उपलब्ध हो सके। वहीं जिन परिवारों में मछली का सेवन नहीं किया जाता उन्हें पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित संभव अभियान 6 के दौरान प्रत्येक स्थिति में सभी 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को अभियान की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के बैठकों का आयोजन किया गया। भैजोई कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में किया गया जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं एवं मंदिर के पुजारियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर वार्ता की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद के प्रमुख मंदिरों को लेकर चर्चा की गई। मंदिरों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप में पीने के पानी की स्थिति, मंदिरों एवं मंदिरों को आने वाले मार्गों तथा प्रमुख मार्गों पर साफ सफाई की स्थिति को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि हैंडपंप के पास जल भराव न हो, शोकपिट की व्यवस्था की जाए तथा मंदिरों के पास प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि
1: पेयजल को लेकर के, सड़क मरम्मत को लेकर के, मोबाइल टॉयलेट जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो लगाने को लेकर के, कांवड़ शिविरों को लेकर के इसी प्रकार की मीटिंगें थाना, सर्कल, तहसील स्तर पर भी संचालित की जा रही है। अधिकांश मीटिंगें हो चुकी है। जो भी समुचित व्यवस्थाएं पिछले साल प्रबंध कराए गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इन सभी प्रबंधों को कराया जा रहा है।
2: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
3: उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति लखनऊ के निर्देश में जनपद मिर्जापुर में युवाओं को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए आगामी 30 जुलाई को 5 किलोमीटर की एक रेड एंड मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जो कि PFE गेट बनौंधा से शुरू होकर RTO ऑफिस होते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय परिसर के फुटबॉल स्टेडियम में 2 बार चक्कर लगाने के पश्चात समाप्त होगी। विजेताओं को नगद धनराशि के साथ साथ स्टेट तथा नेशनल लेवल रेड एंड मैराथन में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी 17 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं से दिए गए ऑनलाइन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके 30 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे से प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। मिर्जापुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और अनुदान का लाभ उठाकर मिर्जापुर के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली इस फसल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि जनपद मिर्जापुर में वर्तमान समय में 190 किसान 100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वर्ष 2026-27 में स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ाकर 150 एकड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि किसानों को इस फसल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 90,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों पर शुरुआती लागत का बोझ कम हो रहा है और अधिक से अधिक किसान बागवानी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के वाले किसान एक फसल के प्रति एकड़ 12 से 14 लाख की आय अर्जित कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। फसल की तुलाई, पैकिंग और विपणन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों और दर्शनार्थियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। धाम में बढ़ती सुविधाओं के साथ त्रिकोण पथ पर स्थित प्रमुख मंदिरों के विकास की रूपरेखा बन रही है। गत दिवस केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जिले में पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया और कहा कि आज जहां मिडिल ईस्ट के देश युद्ध के चपेट में है तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार योजनाओं का लाभ मिल रहा है जिसका नतीजा है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं और बता रहे हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी।
4: देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए आदरणीय

0: प्रधानमंत्री जी ने काम किया जिसका नतीजा है किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
1: मिर्जापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद की बाढ़ से प्रति संवेदनशील तहसील सदर एवं चुनार में क्रमशः SDRF एवं PAC की तैनाती कराई गई है। विगत वर्षों में बाढ़ के आंकड़े के अनुसार जनपद में

0: क्रमशः एसडीआरएफ एवं पीएफई की तैनाती कराई गई है। विगत वर्षों में बाढ़ के आंकड़े के अनुसार जनपद में कुल 404 ग्राम, फदर के 220 ग्राम और चुनार के 184 ग्राम बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। जनपद की तहसील चुनार में तैनात पीएफई के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गत दिनों तहसील प्रशासन एवं उप जिलाधिकारी चुनार की उपस्थिति में बालूघाट चुनार पर राहत एवं बचाव के दृष्टिगत मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग परीक्षण किया और रेस्क्यू के तकनीकी पर अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में जनपद के आपदा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया और पूर्ण रूप से मॉक एक्सरसाइज को सफल बनाने में हर संभव सहयोग किया। जनपद न्यायालय मिर्जापुर में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिषद मिर्जापुर, बाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मढ़ियान एवं राजस्व विभाग में संबंधित 12 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

साथियों, कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत अभी आपने सुना फिल्म सरस्वती चंद्र से, स्वाति लता मंगेशकर और मुकेश की। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार है राजा वैद्य अली खान, संगीतकार है मदन मोहन। फिल्म का नाम है मेरा साया।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना। स्वर थे मोहम्मद रफी और नंदा के, फिल्म थी जब जब फूल खिले। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है तीसरी मंजिल। स्वर है मोहम्मद रफी का, गीतकार है मजहर सुल्तानपुरी, संगीतकार है आरडी परमन।

शिता मोहम्मद रफ़ी की गाय इस गीत के साथ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं दामोदर शर्मा की गाय कुछ लोकगीत।

दामोदर शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का आरंभिक गीत है राहत फतेह अली खान के स्वर में। गीतकार हैं नुसरत फतेह अली खान और मनोज मुंतशिर। धुन बनाई है नुसरत फतेह अली खान ने। फिल्म का नाम है बत्ती गुल मीटर चालू।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

साथियों, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह, मनी महादेवन, रवि मिश्रा और अर्षा के स्वरों में। फिल्म थी राजी।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं राग गुनकली में। संतूर वादन कलाकार हैं पंडित शिव कुमार शर्मा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का राग कुनकली में संतूर वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 11 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का।

कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियों ने कदम रखा और देखते ही देखते पूरे बॉलीवुड पर वो छा गईं। इस लिस्ट में रवीना टंडन से लेकर करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, जूही चावला का नाम शामिल था। लेकिन इस दौर का एक और मशहूर नाम था जिसमें उस दौर के टॉप सुपरस्टार अक्षय कुमार और आमिर खान के साथ कई हिट फिल्में भी थीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उस अभिनेत्री के साथ जो उनके करियर में बाधा बन गया? आज के कार्यक्रम आज के कलाकार में हम जानेंगे उनके बारे में और उनका नाम भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं गीतों के सफर पे और सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने वाले हैं वो अभिनेत्री हैं आयशा जुल्का, 90 के दशक की सुपरहिट हीरोइन। आयशा का आज जन्मदिन भी है। 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में आयशा का जन्म हुआ। आयशा के पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। बचपन से ही आयशा की फिल्मों में बेहद रुचि थी। जब वे 11 साल की थी तभी अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई आ गईं। आयशा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग में एक्टिंग से डेब्यू किया। इसके बाद वो कई छोटी बड़ी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन कौन जानता था कि ये जो बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली आयशा एक दिन टॉप की हीरोइन बन जाएंगी। आयशा ने 90 के दशक में खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, बलमा, रंग और वक्त हमारा है जैसी कामयाब फिल्में दी। कई साल बॉलीवुड छोड़कर एक बिजनेस वूमेन बन चुकी आयशा अपने बॉलीवुड करियर के दौरान अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी काफी चर्चा में रहीं। अगर हम लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर आयशा की पहली फिल्म की बात करें तो 1991 में आई कुर्बान थी। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान थे। आयशा जुल्का ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। साल 1992 में फिल्म जो जीता वही सिकंदर में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। इस फिल्म ने उनके करियर को शिखर पर पहुंचा दिया। इस फिल्म का गाना पहला नशा इतना सुपरहिट हुआ जो आज भी लोगों की जुबान पर और दिल पर छाया रहता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री आयशा चोलका की। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के जरिए आयशा ने स्टारडम की इबारत लिखी और वह उस दौर की सबसे पॉपुलर हीरोइन की लाइन में आकर खड़ी हो गई। उनके पास इतनी फिल्में थीं कि उन्हें दिन में 2-3 शिफ्ट में काम करना पड़ता था। इस दौरान उनकी बलमा, संग्राम, दलाल, रंग जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई। आयशा ने उम्र में 22 साल बड़े मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म दलाल में काम किया था। यह फिल्म उनके जीवन के लिए दुर्भाग्य साबित हुई। दरअसल आयशा का आरोप था कि उन्हें बिना बताए फिल्मकार पार्थ घोष और प्रकाश मेहरा ने फिल्म में एक इंटीमेट सीन के लिए उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था, जबकि आयशा ने फिल्म साइन करने से पहले ही निर्देशकों को सख्ती से कहा था कि वह फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं करेंगी। और यही विवाद इतना ज़्यादा गहरा गया कि उन्हें फिल्मी करियर के लिए बाधा बनता चला गया। इस फिल्म के बाद आयशा ने कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। असल में फिल्म के बाद मेकर्स उन्हें इसी तरह की कम बजट वाली फिल्मों की उम्मीदें करने लगे। इसका असर यह हुआ कि आयशा का जो करियर था वो पूरी तरह से खराब होने लगा। वहीं मिथुन चक्रवर्ती को भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि 1993 से 1996 तक मिथुन की कई फिल्में फ्लॉप रहीं और कुछ तो इतनी खराब थीं कि वे डिजास्टर साबित हुए। भले ही आयशा बड़े पर्दे से दूर हुई हो, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ आज भी जुड़ी रहती हैं।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज हमने कितनी सारी बातें की अभिनेत्री आयशा जुल्का के ऊपर। आयशा जुल्का अपने फिल्मी करियर में जितनी चमकी हैं, हम आशा करते हैं कि वो अपने बिजनेस करियर में भी उतनी ही चमकती रहें। इसी होप के साथ आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है, जिसमें जल, जमीन और जंगल तीन मुख्य स्तंभ हैं। ये तीनों हमारे जीवन के आधार हैं और इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन संसाधनों के माध्यम से प्रकृति न केवल हमें जीवन प्रदान करती है, बल्कि हमारे अस्तित्व को भी सुनिश्चित करती है। इन तीनों धरोहरों का संरक्षण हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल, जमीन और जंगल, हम इन तीनों धरोहरों का महत्व, उनकी वर्तमान स्थिति और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जल को जीवन का स्रोत कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से घिरा है, लेकिन इसमें केवल 2.5% ही मीठा जल है, जिसे हम पीने योग्य मानते हैं। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। दुनिया के कई हिस्सों में जल की कमी से लोग परेशान हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित शहरीकरण और अत्यधिक जल दोहन के कारण यह समस्या और भी बढ़ गई है। इसके अलावा जल स्रोतों का प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे पीने योग्य जल की उपलब्धता में भी कमी आ रही है। अब ऐसे में क्या जरूरी हो जाता है? जल का संरक्षण समय की मांग है। हमें जल संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे, जैसे कि वर्षा जल संचयन कीजिए, ड्रिप इरिगेशन और जल पुनर्चक्रण। इसके अलावा जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने भी होंगे। अगर हम आज भी इस दिशा में कदम नहीं उठाते हैं, तो भविष्य में हमें जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब बात अगर हम करें जमीन की, तो जमीन हमारे लिए क्या है? जीवन का आधार है। यह हमें भोजन, आवास, संसाधनों का एक स्थायी स्रोत प्रदान करती है। जमीन पर ही हमारे कृषि कार्य होते हैं, जो हमें भोजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा जमीन का उपयोग आवास निर्माण में, उद्योग में और अन्य विकासात्मक गतिविधियों में भी किया जाता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें, तो जमीन का अत्यधिक उपयोग और अनियंत्रित विकास ने भूमि क्षरण की जो समस्या है, उसको भी जन्म दिया है। कृषि के लिए अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, वनों की कटाई और अतिक्रमण के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसके अलावा शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण उपजाऊ जमीन का दायरा भी है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। जमीन का संरक्षण हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें कृषि के सतत तरीकों को अपनाना चाहिए, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखे। जैविक खेती, फसल चक्रीकरण और वृक्षारोपण जैसी विधियों को अपनाकर हम जमीन के क्षरण को रोक सकते हैं। इसके अलावा हमें शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए जमीन के उपयोग में संतुलन बनाना होगा, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह संसाधन सुरक्षित रहे। और अब बात कर लेते हैं जंगल की। जंगल हमारी धरती की अगर फेफड़े भी कहे जाए ना, तो ऐसे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो हमें शुद्ध हवा, जल संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करते हैं। वे न केवल वन्य जीवों के लिए आवास का काम करते हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। जंगलों से हमें लकड़ी, औषधियां और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। औद्योगिकरण, कृषि के लिए भूमि की मांग और शहरीकरण के कारण जंगलों की जो कटाई हो रही है, यह न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ रही है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा दे रही है। जंगलों की कटाई से वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं और जैव विविधता को खतरा पैदा हो रहा है। जंगलों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें वनों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सामुदायिक वनों की स्थापना और संरक्षण के उपाय को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा हमें वन्य जीव संरक्षण के लिए भी कदम उठाने होंगे ताकि जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके। तो श्रोताओं, जल, जमीन और जंगल हमारे जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इनका संरक्षण हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इन प्राकृतिक धरोहरों के बिना हम न केवल जीवन की कल्पना नहीं कर सकते बल्कि हमारे विकास और प्रगति के भी कोई मायने नहीं रहेंगे। इसलिए हमें इन संसाधनों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और कार्यक्रम की शुरुआत में अभी हमने क्या सुना? जल, जंगल, जमीन, प्रकृति की अनमोल धरोहर। और जब प्रकृति की बात होती है तो फिर वर्षा ऋतु की बात ना हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वर्षा ऋतु, हवा में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, फंगस और वायरस बहुत तेजी से पनपते हैं। ये मौसम जितना सुंदर जितना खास है ना, उतना ही मुश्किलें भी पैदा करता है। इस मौसम में दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए खान पान से जुड़ी इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। इन खाद्य पदार्थों से परहेज करें, कटे हुए फल और सब्जियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। सड़क किनारे काफी देर तक खुले में कटे हुए रखे फल या सलाद को बिल्कुल भी आपको नहीं खाना चाहिए। गोलगप्पे, भल्ला, पापड़ी और खुले में मिलने वाले जूस से भी आपको दूर रहना है। स्ट्रीट फूड और चाट का सेवन इन दिनों में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनमें दूषित पानी का इस्तेमाल होने की संभावना अधिक होती है। पत्तेदार सब्जियां अगर आप खाते हैं तो पालक, बंद गोभी और मेथी जैसी सब्जियों की परतों में कीड़े और बैक्टीरिया छिपे होते हैं। इस मौसम में पानी दूषित होने के कारण मछली या अन्य सी फूड के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है। खान पान की सुरक्षित आदतें अपनाकर और ताज़ा और गर्म भोजन ही आप हमेशा करें, क्योंकि हमेशा ताज़ा भोजन, बना हुआ और पूरी तरह से पका हुआ गर्म खाना ही खाएं। सब्जियों को अच्छे से धोएं। सब्जियां और फलों को पकाने या खाने से पहले साफ बहते पानी में अच्छी तरह धोएं। आप चाहें तो इन्हें हल्के गुनगुने पानी या नमक के पानी में भी साफ कर सकते हैं। साथ ही एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, पानी जो है वो उबालकर पिएं। पानी को हमेशा उबालकर या अच्छी तरह फिल्टर करके ही पिएं, क्योंकि बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ रखें। हाइजीन का विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। खाना बनाने, परोसने और खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। बचे हुए खाने को सही से रखें। यदि खाना बच जाता है तो उसे तुरंत ढककर फ्रिज में रखें और दोबारा खाने से पहले उसे अच्छी तरह से गर्म जरूर कर लें। बरसात का मौसम है, बरसात को इंजॉय कीजिए, लेकिन कुछ विशेष एहतियात के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और आज इस कार्यक्रम में हमने जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो की थी जल, जंगल और ज़मीन, प्रकृति के अनमोल धरोहर से। उसके बाद हमने बात कर ली वर्षा ऋतु में दूषित खाद्य पदार्थों।

से कैसे बचना है। और अब आपको बता दें कि आज है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हर साल 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं और इस दिन का हमारे जीवन में विशेष महत्व भी है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों है। आमतौर पर जब लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित होते हैं तो वो बहुत सारी जानकारी की कमी के कारण वे कई गलतियां कर बैठते हैं और जिसकी वजह से वो संक्रमित हो जाते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की शुरुआत डॉक्टर बारुक सैमुअल ब्लमबर्ग के जन्मदिन पर हुई, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इसके लिए पहला टीका भी विकसित किया था। इस दिन को याद करके हम हेपेटाइटिस मुक्त भारत की तरफ एक कदम और पास पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपके साथ जिन विषयों पर चर्चा की वो विषय थे जल, जंगल, जमीन, प्रकृति के अनमोल धरोहर हैं, इन्हें नष्ट न करें। साथ ही हमने चर्चा की वर्षा ऋतु में दूषित खाद्य पदार्थों से कैसे बचें। और हमने कार्यक्रम के अंत में बात की विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर। तो इन सारी बातों को आपके साथ साझा करके एक बात हम जो आपके साथ और कहना चाहेंगे कि मानसून का आनंद आप लेते रहें, ज़रूर लें, लेकिन सावन का महीना भी है, शिव की आराधना करें, उन्हें प्रसन्न करें और साथ ही उचित खान पान के साथ सेहत का विशेष ख्याल रखें, खासकर बच्चों का और बुजुर्गों का। हरियाली अगर बढ़ानी है तो पेड़ लगाएं, क्योंकि प्रदूषण को कम करने का एकमात्र जरिया यही है। वर्षा जल का संचयन करें, और कई सारी ऐसी पद्धति हैं जिनसे आप वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, उनके द्वारा आप वर्षा जल का संचयन जरूर करें। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में ही बीमारियां ज्यादा पनपती हैं। डेंगू, मलेरिया जैसे बुखारों से आप बच सकते हैं अगर आप सूती कपड़ों का प्रयोग करें, साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करें और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि गंदगी में ही ये सारी चीजें ज्यादा पनपती हैं। आपके और हमारे ये प्रयास ही हमारे बेहतर कल के साक्षी बनेंगे। तो कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज के लिए बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
3: और राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
3: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
3: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
3: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
3: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
3: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
2: जी।
3: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
3: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
3: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
3: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
3: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
3: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
3: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
3: और अब बारी है श्रोताओं हमारे

0: शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: और श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था

0: लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती। उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते बहन जी।
3: नमस्ते शिखा।
4: अरे दीदी जी आप आइए आइए।
3: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते, यहाँ बैठिए
3: जी,
4: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
3: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप,
4: मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
3: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
4: हाँ ये तो है।
3: अरे लो लता के बापू भी आ गए।
4: राम राम दादा।
5: हाँ,
4: कैसे हैं आप।
5: राम राम। अरे आप यहाँ। लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी धींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
4: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
5: अरे बहन जी ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
4: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
5: अच्छी, और ये छोरी मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
4: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो यहाँ, यहाँ बैठो मेरे पास।
1: जी दीदी।
5: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
4: जी।
0: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
4: अच्छा बच्चों ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है।
2: दीदी लता। दीदी लता।
4: लता।
6: जी दीदी।
4: क्या ये लता।
6: जी दीदी।
4: अरे नहीं।
6: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
4: अच्छा।
6: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था।
4: हुँ?
6: हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया।
4: हुँ?
6: सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
4: अच्छा।
6: जी दीदी।
4: लता ये सच है क्या। अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस

0: महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो, मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है ठीक।
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही है बेटी से।
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और चाहे मैं ही क्यों ना हो कर सकता है भला।
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं, देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा।
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।

0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।
1: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
2: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है। अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
3: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
3: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
3: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
3: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
1: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
3: ठीक है आ जाना।
1: अच्छा
2: मैं भी आ जाऊँ लता।
3: हाँ हाँ,
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
0: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस वक्त हमारे उस स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म तनुवेट्स मनु से। आवाज थी लंबर हुसैनपुरी की और शब्द थे राजेश खैर के और संगीत दिया था कृष्णा। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म क्वीन से। अमृता दत्त के लिखे गीत को संगीत में ढाला है अमित त्रिवेदी ने और आवाज दी है लाभ झांझुआ, सोनू कक्कर और साथी ने।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम में अब सुनते हैं शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान की आवाज में दोस्ताना फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने और संगीत में ढाला है विशाल शेखर ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं सोनू निगम अलीशा चिनॉय की आवाज में नो एंट्री फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है समीर की और संगीत रचना है अनु मलिक की।

में अब सुनते हैं ताल फिल्म से आशा भोसले, अदित नारायण और ऋचा शर्मा की आवाज में ये गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत में सवारा है ए आर रहमान ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में और उर्दू में। कृपया प्रतीक्षा करें।

सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चले, सार्थक संवाद हो और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श हो। हंगामा जारी

0: महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका शरण प्रणाली एसाइलम में बदलाव किया है, जिसके तहत आव्रजन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आव्रजन न्यायाधीशों के पास भेज सकें। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57
1: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एसआईटी तश्कील दी है। दरी असना कल अयोध्या में इंसदादे बदउनवानी अदालत में केस की समाअत के बाद अदालत ने जेल में मौजूद तमाम मुलजमीन की जुडिशियल रिमांड में 10 अगस्त तक तौसी कर दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर नितिन नवीन कल वाराणसी में मुल्कगीर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास समाजी हम आहंगी मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जेर एहतमाम ये मुहिम 20 फरवरी 2027 तक चलेगी। वाराणसी में इस प्रोग्राम के बारे में मालूमात देते हुए बीजेपी शेड्यूल कास्ट मोर्चा के कौमी सदर श्री लाल सिंह आर्या ने कहा कि ये मुहिम 5 मरहलों में चलाई जाएगी।
1: संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे देश में संत रविदास जी के विचारों को उनके आदर्शों को ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम है 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य निरंजन दास जी के कर कमलों से 131 कलशों को पूरे देश में भेजा जाएगा। इन कलशों का कई जगह पर जिला मुख्यालय पर पूजन और सम्मान होगा।
0: गोरख पीठाधीश्वर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुनक्कित प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हमारे गोरखपुर के नामानिगार की इतला है कि उस मौके पर श्री योगी गोरखपीठ की रवायत को आगे बढ़ाते हुए शागिर्द और गुरु दोनों किरदार में नजर आएंगे। रियासती पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए मुल्क के शहरियों को हुब्बुल वतनी के जज्बे से मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम फख्र से फहराए।
2: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
0: गुज़िश्ता इतवार को मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने हम वतनों से हर घर तिरंगा मुहिम को फरोग देने की अपील की। शहरियों से अपील की गई है कि वो आइंदा माह 15 अगस्त को यौम आजादी के तकरीबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के लिए नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए अपने ख्यालात तजावीज और तसव्वुरात का इश्तराक करें। मुंतखब तजावीज वजीर आजम को खिताब में शामिल की जाएगी। लोग माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात और तजावीज भेज सकते हैं। सावन और कांवड़ यात्रा के लिए रियासत भर में खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शाहजहांपुर में जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह की सदारत में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों को जरूरी रहनुमा खतूत दिए गए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यात्रा को महफूज तरीके से और मुनजम तरीके से अंजाम दिया जाए। इसी दौरान मेरठ में जिला मजिस्ट्रेट डॉ वी के सिंह ने कहा कि महकमे सेहत को ज्यादा से ज्यादा सेहत खदमात फराहम करने की सिमत काम करने के लिए खसूसी हिदायत दी गई है। इस बार एक मोबाइल एम्बुलेंस बनाई गई ताकि कांवड़ियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हेपेटाइटिस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। यह दिन हेपेटाइटिस पर कौमी और बैनुल अक्वामी कोशिशों को मुतहर्रिक करने का मौका है। लोगों और आम लोगों की जानिब से कार्रवाई और शिरकत की हौसला अफजाई करता है। इस साल का थीम हेपेटाइटिस आप से इसे खत्म करें, जो 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे के अहदाफ के हुसूल के लिए माली समाजी और सेहत से मुताल्लिक रुकावटों को दूर करने पर मरकूज है। फितरत के तहफ्फुज के आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 1997 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 28 जुलाई को फितरत के तहफ्फुज का आलमी दिन करार दिया। इसका मकसद करे अर्ज की फलाह बहबूद के लिए फितरत के तहफ्फुज और पायदार तरक्की की अहमियत पर जोर देना है। रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के इलाकों में कल हल्की से दरमियानी बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दरियसना बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से दरियाए गंगा शारदापुर और बदायूं में शारदा पानी में इजाफा हुआ। बाराबंकी में बलिया खतरे के निशान के करीब बह रही है। नेपाल से मुसलसल पानी छोड़े जाने की वजह से बस्ती में दरियाए घाघरा के आबी सतह में इजाफा हुआ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, समय हो चला है महिला श्रोताओं के कार्यक्रम घर।

नमस्कार। कार्यक्रम घर संसार में सभी बहनों और श्रोताओं का स्वागत है। सोनिका शर्मा का अभिवादन स्वीकार करें। बहनों, आज पूरे विश्व में प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को बताया जाता है कि प्रकृति की सुरक्षा क्यों जरूरी है, और आप भी अपने खास संदेश से जागरूकता फैला सकते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। श्रोताओं, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ और स्थिर इंसानी समाज की बुनियाद है, और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का अहम मकसद जानवरों और पेड़ों को बचाना है। प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी हर शख्स की है। दुनिया अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही खूबसूरत है, इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारी सेहत भी प्रकृति में बिताए समय से ही अच्छी बनती है। बहनों, हम प्रकृति को माँ कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं इसी ने हमें जन्म दिया है और हमारा भरण पोषण भी यही करती है। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी माँ की तरह प्रकृति को भी हल्के में ले रहे हैं, जिसका परिणाम आगे चलकर काफ़ी गंभीर होने वाला है। प्रकृति हमें बहुत सारी सुविधाएं देती है, जैसे जल, जंगल, पहाड़, खनिज, समंदर, और जो हमारे और आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन अफसोस, हम इन्हें संभाल कर रखने के बजाय इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। समय के साथ हमने प्रकृति से मिले संसाधनों को बर्बाद कर दिया, वन्य जीवन को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि जो हवा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिसमें सांस लेकर हम जीवित रहते हैं, उसे भी प्रदूषित कर दिया है। इसके साथ समय समय पर प्रकृति संकेत देती है सावधान होने का, और ऐसे में अगर हमने प्रकृति और उसके संसाधनों की रक्षा नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति ने ये जो हमें जंगल, पेड़ और जो संसाधन दिए हैं, हमारी धरती की और हमारी बहुत रक्षा करते हैं। पेड़ तापमान नियंत्रित करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में कम करते हैं। पेड़ किसी इलाके में 1 से 5 डिग्री तक का तापमान कम कर सकते हैं। साल भर में एक पेड़ लगभग 22 किलो तक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। पेड़ जंगल में बारिश करवाने में सहायक होते हैं। जंगलों की वजह से ही बारिश का चक्र चलता है। ग्राउंड वाटर का लेवल बना रहता है। पेड़ हवा को फिल्टर भी करते हैं, जिससे वातावरण में धुआं या स्मॉग कम होता है, जिससे दमे जैसी बीमारियाँ लोगों को कम होती हैं। पेड़ अपने नीचे ज़मीन में पानी स्टोर करते हैं, जिससे सूखे की आशंका कम हो जाती है। अगर आपके घर के आसपास अच्छे सारे पेड़ लगे हैं तो ऐसे में AC की ज़रूरत भी कम पड़ती है, और हरियाली मन को सुकून भी देती है। साथ ही पेड़ जहरीले पदार्थों को भी सोख लेते हैं। पेड़ों की मिट्टी लेड, लिथियम और पारा जैसी धातुओं को आराम से सोख कर मिट्टी की उर्वरता को बनाती है। साथ ही जंगल जैव विविधता को भी बनाए रखते हैं। आशा करते हैं प्रकृति संरक्षण दिवस पे ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, और कार्यक्रम जारी रहेगा। बहनों, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: बहनों, यूं तो गृहिणी घर की धुरी होती है, लेकिन परिवार के लिए किए जाने वाले कार्यों का उसके कोई मूल्य नहीं होता। कहने का मतलब है, उनके द्वारा किए जाने वाले काम उनके जीवन का हिस्सा तो माने जाते हैं, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं होती। इसी विषय पर पेश है वार्ता, गृहिणी के वैतनिक कार्यों का मूल्यांकन, और इसे पेश कर रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह।
1: गृहिणी का नाम सामने आते ही हमारे मनोमस्तिष्क में एक ऐसी महिला की तस्वीर उभरती है जिसकी दिनचर्या सूर्योदय से पहले प्रारंभ होती है और रात के 10 बजे के बाद समाप्त होती है। ये महिला हमारी माँ, बहन, भाभी, मौसी, दादी, नानी, पत्नी, अड़ोस पड़ोस में रहने वाली, सड़कों के फुटपाथ पर और चौराहों पर रोजमर्रा के सामान बेचने वाली, खेतों, खलियानों, ईंट भट्टों पर काम करने वाली कोई भी हो सकती है। महिला कोई भी हो, कामकाजी या घरेलू, एक तथ्य एक समान है, दोनों वर्गों की महिलाओं को घर की साफ सफाई, चौका बर्तन, भोजन पकाना, कपड़े धोना, बच्चों एवं

बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना एक सामान्य रूप से करना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन जैसी मशीनों के आ जाने से महिलाओं को थोड़ी सी आसानी हो गई है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को घर के नैतिक कार्यों के अतिरिक्त पशुओं की देखभाल करना, पेयजल की व्यवस्था करना, खेतों पर पति भाई बेटों के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाना होता है। पशुओं को चराने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं की ही होती है। बच्चों का होमवर्क गृहिणी ही कराती है। बुंदेलखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्थानीय हाटों में सब्जियां और अन्य रोजमर्रा वस्तुएं बेचने का कार्य महिलाएं ही करती हैं, और वो भी घर के कामकाज निपटाने के बाद। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित इमा कैथल बाजार एशिया का सबसे बड़ा और 500 साल पुराना महिला संचालित बाजार है। असम के दरांग जिले में स्थित मंगलदोई

के कामकाज निपटाने के बाद। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित इमा कैथल बाजार एशिया का सबसे बड़ा और 500 साल पुराना महिला संचालित बाजार है। असम के दरांग जिले में स्थित मंगलदोई महिला बाजार महिलाओं की आर्थिक स्थिति बताता है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में घरेलू महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जाता। समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 के अनुसार महिलाएं प्रतिदिन औसतन 289 मिनट अवैतनिक घरेलू कार्य तथा 137 मिनट परिवार के सदस्यों की देखभाल संबंधी कार्य करती हैं। आज अनेक परिवार एकल परिवार के रूप में रहते हैं और प्राय अपने विस्तारित परिवार से दूर रहते हैं। परिणाम स्वरूप कार्यरत माता पिता विशेषकर माताओं को देखभाल से जुड़ी अधिकांश जिम्मेदारियां स्वयं उठानी पड़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अवैतनिक देखभाल के कुल कार्य का 3/4 से अधिक हिस्सा महिलाएं करती हैं। विश्व भर में लगभग 70.8 करोड़ महिलाएं केवल अवैतनिक देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं। यह चुनौती ग्रामीण भारत में तो पहले से ही मौजूद है, शहरी भारत में और भी अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गृहणियों द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक योगदान तो मानता है, लेकिन गृहिणी के श्रम के लिए कोई निश्चित वेतन या मासिक वार्षिक मूल्य निर्धारित नहीं करता। इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समय उपयोग सर्वेक्षण और प्रतिस्थापन लागत अथवा न्यूनतम वेतन जैसी विधियों से गृहणियों द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्य का आकलन करने की अनुशंसा करता है। विश्व भर में प्रतिदिन 16.4 अरब घंटे अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य किया जाता है। यदि इस कार्य का मूल्य न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी के आधार पर आकलित किया जाए तो इसका मूल्य लगभग 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक सकल उत्पाद का लगभग 9% होगा। इस अवैतनिक कार्य का 76.2% कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, अर्थात महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक समय इस प्रकार के कार्यों में लगाती हैं। 11 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एनके सिंह की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गृहणियों के लिए 30,000 रुपया प्रतिमाह की न्यूनतम काल्पनिक आय निर्धारित की। मोटर दुर्घटना दावों में घरेलू देखभाल की हानि नाम से एक पृथक क्षतिपूर्ति मद का सृजन किया तथा यह निर्देश दिया कि इस न्यूनतम आय में प्रत्येक 3 वर्ष में 10% की वृद्धि की जाए। पीठ की यह टिप्पणी स्वयं निर्धारित राशि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एनके सिंह ने कहा कि यह विडम्बना है कि एक गृहिणी को परिवार के कमाऊ सदस्य पर निर्भर बताया जाता है, जबकि वास्तव में पूरे परिवार का संचालन काफी हद तक गृहिणी पर ही निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के शब्दों में घरेलू महिला भी राष्ट्र निर्माता है जिसका न्यूनतम आर्थिक योगदान न्यायिक मान्यता प्राप्त कर चुका है। जब तक अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ महिलाओं पर ही केंद्रित रहेगा तब तक रोजगार और उत्पादकता के क्षेत्र में होने वाली प्रगति असमान और अस्थिर बनी रहेगी। प्रश्न ये है कि महिलाओं के अवैतनिक कार्य को राष्ट्रीय आय में किस प्रकार शामिल किया जाए या उनके आर्थिक कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। इसके लिए कतिपय सुझाव इस प्रकार हैं कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के अंतर्गत सैटेलाइट अकाउंट तैयार किए जाएं, समय उपयोग सर्वेक्षण किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक कार्य के मूल्यांकन हेतु प्रतिस्थापन लागत विधि को अपनाने का सुझाव दिया है। यदि गृहिणी वेतन मजदूरी भोगी कार्मिक के रूप में कार्य करती तो उसे जो आय प्राप्त होती उसे उसके श्रम का मूल्य माना जाए जो वह घरेलू कार्यों, खेती किसानी के कार्यों, पशुपालन एवं अन्य सहायक कार्यों को करते हुए करती है। यह विधि विशेष रूप से शिक्षित एवं कुशल गृहिणियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य को उचित स्थान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र वुमेन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 R अवधारणा को प्रचारित किया जाता है। पहला है रिकॉग्निशन, अर्थात उनके कार्य को मान्यता मिले। दूसरा है रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग, अर्थात जो वो कार्य करती हैं उसको लेखांकन किया जाए।

0: तीसरा है पुनर्वितरण और साझा करना, अर्थात घर के कामकाज में पुरुष भी उसी प्रकार से हिस्सा बटाएं जिस प्रकार से महिलाएं काम करती हैं। महिलाएं घर, परिवार और समाज में जिस प्रकार पूर्ण निष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रही हैं, वह सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। समय के साथ महिलाओं की भूमिका में विस्तार हो रहा है। यह समय की मांग है कि महिलाओं के घरेलू वैतनिक कार्यों को आर्थिक मान प्रदान करते हुए उसे राष्ट्रीय आय का हिस्सा माना जाना चाहिए। इससे उनके सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी वार्ता गृहिणी के वैतनिक कार्यों का मूल्यांकन, और वार्ताकार थे डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह। कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल लेन देन से जुड़े धोखाधड़ी के मामले कुछ साल से लगातार बढ़ रहे हैं। कभी SMS फिशिंग तो कभी KYC अपडेट करने या फिर ऑनलाइन लोन के नाम पर लोगों से ठगी हो रही है। मोबाइल अब लगभग हर तबके के लोगों कर रहे हैं और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और UPI QR कोड के जरिए होने वाले भुगतानों ने तो क्रांति ला दी है। लोगों की डिजिटल लेन देन में बढ़ती दिलचस्पी, बड़ी संख्या में माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स भी आ गए हैं इसे देखते हुए, तो वहीं कुछ बैटिंग ऐप्स भी सक्रिय हैं। इस तरह की एप्लीकेशन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि डिजिटल लेन देन में सावधानी बरती जाए। सस्ते लोन का दावा करने वाली कंपनियाँ कुछ फर्जी भी होती हैं। ये लोन से पहले ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहती हैं, और इसमें एक लिंक भेजकर कहा जाता है कि इस पर क्लिक करने से लोन मिल जाएगा, और अक्सर ऐसे लिंक पर क्लिक करने से लोन तो नहीं मिलता लेकिन निजी जानकारी ज़रूर शेयर हो जाती है, जिससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी की जा सकती है। साथ ही कुछ ऐसी माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप सक्रिय हैं जो बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के लोन देती हैं, और इस तरह के ऐप डाउनलोड करने से आपके फ़ोन में वायरस भी आ जाता है। स्कैमर्स आपकी निजी जानकारियां चुरा लेते हैं और फिर धोखाधड़ी करते हैं। अगर आप सतर्क रहें तो ऐसी फेक एप्लीकेशन का पता कर सकते हैं। जब आप ऐसी कोई ऐप डाउनलोड करें तो पहले उसकी रेटिंग और रिव्यू ज़रूर देख लें, साथ ही ये भी जांच लें कि उसके साथ कोई और बैंक जुड़ा भी है या नहीं। नियमों के अनुसार किसी भी लोन ऐप के साथ किसी NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का जुड़ा होना ज़रूरी है। जब कोई असली ऐप आपसे कोई फॉर्म भरवाती है ऑनलाइन, तो वो आपकी प्रक्रिया को काफ़ी पारदर्शी रखती है, और अगर ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो आपको बचने की ज़रूरत है। कुछ बातें याद रखें बहनों, कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक मजबूत पासवर्ड ज़रूर बनाएं। संवेदनशील डेटा चोरी होने से चोरी ना हो, इसके लिए फ़ोन ऐप की परमिशन सेटिंग ज़रूर चेक कर लें। अगर कुछ संदिग्ध ऐप में आप फंस गए हों तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। कोड और OTP के जरिए भी काफ़ी धोखाधड़ी होती हैं। स्कैमर्स आपके अकाउंट या नंबर से साइन इन करके व्हाट्सएप पर कन्फर्मेशन कोड जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको एक मैसेज भेजकर जानकारी मांगते हैं। इसके बाद स्कैमर्स दूसरे डिवाइस से आपके व्हाट्सएप पर लॉगिन करते हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किसी व्यक्ति को मैसेज भेजकर अर्जेंट पैसा मांगते हैं। स्कैमर्स आपके फ़ोन में लगातार मैसेज भेजते रहते हैं कि आपके मोबाइल में वायरस आ गया है। ध्यान रखें, ऐसे मैसेज को क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी गोपनीय जानकारी लीक होती है। कैश प्राइज और लकी ड्रॉ लालच देकर ठगी करने के सबसे पुराने तरीके हैं, और धोखेबाज या स्कैमर्स आपको ऐसा मैसेज व्हाट्सएप, SMS या ईमेल के जरिए भेजते हैं। कभी कभी ये वीडियो के रूप में हो सकता है या फिर आपकी स्क्रीन पर पोस्टर के रूप में भी दिखता है। बहनों, ऐसे पोस्टर और वीडियो को कभी क्लिक ना करें और ठगी और धोखे से खुद को बचाएं।

तक तेरा। श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम में जाना था डिजिटल लेन देन के बारे में, और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कुछ स्वास्थ्य के बारे में। हेपेटाइटिस लिवर की एक बीमारी होती है जिसमें आपके लिवर में सूजन आ जाती है। ये सूजन किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे शराब पीने से, किसी दवाई के इन्फेक्शन से या साइड इफेक्ट से। जब लीवर की सूजन खास किसी वायरस की वजह से हो तो इसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। ये कुल 5 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। अभी कुछ समय पहले WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेपेटाइटिस बी और सी को कैंसर कारक माना है, और डी को लेकर भी यही माना जा रहा है कि इससे कैंसर फैलता है। हेपेटाइटिस एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन है जिससे लिवर में सूजन रहती है और लंबे समय बाद लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन दूषित पानी, गंदा भोजन और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। वहीं हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त चढ़ाने, संक्रमित सिरिंज लगाने, अनसेफ यौन संबंधों को बनाने से फैलता है। लेकिन हेपेटाइटिस डी तभी होगा जब किसी इंसान को पहले से ही हेपेटाइटिस बी है। इसमें शुरुआती लक्षण बिल्कुल साफ नहीं दिखते, लेकिन संक्रमण बढ़ने पर बदलाव दिख सकते हैं, जैसे पीलिया होना, त्वचा और आंखों का पीला होना, बहुत थकान होना, उबकाई आना, भूख नहीं लगना और वजन का घटना, बुखार और बदन दर्द इसमें लगातार बना रहता है और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है। हेपेटाइटिस के प्रकार के अनुसार ही दवाएं दी जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए टेनोफीवर और एंटीकेविट, और हेपेटाइटिस सी के लिए मेविरेट जैसी एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। हेपेटाइटिस ए और बी खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, इसमें केवल आराम और पानी पीने की सलाह दी जाती है। बाकी हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आप इसका टीका ज़रूर लगवाएं। आशा करते हैं श्रोताओं, आपको हेपेटाइटिस पे ये जानकारी पसंद आई होगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम की बात बहनों, कार्यक्रम में बात बच्चों के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। आजकल देखा जाता है कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अगर आपके बच्चे भी कुछ ऐसा व्यवहार करने लगे हैं तो आपको इसकी वजह समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को समझना और उनकी अच्छी पेरेंटिंग करना उनके पूरे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बचपन से लेकर अपनी समझ विकसित होने तक बच्चे माँ बाप की नज़रों से ही दुनिया देखते हैं और वही उनका संसार होते हैं। अक्सर बच्चे वही करते हैं जो माता पिता करते हैं। और जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, यानी टीनेज अपनी किशोरावस्था में आते हैं, तो उनमें शरीर में और उनकी मानसिक स्थिति में काफ़ी बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें रिएक्शन देने का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से उनमें काफ़ी गुस्सा बढ़ने लगता है। ये गुस्सा ज़्यादा हो जाता है तो समस्या बन जाता है, लेकिन माता पिता या परिजन होने के नाते थोड़ा सा समस्या को समझना भी ज़रूरी है। कई बार हमारे बच्चे अपनी तुलना किसी और से करने लग जाते हैं, खासकर अपने शरीर की बनावट का के कारण, जिससे उनमें डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है। आजकल अधिकतर किशोर बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्शन में रहते हैं, मोबाइल उनको चाहिए ही चाहिए। ऐसे में कई बार परिवार के हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। आजकल बच्चे बुलीड भी बहुत होते हैं। बुली होने का मतलब होता है किशोर बच्चों का कोई ग्रुप एक बच्चे को टारगेट कर लेते हैं और उसे काफ़ी परेशान करते हैं, और बुलीड बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनमें एक जो उनका आत्मसम्मान का भाव है वो बुली करने से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। परेशानी की बात यह है कि ये गुस्सा बच्चों में ध्यान और फोकस बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस समस्या का एक ही समाधान है कि बच्चों से लगातार संवाद करें, घर का माहौल सम्मानजनक बनाएं और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक रहें, जिससे बच्चे भी अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस कर सकें। और इसके साथ ही हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारी महिला श्रोता सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब समय हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जौली भल्ला की गाई कुछ गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जौली भल्ला की गाई चंद गजलें। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब से कुछ देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके उपरांत दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में वे हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: For whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा

0: शिक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
1: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
2: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
3: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
4: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल

0: कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित।

0: बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान और बेगम परवीन उसुल्ताना को। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का मिस्र तिलक कामोद में ठुमरी गायन।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का ठुमरी गायन मिश्र तिलक कामोद में। इसी कार्यक्रम में अब सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना का ठुमरी गायन राग भैरवी में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, पुरानी फिल्मों से भूले बिसरे गीत।

कार्यक्रम में सुनते हैं हमारा पहला गाना, फिल्म खानदान फिल्म से है, जिसमें आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। नैन नक्श लालपुरी के गीत को संगीत से सवारा है कई आमने।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना खानदान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लालपुरी के गीत को संगीत से सवारा था खयाम ने। कार्यक्रम में अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म दो बदन में। शब्द रचना है शकील बदायूनी की और संगीत रचना है रवि की।

पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम से। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं। अब समय है हेलो मेरी पसंद के पुनः प्रसारण का। संवादक हैं करिमा शाक्य, प्रस्तुतकर्ता हैं अनिंद्र सिंह।
1: हेलो मेरी पसंद, नमस्कार श्रोताओं। संगीत की मधुर धुनों और दिल को छू लेने वाली भावनाओं से सजे इस खूबसूरत सफर में आपका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि यादों, एहसासों और मुस्कुराहटों का एक प्यारा सा कारवां है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य और अगले कुछ पलों तक मैं रहूंगी आपके साथ और कोशिश करूंगी आपकी पसंद के सुरों को आपकी जिंदगी की धड़कनों के साथ जोड़ने की। तो आइए चलते हैं साथ में संगीत की इस सुरीली दुनिया में और शुरू करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।
2: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रही है?
3: मैं मिसेस रिंकी पचौरे।
2: हेलो रिंकी जी, आप क्या करती हैं?
3: मेरा बुटीक है।
2: अच्छा, तो बुटीक में आप क्या क्या ड्रेसेस बनाती हैं?
3: लहंगा, गाउन, ब्लाउज, सूट।

0: अच्छा
1: वेस्टर्न ड्रेस जो भी होती है।
0: जी, तो फिर तो आप बहुत इंटरेस्टिंग काम करती हैं। और
1: थैंक यू।
0: यू आर वेलकम। और आप कैसी हैं अभी? स्वास्थ्य आपका
1: मैं
0: ठीक है?
1: मेरा स्वास्थ्य ठीक है।
0: और आपके घर परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड, बाकी फैमिली में देवर हैं, ननद हैं, ससुर हैं, मतलब ये
0: जी
1: लोग हैं,
0: जी
1: बट मेरी फैमिली में भी दो बच्चे और मैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे?
1: हाँ, एक मेरा बड़ा बेटा नोएडा रहता है, छोटा मेरे पास रहता है।
0: अच्छा ठीक है। तो आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, क्या क्या पसंद करती हैं आप?
1: मैं सबसे ज्यादा सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगी आप?
1: मैं देश के ऊपर जो सॉन्ग है वो मेरा फेवरेट है, ए
0: जी
1: गुजरने वाली हवा जरा।
0: जी ठीक है। तो आपको आपकी पसंद का सॉन्ग सुनवाते हैं, और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा,
1: जी
0: बने
1: जी
0: रहिएगा
1: जी
0: आकाशवाणी आगरा के
1: जी
0: साथ।
1: अच्छा लगा आपको सुन करके।
0: थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रही है?
1: मैं कोमल बोल रही हूँ।
0: कोमल, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
1: मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फ्रीलैंसिंग
0: अच्छा, तो आप कहीं काम करती हैं क्या?
1: करती हूँ मैं। मैंने
0: अच्छा
1: कंपनी को ज्वाइन किया है।
0: जी, तो आप किस किस स्पेसिफिक एरियाज में काम करते हैं?
1: मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो गायनाइक है। एक्चुअली मैं थेरेप्यूटिक गायनेकोलॉजिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो
0: ओके
1: मेन वर्क वही है कि लोगों की फर्टिलिटी

0: इम्प्रूव करना,
1: जी
0: हार्मोनल इम्बैलेंस वो ठीक कराना
1: जी
0: लाइफ स्टाइल और डाइट के थ्रू।
1: जी ठीक है। तो आप क्या क्या शौक रखती हैं, काम के अलावा और क्या करती हैं?
0: काम के अलावा तो बहुत सारे काम है, फैमिली देखना है, घर का काम है, और खाना बनाना है, खाना है, फ्रेंड से मिलना है, गेट टुगेदर करना है, और
1: हाँ,
0: यही सब
1: बहुत
0: में दिन
1: लंबी
0: चल
1: लिस्ट
0: जाता
1: है।
0: है। और गप्पे मारना और
1: अच्छा,
0: रील देखना और रील शेयर करना।
1: ये आजकल सबका फेवरेट बना हुआ है ना।
0: यस आपका फेवरेट क्या है?
1: मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: मुझे भी वो बहुत पसंद है, मुझे आपका ही प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको सुनती रहती हूँ,
1: जी
0: तो कभी होता है कि मन नहीं लग रहा है तो यही चला लेते हैं तो अच्छा
1: जी
0: लगता है।
1: थैंक यू सो मच। तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: वो चला सकती हैं, नहीं सामने ये अलग बात
1: ताल मूवी
0: है,
1: का
0: यस मेरे पास है तो मेरे
1: जी, ये
0: पास
1: बहुत अच्छा सॉन्ग है। ठीक है,
0: है। थैंक
1: आपको
0: यू,
1: हम ये गीत सुनवाते हैं और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ। थैंक
0: थैंक यू गरिमा जी, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ,
1: यू
0: मुझे
1: सो मच।
0: आपका होस्ट करना, आपको सुनना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही आते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए।
1: थैंक यू कॉल करने के लिए।

0: दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हर सोमवार रात 10 बजे सुन सकते हैं। इसका पुनः प्रसारण हर मंगलवार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। और अगर आप अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश दर्ज कराने के लिए आप हमें हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0562-350-1852 और 0562-2970-337। तो अपनी पसंद हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपकी फरमाइश ही बनाती है इस कार्यक्रम को और भी खास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अपने अगले श्रोता को।
1: हेलो।
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम, हम बबुआ बोल रहे हैं, फिरोजाबाद से।
0: जी बबुआ, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया मैडम।
0: और आप क्या करते हैं?
1: मैडम हम जो है चूड़ी वूड़ी का यही काम करते हैं, रहते हैं, और बस वही चलता रहता है पूरे दिन में।
0: जी, तो पूरा दिन आप यही करते हैं? और आपके घर परिवार में कौन है?
1: नहीं नहीं मैडम, हम पूरा दिन हम रेडियो भी सुनते हैं। रेडियो रेडियो सुनते हमने जो है आपको इसलिए आज कॉल किया है, और रेडियो सुनते सुनते हम काम करते रहते, तो बहुत ही एकदम मजा आता है।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाने सुनते सुनते काम करना तो बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हम रेडियो में हम अपना चैनल सुनते हैं, तो हम आकाशवाणी भी सुन लेते हैं। और आकाशवाणी में जो क्या बताएं आपको, हम मतलब सारा पूरा उसका आता है ना, जो कार्यक्रम आते हैं वो सब सुनते हैं।
0: जी, तो आकाशवाणी आगरा के कौन से कार्यक्रम आपको पसंद
1: एक,
0: है?
1: एक, एक कार्यक्रम हमको वो बहुत पसंद है, वो रेडियो का डॉक्टर करके ऐसे आता है, वो दोपहर में आता है, हम वो भी सुनते हैं। और हमको गीत संगीत के कार्यक्रम तो बहुत ही पसंद है, हम तो मतलब मिस ही नहीं करते हैं। एक भी हम खुद भी सुनते हैं, और अपने जो संग में यार दोस्त है उनको भी सुनवाते हैं, और घर पे जब सुनते हैं तो हम बच्चों बच्चों को भी बोलते हैं भैया आप भी सुनो। और जो है क्या है कि वो बहुत नॉलेज बढ़ता है मैडम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, सबको सबको बहुत अच्छा जो है ना संदेश देते हैं, और वो बहुत तारीफ के काबिल है मैडम
0: जी। धन्यवाद। तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैडम हमको वो सुनवा दीजिए आप, क्या है वो नाम उसका फिल्म का नाम हमको ध्यान नहीं है, वो सुनवा दीजिए। सजन रे झूठ मत बोलो, मुकेश जी ने गाया है वो गाना।
0: जी, मैं आपको ये गीत आपके पसंद का सुनवाती हूँ, और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा।
1: हाँ बिल्कुल मैडम, हम करेंगे, हम एकदम से ना एकदम पक्के वाले श्रोता हैं इधर, आप सुनते हैं, हम बहुत सुनते हैं।
0: सुन के बहुत अच्छा लगा हमें।
1: जी जी धन्यवाद मैडम,
0: धन्यवाद कॉल करने।
1: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: राम भरोसे बोल रहे हैं मैम।
0: अच्छा, राम भरोसे जी, कैसे हैं
1: बढ़िया है।
0: और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैनपुरी से खेती
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: किसानी करते हैं मैम।
0: अच्छा, तो आपका पूरा दिन कैसे कटता है? कैसे, क्या क्या करते हैं पूरा दिन में?
1: पूरे दिन क्या है, सुबह से शाम मतलब बकरियां हैं, कुछ गाय भैंस हैं, थोड़ी उनमें कट जाता है। सुबह शाम खेती के काम होते हैं,
0: जी,
1: उन्हें देख लेते हैं।
0: तो कौन कौन से अनाज उगाते हैं आप?
1: जी अनाज मैम है, धान है, गेहूं है, बाजरा है,
0: जी,
1: अरहर है, तिलहन है, दलहन है, सब चीज कर लेते थोड़ा थोड़ा करके। जी
0: अच्छा। और आप कह रहे थे कि आप, आपके यहाँ जानवर भी हैं आपके
1: हाँ,
0: पास?
1: पशु पशु
0: जी
1: पशु
0: जी
1: मैम
0: तो उनका कैसे आप देखभाल करते हैं? कौन
1: पूरा
0: कौन?
1: घर मिलके मैम काम करता है। जैसे हम कभी इधर उधर हो गए तो घर वाले संभाल लेते हैं। पशुओं को दूना है, उन्हें चारा आरा
0: जी,
1: छानी चारा करना है जो भी।
0: तो आप दूध का भी कुछ
1: हाँ,
0: काम
1: दूध
0: करते हैं?
1: बेचते हैं जो
0: जी
1: डेयरी पे चला जाता है, और शाम के टाइम थोड़ा बचा लेते हैं खाने पीने के लिए। खाने
0: जी
1: पीने के लिए भी चाहिए, जब काम मेहनत करेंगे तो मैम थोड़ा
0: हाँ,
1: शरीर से भी
0: जरूर
1: मजबूत होना
0: जरूर, उसके
1: जरूरी
0: लिए
1: है। जी
0: बेशक बेशक चाहिए वो तो।
1: जी
0: तो आपके क्या क्या शौक है?
1: शौक बस अब तो खेती किसानी शौक हो गया है, और थोड़े बहुत गाने सुन लेते हैं कभी कभार रेडियो पे। नहीं
0: जी, आकाशवाणी सुनते हैं आप?
1: हाँ, आकाशवाणी सुनते हैं। आकाशवाणी तो शुरू से हमारा हमारे दिल के बहुत नजदीक रहा है। विविध
0: जी
1: भारती थी, आकाशवाणी है, अपने आगरा है, लखनऊ
0: जी
1: के भी प्रोग्राम सुन लेते हैं मैम।
0: अच्छा, तो गीत संगीत का शौक रखते हैं आप?
1: हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। आप क्या मैम, वो क्या कहते हैं ना, कभी कभार जब थोड़ा प्रेशर में या दिमाग थोड़ा वैसे होता है ना टेंशन में, तो
0: जी, तो
1: इसको संगीत
0: संगीत
1: को
0: का
1: सुन के
0: साथ
1: थोड़ा
0: अच्छा
1: रिलीफ
0: लगता
1: मिलता है,
0: है।
1: आराम मिलता है, सुकून
0: हाँ
1: मिलता है।
0: जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी, एक गाना है घूंघट की आड़ से दिलवर का, बेगारत
0: जी, बहुत
1: बुरा है।
0: प्यारा
1: जी
0: गाना है। ठीक है, तो आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं
1: जी जी
0: और
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: आप आगे भी कॉल करते रहिएगा।
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल,
0: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी शुक्रिया मैम।

0: तो श्रोताओं, सुरों और एहसासों से सजी आज की ये महफिल यहीं विराम लेती है। उम्मीद है कि आपकी पसंद के इन गीतों ने आपके मन को सुकून दिया होगा, चेहरे पर मुस्कान बिखेरी होगी और कुछ खूबसूरत यादों को फिर से ताजा कर दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि जीवन की हर राह संगीत की मिठास से महकती रहे, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। फिर मुलाकात होगी हेलो मेरी पसंद के अगले अंक में, आपकी पसंद के गीतों और कुछ नई गुफ्तगू के साथ। हमें रहेगा आपके कॉल्स का इंतजार। तब तक दीजिए मुझे यानी गरिमा शाक्य को अनुमति। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान। मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए हेलो मेरी पसंद।
1: अभी आप सुन रहे थे हेलो मेरी पसंद का पुनः प्रसारण। संवादक थे गरिमा शाक्य, प्रस्तुतकर्ता थे अनिंद्र सिंह। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी चुनावी प्रक्रिया बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक

0: नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, उस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोता, इसी सभा में अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी 5:30 पर। इसमें आज हम आपसे चर्चा करेंगे अतुलनीय भारत के बारे में, जिसमें जानेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। हेल्थ प्लस में जानकारी दी जाएगी वर्षा ऋतु में आहार विहार विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे चारू शर्मा से उनकी वार्ता, मानव स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आवश्यक है बेहतर वायु विषय पर। हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक 6:00। श्रोता, इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता जिसका विषय है किन्नू संतरा के बाग लगाकर आय दोगुनी करें। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सत्येंद्र बाबू यादव। चर्चा होगी कृषक समग्र विकास योजना पर। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी मौसम की, मंडी भाव की और आप आनंद लेंगे लोकगीतों का।

श्रोताओं, 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। इसमें चर्चा का विषय रहेगा हेपेटाइटिस दिवस। वार्ता होगी स्वदेशी और स्वावलंबन से मजबूत होता भारत विषय पर। वार्ताकार होंगे श्री विजय कुमार गोयल। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत 7:10 पर सुनेगा वार्ता प्रकृति से सीखे सजग रहने के सबक। वार्ताकार होंगे डॉक्टर योगेंद्र सिंह अग्र।

मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 पर। संसद समीक्षा 8:00 दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी। 8:15 पर सुनेगा देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर मनी टॉक मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे और 10:00 संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुनेंगे पंडित भोलानाथ का बांसुरी पर बजाया राग यमन और पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग हंसध्वनि।

श्रोताओं, अभी आप इस सभा के शेष कार्यक्रम सुन रहे थे। और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:05 पर। 6:25 पर चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार। श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसंग आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में वार्ता का विषय होगा कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव, वार्ताकार होंगे रतनलाल और प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:45 का। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर कहकशा खान जानकारी देंगी महिलाओं में दूध का पर्याप्त मात्रा में न होना। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या।

0: श्रोताओं, ये स्वर था लत आशा भोसले का, फिल्म थी नीलकमल, गीत साहिर का और संगीत था रवि का। अगला भक्ति गीत आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और शिव कुमार की आवाजों में, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, फिल्म लल्लू राम का ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और शिव कुमार की। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का।

श्रोताओ, आशा भोसले गा रही थी फिल्म संबंध के ये भक्ति गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में फिल्म काला बाजार से ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के गाए फिल्म काला बाजार के इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी मुस्कुराते हुए अपनी पढ़ाई, नौकरी, कॉलेज, दोस्तों और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वैसे एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह अपने घर के बाहर कदम रखा हो और लगा हो कि हवा यार पहले जैसी नहीं रही, या फिर कोई पेड़ जिसके नीचे आप बचपन में खेलते थे आज वहाँ दिखाई ही ना देता हो? कभी किसी नदी या तालाब को देखकर लगा हो कि उसका पानी पहले जितना साफ नहीं रहा? दोस्तों, हम सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आसपास हो रहे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन सच तो ये है कि अगर हमारा आसपास साफ और सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। प्रकृति हमें बिना कुछ मांगे बहुत कुछ देती है, साफ हवा, पीने का पानी, पेड़ पौधे, फल फूल और एक सुंदर दुनिया। लेकिन अगर कोई एक चीज़ों को नुकसान पहुंचाए, तो क्या सिर्फ चिंता करने से काम चल जाएगा? नहीं, ऐसे समय में ज़रूरत होती है ऐसे नियमों की जो प्रकृति की रक्षा करें और गलत काम करने वालों को रोके। अब आप इसकी अहमियत तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन इस विषय पर आगे बात करने से पहले मुझसे मिलिए। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी साथी रोशनी शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का आकाशवाणी आगरा के यूथ स्पेशल कार्यक्रम युववाणी में। यहां हम बात करते हैं ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, हमारे समाज से जुड़ी होती हैं और हमारे भविष्य को बेहतर बनाती हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक गाँव है, उस गाँव के पास एक छोटी सी नदी बहती है। गाँव के लोग उसी नदी का पानी पीते हैं, उसी से खेतों की सिंचाई भी करते हैं और बच्चे भी वहीं खेलते हैं। एक दिन नदी के किनारे एक फैक्ट्री लग गई। धीरे धीरे उस फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में जाने लगा और कुछ ही दिनों में क्या हुआ, नदी का पानी गंदा हो गया, मछलियां मरने लगी, खेतों पर असर पड़ने लगा और लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। अब गांव वाले क्या करें, वे कहाँ जाएं, उनकी बात कौन सुनेगा? इसी तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहाँ पर्यावरण से जुड़े मामलों को जल्दी सुना जा सके और उनका सही समाधान निकाला जा सके। दोस्तों, इसका नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी। अब इसका काम क्या ही हो सकता है दोस्तों? इसका काम है पर्यावरण से जुड़े मामलों पर जल्दी फैसला देना। अगर कहीं पेड़ों की बिना वजह कटाई हो रही है, या नदियों का पानी गंदा किया जा रहा है, या जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे प्रकृति और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, तो ऐसे मामलों पर ये संस्था सुनवाई करती है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि विकास भी हो लेकिन प्रकृति भी सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर सिर्फ इमारतें बनती रहीं और पेड़ खत्म हो जाएं, तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज के चलते

0: आसाम में आई बाढ़ों का तो सामना अभी हम कर ही रहे हैं। दोस्तों, आज के युवा इस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम एक पौधा लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, पानी बचाएं और अपने आसपास सफाई रखें, तो ये भी प्रकृति की रक्षा का ही हिस्सा है। याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। और एक और ज़रूरी बात, प्रकृति सिर्फ हमारी तो है नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों की भी है। इसलिए हमें इसे उतना ही सुंदर छोड़कर जाना है जितना हमें मिला है। जब हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं तो हम अपने ही भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ियों का भी। आज से एक छोटा सा वादा करते हैं, जहां भी मौका मिलेगा हम प्रकृति का साथ देंगे, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इसी से संबंधित है आपका आज का सवाल, यानी आज यानी 28 जुलाई को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है। हिंट तो मैं दे ही चुकी हूँ कि हमारी चर्चा से ही संबंधित है इसका जवाब। तो इसका जवाब सोचिए, अभी हम बात कर रहे थे प्रकृति की सुरक्षा की, कि ये कितना जरूरी है। लेकिन जब पेड़ कम होते हैं, धुआं बढ़ता है और हवा साफ नहीं रहती, तो इसका सबसे पहला असर हमारी सेहत पर ही पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि हम सुरक्षित प्रकृति अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए भी रखते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि बीमारी अचानक आ गई, लेकिन उसकी वजह हमारे आसपास का वातावरण भी हो सकता है। साफ हवा सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हर इंसान की ज़रूरत है। जिस हवा में हम हर पल सांस लेते हैं, अगर वही शुद्ध ना हो तो स्वस्थ रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का रिश्ता एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं चारू शर्मा। तो चलिए जानते हैं उनसे कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आवश्यक है बेहतर वायु के बारे में।
1: पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिन्हें अन्य शब्दों में हम भोजन, वस्त्र और आवास भी कहते हैं। यह सच है कि इनके बिना जीवन जीना मुश्किल है, परंतु इनसे पूर्व भी हमारी एक आवश्यकता है जो इससे ज़्यादा जरूरी है और जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वह है श्वसन। जी हाँ, हम सभी के जीने के लिए श्वसन क्रिया अर्थात सांस लेना आवश्यक है। जिस तरह जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है, उसी तरह स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहतर वायु में सांस लेना आवश्यक है। आज जब कभी हम अपने दादा दादी या माता पिता के साथ बैठते हैं और उनके बचपन के किस्से सुनते हैं, तो पता चलता है कि वे नदी का जल पिया करते थे। उनके घर के आंगन में और घर के आसपास कई बड़े बड़े पेड़ होते थे, जहां वे रोज शाम को खूब खेला करते थे। कैसे वे रात को नीले आसमान में चमकते तारों को निहारते हुए छत पर सोया करते थे। वे पेड़ों से फल तोड़कर खाया करते थे। इसके अलावा हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं में ऐसे कई अवसर आते हैं जहां हम वृक्षों की पूजा को विशेष महत्व देते हैं, उन्हें देवताओं के समान ही आदर दिया जाता है। यहाँ तक कि पीपल के वृक्ष में तो माता लक्ष्मी का वास कहा जाता है। इन सभी से एक बात साफ होती है कि हमारे पूर्वज स्वयं को न केवल प्रकृति से जोड़कर रखते थे, साथ ही उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। आज भले ही विज्ञान की सहायता से नित्य नवीन अनुसंधान हो रहे हैं जो हमारे जीवन को आसान कर रहे हैं और हमें तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, परंतु इससे परे एक सच यह भी है कि स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। पीने के लिए साफ पानी, सांस लेने के लिए साफ हवा, ये सभी पहले हमें बिना किसी प्रयास के प्राप्त होते थे, परंतु आज हम रुपए देकर पीने के लिए पानी तो खरीद लेते हैं, परंतु स्वच्छ वायु के लिए तो हम यह भी नहीं कह सकते। वायु के प्रदूषित होने से सबसे पहले स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, परंतु आज जिस तरह हमारे आसपास की वायु की

0: गुणवत्ता का स्तर खराब हो रहा है। इससे हमारा, हमारे परिवार का तथा समाज का पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना संभव प्रतीत नहीं होता। हमारे आसपास वायु के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ हैं कचरा जलाना, मिट्टी के तेल का प्रयोग, धूम्रपान, बर्निंग ईंधन, एयर फ्रेशनर, धमाकेदार धुएं, प्रिंटर, भवन निर्माण की गतिविधियां, विषाक्त गैस, परमाणु हथियार तथा ज्वालामुखी विस्फोट आदि। लंबे समय तक दूषित वायु के वातावरण में रहने से हम गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, दिल का दौरा आदि बीमारियां प्रदूषित वायु के संपर्क में रहने से ही होती हैं। AIR क्वालिटी इंडेक्स की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की वायु गुणवत्ता पिछले वर्षों के मुकाबले और ज्यादा खराब हो गई है। वायु प्रदूषण के कारण विश्व भर में हर 9 मौत में से एक वायु प्रदूषण से ही होती है। यह सभी के लिए चिंता का विषय है। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वायु में सांस लेना बेहद आवश्यक है, परंतु फिर भी हम अपने आसपास वायु साफ रहे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। एक तरफ हम अपने मूल अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं और उनमें कमी होने पर हम न्यायालय जाते हैं, परंतु दूसरी तरफ हम अपने मूल कर्तव्य के पालन के प्रति जरा भी सजग नहीं है और ना ही उनका पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारे संविधान के भाग 4(1) के अनुच्छेद 51(1) में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत एक कर्तव्य यह भी है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आज हमारी नासमझी और स्वार्थ परायणता के कारण ही हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निरंतर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु हमें भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए आगे आना होगा। हमें अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जैसे अपने घर के आसपास खाली जगह देखकर पेड़ लगाना व उनकी देखभाल करना, धूम्रपान ना करना, कचरा ना जलाना, ऐसे ईंधन के प्रयोग से बचना जिससे वायु प्रदूषित हो, कम दूरी पर जाते समय पैदल चलना, निजी वाहनों की अपेक्षा सामूहिक वाहन को महत्व देना, प्लास्टिक थैलियों का कम से कम प्रयोग, सौर ऊर्जा का प्रयोग, रिसाइकिल किए जाने वाले उत्पादों का प्रयोग आदि। इसके अलावा हमें अपने परिवार, मित्रों व आसपास के सभी व्यक्तियों को इस विषय पर जागरूक करना होगा, जिससे वे भी वायु प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे सकें। वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को कम करने हेतु व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 22 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस को मनाने पर सहमति बनी थी। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए स्वच्छ वायु के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 से प्रत्येक वर्ष एक अलग थीम के साथ नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। यह थीम संसाधनों, समय और प्रयासों के सामूहिक निवेश के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करेगी।
1: दोस्तों, अभी आपने जाना चारू शर्मा से कि अच्छी सेहत के लिए स्वच्छ हवा कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम साफ हवा की बात करते हैं तो एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि आखिर ये साफ हवा आती कहाँ से है? और इसका सबसे सही जवाब है हमारे जंगल। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि ये धरती के फेफड़े हैं।

जितने हरे भरे जंगल होंगे उतनी ही शुद्ध हवा हमें मिलेगी। और यही जंगल ना जाने कितने जीव जंतुओं का घर भी है। अगर जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। दोस्तों, इसी बात से जुड़ा है हमारा अगला पड़ाव। हमारे देश में कई ऐसे जंगल हैं जो अपनी सुंदरता और वन्य जीवों के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, और इन्हीं में से एक है पेरियार टाइगर रिजर्व। दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। ये जगह अपनी हरियाली, घने जंगलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है पेरियार झील, जहाँ नाव में घूमते हुए दूर दूर तक फैले जंगल और कई वन्य जीवों को देखा जा सकता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों, कि यहाँ बाघों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन सिर्फ बाघ ही नहीं, यहाँ हाथी, गौर, सांभर, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरी और पक्षियों की कई सुंदर प्रजातियाँ भी रहती हैं। प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीवों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब देश में बाघों की संख्या तेजी से कम होने लगी थी। तब सरकार ने कई टाइगर रिजर्व बनाए ताकि इन दुर्लभ जीवों को सुरक्षित वातावरण मिल सके, और पेरियार टाइगर रिजर्व भी इसी प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ वन विभाग के कर्मचारी दिन रात जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को भी जंगलों के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाता है। लेकिन क्या दोस्तों सिर्फ सरकार और वन विभाग की ही जिम्मेदारी काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अगर हम कहीं घूमने जाएं तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ प्लास्टिक ना फेंकना, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाना और वन्य जीवों को परेशान ना करना। दोस्तों, प्रकृति का आनंद तभी तक है जब तक हम उसका सम्मान करते हैं। आज के युवाओं के लिए ये एक सीख है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे खूबसूरत जंगलों, स्वच्छ हवा और अनमोल वन्य जीवों को देख सकेंगी। फिलहाल इस खूबसूरत सोच के साथ लेते हैं एक छोटा सा संगीत विराम। कहीं नहीं जाइए, क्योंकि संगीत के बाद युववाणी में मुलाकात होगी एक और रोचक विषय के साथ।

वेलकम बैक साथियों। दोस्तों, अभी तक हमने प्रकृति, जंगल और स्वच्छ वातावरण की बात की, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास का वातावरण तो अच्छा हो, फिर भी हम अपने खान पान और दिनचर्या का ध्यान न रखें, तो क्या हम पूरी तरह स्वस्थ रह पाएंगे? शायद नहीं। खासकर बरसात के मौसम में तो हमें अपनी सेहत का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बरसात अपने साथ हरियाली तो लेकर आती है, लेकिन कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। इस मौसम में पानी और खाने की चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। गंदे पानी और दूषित भोजन के कारण कई तरह के संक्रमण फैल सकते हैं, और इन्हीं में से एक बीमारी है हेपेटाइटिस। दोस्तों, आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जा रहा है, और इस दिन का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक किया जा सके, जिसे समय रहते बचाव भी किया जा सके। अब सवाल ये है कि हेपेटाइटिस होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग होता है लिवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। ये खाना पचाने, शरीर से गंदगी बाहर निकालने और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब किसी वायरस या दूसरे कारणों से लिवर में सूजन आ जाती है तो उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, और इनमें से हेपेटाइटिस ए और ई अक्सर गंदे पानी और दूषित भोजन से फैलते हैं, जिसका हमें बरसात के मौसम में ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका खतरा बढ़ सकता है। वहीं हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित खून, असुरक्षित सुई और अन्य माध्यमों से फैल सकते हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षण ये भी हैं कि बहुत ज़्यादा थकान लगना, भूख कम लगना, बुखार आना, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होना और आँखों या त्वचा का पीला पड़ जाना। अगर ऐसे लक्षण कभी दिखाई दें तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं बरसात में आहार विहार की, यानी खान पान और दिनचर्या की। दोस्तों, इस मौसम में हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाइए। खुले में बिकने वाला या बहुत देर से रखा हुआ भोजन खाने से बचिए। पानी हमेशा उबाल कर या साफ और सुरक्षित ही पीइए। खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ जरूर धोइए। हरी सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल कीजिए। बाहर से कटा हुआ फल या बिना ढका हुआ खाना खाने से बचिए, क्योंकि सिर्फ भोजन ही नहीं अपनी दिनचर्या का भी ध्यान रखना है। समय पर सोइए, हल्की फुल्की कसरत कीजिए, और बारिश में भीग जाएं तो जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं। दोस्तों, स्वस्थ शरीर ही हमारे सपनों को पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए बरसात सिर्फ मौसम का आनंद ही नहीं, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने के लिए भी है। इसी

दोस्तों आप पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जहां हम जानेंगे आज के सवाल का उत्तर। तो हमने आपसे पूछा था कि 28 जुलाई को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है, और इसका सही उत्तर है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। दोस्तों ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमारी सबसे अनमोल धरोहर है। अगर हम आज पेड़ पौधे, जल, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों भी एक स्वस्थ और सुंदर धरती पर जीवन जी सकेंगे। अब चलते चलते आज आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि प्रेम जताइए कम और करिए अधिक। सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कामों से अपनापन दिखाइए। अपने माता पिता की मदद कीजिए, दोस्तों का साथ दीजिए, किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाइए, और प्रकृति के लिए भी रोज़ एक छोटा सा अच्छा काम ज़रूर करिए। घड़ी की सुई इशारा कर रही है, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम्यलोक।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम ग्रामीलोक, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी जानकारियाँ जो आपके जीवन को आसान, सुरक्षित और समृद्ध बनाने में सहायक हों। तो आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है कृषक समृद्ध विकास योजना, और मैं हूँ आज के इस खास कार्यक्रम की होस्ट और आपकी दोस्त उमा अली। किसान साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव भी है। लेकिन बदलते मौसम, बढ़ती लागत, सिंचाई की समस्याएं, बाजार में मूल्य अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाएं किसानों के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी करती हैं। इन्हीं चुनौतियों का समाधान खोजने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा कृषक समृद्ध विकास जैसी योजनाओं के माध्यम से समृद्ध कृषि विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसी योजनाओं का उद्देश्य क्या है और किसान इनसे किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। साथियों, किसी भी किसान की उन्नति केवल अच्छी फसल तक सीमित नहीं होती। उसकी आय, खेती की लागत, सिंचाई, आधुनिक तकनीक, पशुपालन, बागवानी, भंडारण और बाजार तक पहुंच, ये सभी बातें मिलकर किसान के समृद्ध विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ कृषक समृद्ध विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती अपनाने, उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और आय के नए स्रोत उपलब्ध कराने में सहयोग देना है। इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत किसानों को बेहतर बीज, उन्नत कृषि उपकरण, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, मृदा परीक्षण, प्रशिक्षण तथा कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आज खेती केवल परंपरागत तरीकों से नहीं की जा सकती। साथियों, आधुनिक तकनीक समय की आवश्यकता बन चुकी है। यदि किसान मृदा परीक्षण के आधार पर खाद का प्रयोग करें, मौसम की जानकारी के अनुसार फसल बोएं, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाएं तथा उन्नत बीजों का उपयोग करें तो उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। सरकार और कृषि विभाग समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनमें नई तकनीकों, उन्नत खेती और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जाती है। किसानों को चाहिए कि वे इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें। कृषक समृद्ध विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है कृषि के साथ अन्य आय के स्रोतों को जोड़ना। केवल फसल उत्पादन पर निर्भर रहने के बजाय आप डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन और बागवानी जैसे व्यवसाय भी अपना सकते हैं। इससे एक ओर आय बढ़ती है, वहीं प्राकृतिक आपदा या फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक नुकसान भी कम होता है। इसे ही कृषि विविधीकरण कहा जाता है, जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रिय श्रोताओं, आज डिजिटल तकनीक भी किसानों

की बड़ी साथी बन चुकी है। मोबाइल फोन के माध्यम से किसान मौसम की जानकारी, बाजार भाव, कृषि विशेषज्ञों की सलाह तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करके किसान समय और धन दोनों की बचत कर सकते हैं। किसानों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO, सरकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ें। सामूहिक रूप से कार्य करने पर तथा बीज, खाद, उपकरण कम लागत पर उपलब्ध हो सकते हैं तथा उत्पादों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य भी मिल जाता है। संगठन की शक्ति किसानों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाती है। तो साथियों, कृषक समग्र विकास का अर्थ केवल अधिक उत्पादन नहीं बल्कि किसान का आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त होना है। जब किसान आधुनिक तकनीक अपनाएगा, जल और मिट्टी का संरक्षण करेगा, कृषि के साथ अन्य व्यवसायों को जोड़ेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएगा, तभी उसकी आय में स्थायी वृद्धि संभव होगी। आइए हम सब मिलकर अपने किसानों को जागरूक, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का संकल्प लें। और साथ ही सुने ये लोकगीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत आवाज़ थी राम बालक दास और साथियों की। किसान साथियों, बारिश के मौसम में मिट्टी में पर्याप्त नमी होने से पौधे की जड़ें जल्दी फैलती हैं व पौधे की जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। किसान साथियों, आगरा व इसके आसपास किन्नू संतरा के बाग लगाने के लिए पर्याप्त संसाधन है। अगर आप बाग लगाते हैं तो उसके जरिए आप दोगुनी कमाई भी कर सकते हैं। कैसे, आइए इस विषय पर सुनते हैं ये भेंट वार्ता, जिसका विषय है किसान किन्नू संतरा के बाग लगाएं और अपनी आय दोगुनी करें। डॉक्टर सत्येंद्र बाबू यादव से भेंट कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको किन्नू संतरा के बाग कैसे लगाएं और उससे कैसे अपनी आमदनी को दूनी तिगुनी करें, इस विषय में आपको जानकारी देंगे। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सत्येंद्र बाबू यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर के, और आपने किन्नू संतरा के बाग का व्यापक पैमाने पर इस क्षेत्र में खेती कराने का बीड़ा उठाया है। आपने बहुत सारे बाग विकसित किए हैं किन्नू संतरा के, और उससे न केवल खुद को बल्कि इस क्षेत्र के किसानों को भी बहुत आमदनी बढ़ाने में मदद की है। तो डॉक्टर सत्येंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि हमारा जो आगरा और आसपास का जो क्षेत्र है, क्या ये किन्नू संतरा की खेती के लिए उपयुक्त है? यहाँ का वातावरण उपयुक्त है इसके लायक?
2: हाँ, निसंदेह जो आगरा का क्षेत्र है, यहाँ किन्नू संतरा की बहुत अच्छी खेती होती है। वैसे तो किन्नू संतरा ऐसा है, मैदानी क्षेत्रों में कहीं भी लगाया जा सकता है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में ही लगाया जा रहा है। और आगरा में तो इसकी खेती की जा रही है विगत 15 वर्षों से, बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ खेती हो रही है।
1: आपने तो खुद भी इसके बाग लगाए हैं, और कैसी पैदावार हो रही है इस क्षेत्र में?
2: हाँ, हमारे अपने खुद के बाग हैं। सबसे पहले तो हमने एक्सपेरिमेंट अपने बाग लगा के ही किया था, उसके बाद में किसानों को प्रेरित किया है इसके लिए, और उसके बाद हमने यहाँ किसानों को गांव-गांव संगोष्ठियां करके प्रेरित किया कि आप जो लगातार आलू की फसल करते जा रहे हैं, इसके साथ साथ आप फलदार फसल करें, जैसे किन्नू संतरा की फसल करते हैं, तो इससे आपको दोगुनी इनकम होगी। और निसंदेह हमारे द्वारा जो लगाए हुए हमारे अपने बाग थे, उनको किसानों ने देखा, उससे प्रेरित होकर अपने यहाँ बरौली हिल ब्लॉक है आगरे का, इधर फतेहाबाद रोड से आगे कुछ जाएंगे तो यहाँ से किसानों ने लगाने की शुरुआत की है। आज जो स्थिति है, लगभग 1,000 हेक्टेयर में आगरा में किन्नू संतरा की खेती की जा रही है।
1: जी। अच्छा सर, ये जो फसल है इसको लगाने के लिए इसके अच्छे पौधे कहाँ से प्राप्त होंगे? इसके लिए क्या किस प्रकार खेत तैयार करने हो?

0: कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होगी, कुछ इस विषय में बताइए।
1: अच्छा, पौध के बारे में बताना चाहेंगे। पौध अभी आगरा में इसकी नर्सरी कम तैयार हो रही है। इसके पौधे पंजाब से लाते हैं, सपावली जिला है, पंजाब के दो तीन जिले हैं जिधर नर्सरी इसकी पौध अच्छी तैयार की जाती है, और वहीं से ही पौध लेके आते हैं इसको, और उससे यहाँ लगाया जाता है। और यहाँ की मिट्टी जो हमारी मिट्टी है, बलुई दोमट है, दोमट मिट्टी, इस टाइप की मिट्टी उपयुक्त है इसके लिए, और इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और विशेषकर आगरा में भी इधर पानी की अभी जिस हिसाब से कमी है, उस हिसाब से बहुत अच्छी फसल है ये।
0: जी, प्रति एकड़ कितनी पेड़ी लगाने की आवश्यकता होती है किन्नू संतरा की?
1: 1 एकड़ में 18 बाई 18, 18 फीट की दूरी पे किन्नू संतरा के पौधे लगाते हैं, तो लगभग 150 पौधे आते हैं 1 एकड़ खेत में।
0: जी। और फल के पेड़ी लगाने से पहले जो तैयारी करते हैं, वो क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किसानों को क्या
1: अच्छा,
0: ध्यान
1: एक
0: रखना
1: चीज और
0: चाहिए?
1: बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा इसके लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप खेत में फसल कर रहे हैं, आलू कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, कोई जो फसल कर रहे हैं, उसके लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी करते रहिए, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं होती है। वहीं आप 18 18 फीट पे 1 महीने पहले गड्ढे खुदवा दीजिए, और गड्ढे खुदवाने के बाद हल्की गोबर की खाद उसमें डाल देते हैं, ठीक है। गोबर खाद के बाद में पौधे लगाते हैं जून के जुलाई के महीने में। एक उपयुक्त समय फरवरी का है, ज्यादातर हम जून जुलाई में ही लगाने का सजेशन देते हैं, क्योंकि उनको बरसात का पूरा समय मिल जाता है। और उसके बाद में जब हम इसको पौधे को लगा देंगे, तो इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम पूरी फसल अपनी करते रहते हैं, जिससे क्या उस फसल के लिए जो हम गुड़ाई करते हैं, जो नराई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, उसी से इन पौधों पे भी असर आता जाता है, ठीक है।
0: जी,
1: पानी भी उसी से लगता रहता है।
0: अलग से कोई बहुत विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है इसके लिए।
1: जी,
0: अच्छा, जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो कितने साल के बाद फल प्राप्त होने लगता है?
1: हाँ, ये तीसरे साल भी कुछ फल आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से 4 साल में अच्छे फल देते हैं ये।
0: और कितनी पैदावार हो जाती होगी प्रति एकड़?
1: एक पौधे पे लगभग 1 कुंटल का एवरेज रहता है, 1 कुंटल फल आ जाता है,
0: जी।
1: और 1 एकड़ में 150 पौधे हैं, 1500 कुंटल आपका हो गया।
0: जी, यानी कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है ये किन्नू संतरा।
1: हाँ,
0: अच्छा सर, चूंकि किसान सशंकित रहते हैं कि पता नहीं ये हमारे क्षेत्र का पौधा है नहीं, ये फल यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, हालांकि अब जब जिस तरीके से लग रहा है और लोग फायदा भी उठा रहे हैं इसकी फसल का, तो क्या सरकार ने भी कुछ प्रोत्साहन योजनाएं चलाई हैं इस प्रकार के, इस किन्नू संतरा को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के?
1: इसके लिए सरकार के द्वारा औद्यानिक मिशन योजना जो चलती है,
0: हाँ
1: औद्यानिक मिशन योजना में बहुत सारी फसलें होती हैं, उसमें किन्नू संतरा को भी शामिल किया गया है। तो उससे क्या है, किसानों को उसके पौधे लगाने के लिए, उसके जो बाग लगाते हैं, उसके लिए औद्यानिक मिशन योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा कुछ धनराशि मिलती है किसानों के लगाने के लिए।
0: जी।
1: दूसरा, उद्यान विभाग भी प्रोत्साहित करता है औद्यानिक मिशन योजना के थ्रू, और साथ ही साथ यहाँ लगाए जा ही रहे हैं पहले से, तो किसान ऑलरेडी जानते हैं कि ये किन्नू संतरा अच्छा है।
0: तो किसानों को अगर इसका लाभ लेना है इस योजना का, तो क्या करना चाहिए, कहाँ उन्हें संपर्क करना चाहिए?
1: इस योजना से लाभ लेने के लिए उन्हें जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में,
0: जी
1: DHO ऑफिस में जाना पड़ेगा,
0: हाँ,
1: वहां से उन्हें संपर्क करना है।
0: जी। ऐसे तो लोग प्रायः इसका पूरे भारतवर्ष में संतरा को लोग ज़्यादा पसंद करते रहे हैं, उसका की जो फांक होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है, जो खाने में जो उसका रस है, मिठास है, वो संतरा बहुत आकर्षित करता है। लेकिन इन दिनों किन्नू की बहुत बड़ी पैदावार हो रही है और किन्नू मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। किन्नू की क्वालिटी और अच्छी हो जाए, खूब बढ़िया उसमें रस मिले, मिठास मिले, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे किसानों को?
1: अच्छा, पहला तो हम आपको ये बताना चाहें, जैसे संतरा में जिस तरह की मिठास है, या न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू संतरा और किन्नू में कोई कम नहीं है। जैसे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू संतरा की है, वही न्यूट्रिटिव वैल्यू किन्नू की है।
0: तो जब वही है, लेकिन क्या दोनों में कुछ फर्क आप
1: देखो,
0: देखते
1: एक तो
0: हैं?
1: फर्क ये है कि ये किन्नू संतरा जो है, ये जाड़ों में होता है बेसिकली। इसका प्रोडक्शन जो है नवंबर से शुरू होता है, और नवंबर से लेके जनवरी तक हमको फल पूरी तरह से पक के तैयार हो जाता है, उसमें टूटने लगता है।
0: जी
1: तो और संतरा जो मार्च में आना शुरू होता है,
0: हाँ
1: तो ये हमारा जनवरी में शुरू हो जाता है।

0: के समय में ये संतरे की आवश्यकता वो पूरी करता है।
1: तो किसान भाइयों आप समझें कि ये जो किन्नू संतरा है ये विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है, और इसलिए जाड़े में जो सर्दी जुकाम होता है उस समय ये एक औषधीय गुण के साथ आपके उपयोगी फल के रूप में सामने आता है। तो अगर इसकी खेती करें तो आप जाड़े में जब इसकी पैदावार होगी तो वो सबके लिए बहुत लाभदायक होगा, न केवल उनके परिवार के लिए और गांव के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी। सर चलते चलते क्या कहेंगे हमारे किसान भाइयों को इस फसल
0: बहुत
1: को?
0: अच्छा आपने बताया। चलते चलते ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इसकी अच्छी रहती है, और विटामिन सी बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, और आज के समय में अगर किसानों को दोगुनी इनकम करनी है तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो फलदार पौधे लगाएं, और फलदार पौधों में किन्नू संतरा को लगाएं,
1: जी
0: जिससे जो इसके बीच में जमीन बचती है उसमें इंटरक्रॉपिंग रूप में वो फसल कर सकते हैं, तो उस फसल से भी इनकम होगी और किन्नू संतरा से भी इनकम होती। किन्नू संतरा ही फसल से ज्यादा अच्छी इनकम देता है, एक
1: जी
0: हेक्टेयर में जब इतना अच्छी पैदावार होती तो उसी से अच्छा पैसा मिलता है, और फसल अलग से होगी तो इससे किसान की दोगुनी तीन गुनी इनकम होगी। तो हम किसानों को सुझाव देना चाहेंगे कि किन्नू संतरा की खेती करें, इसके पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं।
1: जी डॉक्टर सत्येंद्र बाबू यादव आप हमारे स्टूडियो आए और किन्नू संतरा की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था किसान किन्नू संतरा के बाग लगाएं, अपनी आय दोगुनी करें। डॉक्टर सत्येंद्र बाबू यादव से भेंट कर रहे थे डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अंतराल के बाद साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अब वक्त है आपको उस नई खोज के बारे में बताने का जो हमारी खेती किसानी में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथियों, इस वर्ष कृषि क्षेत्र में एक नई और उपयोगी तकनीक चर्चा में है, एआई आधारित स्मार्ट लेजर वीडर। यह मशीन कैमरा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से फसल और खरपतवार की पहचान करती है। इसके बाद लेजर किरणों से केवल खरपतवार को नष्ट कर देती है, जबकि फसल पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रासायनिक खरपतवार नाशकों की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। इससे खेती की लागत घटती है, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ता है। साथ ही खेत में श्रमिकों की आवश्यकता भी कम होती है और समय की बचत होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसी स्मार्ट मशीनें भारतीय कृषि को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और लाभदायक बनाएंगी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: किसान साथियों, वर्षा ऋतु का यह समय उद्यानिकी फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पखवाड़े में आम, अमरूद, नींबू, आंवला, पपीता और कई अन्य फलदार पौधों का रोपण करने का सर्वोत्तम समय है। नए पौधों के चारों ओर जल निकासी की उचित व्यवस्था अवश्य करें ताकि वर्षा का पानी जमा न हो। सब्जियों में टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और पत्तेदार सब्जियों की नर्सरी तैयार की जा सकती है। बेल वाली फसलों को सहारा दें और खेत से खरपतवार नियमित रूप से हटाते रहें। फलों की बागों में सड़ी हुई गोबर की खाद और आवश्यकतानुसार उर्वरकों का

प्रयोग करें। लगातार वर्षा के कारण फफूंद जनित रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए पौधों का नियमित निरीक्षण करें। कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही दवा का छिड़काव करें। सही समय पर किए गए ये उद्यान कार्य आपके बगीचे की स्वस्थ वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करेंगे। किसान साथियों, कार्यक्रम में अब समय है मंडी भाव का। टमाटर का भाव रहा 1000 रुपये से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज 1000 रुपये से 1600 रुपये। लहसुन का भाव रहा 6000 रुपये से 11000 रुपये प्रति क्विंटल। आलू 200 रुपये से 800 रुपये प्रति क्विंटल। हरी मिर्च 1000 रुपये से 2500 रुपये। और शिमला मिर्च का भाव रहा 1000 रुपये से 3000 रुपये प्रति क्विंटल। और साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये लोकगीत।

साथियों, कार्यक्रम की अंतिम चरण में अब समय है मौसम की जानकारी का। आज 28 जुलाई को आगरा और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहे, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कल 29 जुलाई को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। साथियों, एक सलाह है आप सभी के लिए, खेतों में जल निकासी की व्यवस्था को बनाए रखें, बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों से बचें। और आज का ग्रामीण लोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपने मित्र उमा अली को अनुमति दें। राम राम।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो साथी खालिद तनवीर का नमस्कार। लीजिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज फिर हाजिर है आपका मनपसंद मजदूर मंडल। स्वागत है हमारे सभी साथियों का। कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आज का प्रश्न। तो भाई, आज का प्रश्न हमारे श्रोताओं के बच्चों से जुड़ा हुआ है, जो कि किशोर हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, छात्र और छात्रा होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, और उनसे सवाल कुछ ज्ञानवर्धन का है। उनको बताना है भारत का नव निर्मित संसद भवन देश को कब समर्पित किया गया। सभी श्रोता सवाल एक बार फिर सुन लें कि आज आपको बताना है कि अपने देश का नव निर्मित संसद भवन देश सेवा में कब समर्पित किया गया। और अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं साथियों। श्रमिक वर्ग में आर्थिक रूप से सक्रिय लोग यानी अधिकतम समय ओवर टाइम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करने वाले श्रमिक औसतन अपना लगभग एक तिहाई समय कार्यस्थल पर ही बिताते हैं। रोजगार को इस तरह से करने में और काम करने की स्थितियों का स्वास्थ्य समानताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कामकाज के अच्छे हालात सामाजिक और शारीरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्रमिक भाई बहनों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना घरेलू आय, माल के उत्पादन और संस्थान के आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य जोखिम जैसे तेज गर्मी, शोर, धूल, खतरनाक रसायन, असुरक्षित मशीनें और दिमागी तनाव अनेक बीमारियों का कारण भी बनते हैं और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को बड़ा बना सकते हैं। एक सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के अलावा सभी श्रमिकों को कार्य संबंधी बीमारियों और चोटों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। कामकाजी लोगों में हड्डियों और मांसपेशियों का दर्द, शोर की वजह से सुनने में कमी और त्वचा से जुड़ी बीमारियों के अलावा हृदय, यकृत और सांस की बीमारियां भी शामिल हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के अच्छी तरह काम करने की ताकत को स्वास्थ्य कहा जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है, जिसके बाद बाकी सब चीजें आती हैं। जब आपका अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, इंसानी शरीर में होने वाली बीमारियों में हेपेटाइटिस की बीमारी एक प्रकार से यकृत की सूजन है, जो मरीज के लिए परेशानी का संकेत है। ये आमतौर पर इन्फेक्शन की वजह से होती है। लिवर के जरिए ही शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है, लेकिन इस बीमारी में लिवर सही तरीके से काम नहीं करता। तो हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार हैं, जिन्हें A, B, C, D और E कहा जाता है। ये अलग अलग वायरस अलग अलग तरीकों से फैलते हैं। अमरीकी संस्था CDC के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है और हर साल तकरीबन 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण भी बनता है। रोकथाम की तमाम रणनीतियों, टीकाकरण और दवाओं के बावजूद हेपेटाइटिस से होने वाली मौतें विश्व स्तर पर ही बढ़ रही हैं। हेपेटाइटिस ए और बी बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, जो आपसी संपर्क, दूषित भोजन, पानी, नशीली दवाएं लेने, असुरक्षित यौन संबंध रखने, इस्तेमाल की हुई सिरिंज, दूषित रक्त लेने और पहले से पीड़ित प्रसव के बाद शिशु में वगैरह जैसी वजहों से फैलता है। इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा तरीका है। इसमें लीवर की सूजन सामान्य से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। इनके लक्षणों में पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ दर्द, मतली आना, भूख न लगना, थकान रहना, बुखार होना, पित्त का संसाधन रक्त में होना जिससे पीलिया की शिकायत, गहरे रंग का मूत्र आना, त्वचा में खुजली और बुद्धि भ्रामकता मुख्य रूप है। हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है, लेकिन ऐसे उपचार मौजूद हैं जिनसे कई लोग ठीक हो जाते हैं। हालांकि इसमें लिवर सिरोसिस और कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, इसलिए CDC जांच करवाने की सलाह देता है। हेपेटाइटिस डी संक्रमण को हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, हालांकि इस उपचार की सफलता दर कम है। हेपेटाइटिस ई का संक्रमण विशेषकर दूषित जल और साफ सफाई की कमी से फैलता है। इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक टीका विकसित किया गया है, जिसे चीन में लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन अभी तक यह कहीं और उपलब्ध नहीं हो पाया है। लोगों के लगातार बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर यानी दर्द निवारक ले लेना, एंटीबायोटिक या कुछ जड़ी बूटियां या अन्य खाद्य पूरक दवाएं बार बार या बड़ी मात्रा में लेने से

का लीवर प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा आजकल के औद्योगिक रसायन और विभिन्न प्रकार के शाकनाशक कीटनाशक भी यकृत पर असर डालते हैं। शराब का सेवन, लीवर पर फैट जमा होना, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, हृदय और मधुमेह के रोगी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए शराब का सेवन रोकने, समय समय पर यकृत जांच करवाने, हेपेटाइटिस ए और बी से रोग के टीके लगवाने, खाने पीने और रहन सहन में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने, स्वयं दवाएं ना लेने, तनाव और अवसाद से बचने, असुरक्षित यौन संपर्क से बचने की सलाह भी दी जाती है। और हाँ, इसके अलावा वायरल बीमारियों में जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लेना भी एक महत्वपूर्ण जागरूकता है। वायरल हेपेटाइटिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसके अभाव में दुनिया भर में लोग हेपेटाइटिस की चपेट में आ जाते हैं। लीवर से जुड़ी इस बीमारी के कारण जान को भी खतरा रहता है। यह खतरनाक बीमारी सीधे लीवर को ही प्रभावित करती है, यहां तक कि कभी कभी यह फेल हो जाने से मृत्यु भी हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई यानी आज के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सहयोगी संगठन वायरल हेपेटाइटिस और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस साल 2026 के विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन यानी हेपेटाइटिस उन्मूलन में तेजी लाने के लिए बाधाओं को तोड़ना रखी गई है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2008 में की गई थी। इस वायरस की खोज अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक सैमुअल ब्लमबर्ग ने की थी। उन्होंने इस वायरस की खोज करने के बाद इसके इलाज के लिए टेस्ट और वैक्सीन का विकास भी किया। उनकी इस खोज के सम्मान में हर साल उनके जन्म दिवस यानी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मना दिया जाता है। दुनिया भर में इस दिन को मनाते हुए बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को इस जानलेवा वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी के लिए जागरूक किया जा सके। आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहिए और बरसात का मौसम है तो मनोरंजन के लिए अपने कार्यक्रम में सुनिए यह मधुर फिल्मी गीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वदेशी का अर्थ है देश में बनी वस्तुओं को अपनाना और उनका प्रचार प्रसार करना, यानी वोकल फॉर लोकल। और स्वावलंबन का अर्थ है अपनी जरूरतों के लिए खुद पर भरोसा करना और नए नए कामों की तरफ आगे बढ़ना। हाल ही के वर्षों में हमारे देश ने भी इस तरफ काफी तरक्की की है। आइए इसी बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं आज की वार्ता। विषय है स्वदेशी और स्वावलंबन से मजबूत होता भारत। वार्ताकार हैं विजय कुमार गोयल।
1: आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे देश का GDP 4.18 trillion dollars तक पहुंच चुका है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम लगभग $2697 रही। एक समय गरीबी और भुखमरी से जूझने वाला देश आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। हमारे देश की शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जहां आबादी के समय साक्षरता सिर्फ 12% थी, वो आज बढ़कर 75% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नजर डालें तो पोलियो उन्मूलन, बड़े पैमाने पर टीकाकरण, कोविड के समय प्रभावी स्वास्थ्य व्यवस्था और आयुष्मान भारत की सुलभ इलाज उपलब्ध कराने की योजना के फलस्वरूप आज भारत के नागरिक की औसत आयु लगभग 70 वर्ष हो गई है, जो विश्व में चौथे नंबर पर है। इसी के साथ साथ देश में बिजली की पहुंच, जो सन 1990 में केवल 50% आबादी तक ही थी, वो आज बढ़कर लगभग 100% आबादी तक पहुंच गई है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, मेट्रो, एयरपोर्ट और आधुनिक बंदरगाहों के निर्माण ने देश की तस्वीर बदल दी है। सन 2000 में जहां सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या 60 के आसपास थी, वो आज बढ़कर 150 से अधिक हो चुकी है। रेल यातायात, जो यातायात का प्रमुख साधन है, उसमें अनेकों आधुनिक प्रयोग किए गए हैं, जिनमें रेल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और गति पिछले सालों में कई गुना बेहतर हुई है। रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क का 90% हिस्सा विद्युतीकरण हो चुका है। लगभग 31,000 किलोमीटर से अधिक नए रेल ट्रैक जोड़े गए हैं। स्वदेश में निर्मित वंदे भारत ट्रेन 162 स्टेशनों से संचालित हो रही है, जो देश के 23 राज्यों को कवर करती है। भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत 17 जुलाई को अभी हाल ही में की गई है। हमें सभी को ज्ञात है कि इस ट्रेन से बिजली या डीजल की जरूरत नहीं होती है और इसलिए ये ट्रेन 100% पर्यावरण के अनुकूल है। इस ट्रेन के चलने से हमारा देश जर्मनी, चीन और अमेरिका के बराबर खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ डिजिटल क्षेत्र में भी हमारे देश में बहुत क्रांति आई है। हमारे देश में मोबाइल यूजर की संख्या 117 करोड़ तक पहुंच गई है। देश में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमने बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन किया है। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कारों में जो चयन प्रक्रिया पहले हुआ करती थी, उसमें पिछले 15 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, उसके तहत किसी राजनेता की सिफारिश के बजाय जमीन से जुड़े और सही मायने में समाज को दिशा देने वाले, देश के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने वाले, शिक्षा और साक्षरता में अभिनव प्रयोग करने वाले उन साधारण व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनकी न कोई बहुत ज्यादा ख्याति है और न ही जिनकी कोई सम्मान की चाहत है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन और स्वदेशी तकनीक में भी हमने बहुत अभिनव प्रयोग किए हैं। हमारे देश के रक्षा उत्पादकों में INS विक्रांत, ब्रह्मोस, नाग जैसी खतरनाक मिसाइलों, रडार, तेजस लड़ाकू विमान के देश में उत्पादन होने के कारण भारत एक शक्तिशाली देश बन गया है। आज हमारी ताकत दुनिया ने पहचान ली है। हम अपने मजबूत इरादों से दुनिया के किसी भी देश की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की शुरुआत 500 वर्षों से लंबित राम मंदिर निर्माण से ही शुरू हो गई है। उसके बाद प्रयागराज के महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा लगाई गई पवित्र डुबकी देश की संस्कृति रक्षा का पवित्र उदाहरण है। हम 1400 साल की गुलामी के बाद पिछले 77 साल से ही तो आजाद हुए हैं। इतने छोटे से कालखंड में हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक और स्वावलंब की मजबूती को दुनिया स्वयं देख रही है और स्वीकार कर रही है कि भारत एक महाशक्ति बन रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे देश का हर नागरिक दिल, दिमाग और मजबूत इरादों से लगा हुआ है और राष्ट्र निर्माण के लिए पूर्ण समर्पित है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में भी हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। सामाजिक सद्भाव का अर्थ होता है समाज में विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच एकता और समरसता का भाव स्थापित करना। यह एक दूसरे के प्रति सहयोग,

0: और समर्पण करने का, सम्मान करने का, भाव पैदा करने का एक आयाम है। समरस जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव या जातिगत ऊंच नीच के एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। पड़ोस में किसी कन्या की होने वाली शादी में बिना यह सोचे समझे कि वो किस जाति या किस संप्रदाय या किस परिवार की है, सभी लोगों का मिलजुल कर उस शादी को निपटाना, कंधे से कंधा मिलाकर बीमारी या किसी निधन की स्थिति में उसका सहयोग करना समाज का, सामाजिक सद्भाव का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम से अनावश्यक रूप से जातिगत भेदभाव पैदा कर दिए गए, जिसके कारण हमारा समाज कमजोर होता गया। यद्यपि समय समय पर अनेकों संतों और महापुरुषों ने प्रयत्न पूर्वक समाज को जोड़े रखने के लिए प्रभावी प्रयास किए, जिनमें गुरु नानक देव, संत कबीर, संत रविदास, स्वामी दयानंद, संत तुकाराम, गांधी जी और वीर सावरकर आदि प्रमुख थे। फिर भी मुगलों और अंग्रेजों द्वारा थोपे गए जातिगत विभाजन को पूरी तरह से मिटाने में हमको धीरे धीरे सफलता मिल रही है और इसी परिपेक्ष में हमारे समाज ने एक कुआं, एक मंदिर व एक शमशान का नारा दिया है, जो सामाजिक समरसता में एक मील का पत्थर है। मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे देश की भविष्य में जो भी योजनाएं हैं वो पूरे संसार में परम वैभव तक पहुंचाने की योजनाएं सफल होंगी।
1: श्रोताओं की सेवा में यह थी आज की वार्ता, स्वदेशी और स्वावलंबन से मजबूत होता भारत। वार्ताकार थे विजय कुमार गोयल। और आइए अब लेते हैं एक अंतराल।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: और अब बारी है आज के प्रश्न का उत्तर देने की। तो दोस्तों, आज हमारा सवाल था कि भारत का नव निर्मित संसद भवन देश को कब समर्पित किया गया था, और इसका सही जवाब है 28 मई 2023। जी हाँ श्रोताओं, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था और इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, जबकि इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को हुआ था, जबकि इसमें पहली संसदीय बैठक 19 सितंबर 2023 को आयोजित की गई। और साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ज्ञान सागर का, जिसमें आज बात करेंगे अपने पर्यावरण की, क्योंकि आज प्रकृति संरक्षण दिवस है और फिर समय की मांग भी है कि दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे पर्यावरण हालात पर बात अवश्य की जानी चाहिए। साथियों, कहा जाता है कि अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकेगा। इस दिवस का आयोजन हमारे पर्यावरण के साथ साथ इसमें मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसका अन्य मुख्य उद्देश्य लुप्त पेड़ पौधों और जानवरों का संरक्षण करना भी है, यानी विश्व पटल पर इस दिवस का आयोजन प्रकृति के सभी जीव जंतु, वनस्पति, मिट्टी, पानी, ऊर्जा संसाधन और हवा को बरकरार रखने, यानी इनका संरक्षण करने पर जोर देता है। जैसे ही हमारे दिमाग में प्रकृति शब्द आता है, अचानक ही हमारे दिमाग में फलों फूलों के साथ हरियाली, पहाड़, झरने, जंगल, पेड़ पौधों की तस्वीर सामने आ जाती है। हम सभी जानते हैं कि जल, थल और आकाश मिलकर पर्यावरण को बनाते हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति के इन वरदानों का भरपूर या कहें जरूरत से ज्यादा दोहन किया, लेकिन भूल गए कि इसका नतीजा क्या होगा। दोस्तों, पर्यावरण विनाश से परेशान हम सभी आज अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं ना दोस्तों। प्रकृति के लिए अगर कोई दूसरा शब्द है तो वो है हमारी पृथ्वी पर फैले हुए वन, उनमें मौजूद हर चीज। हम जानते हैं जितने अधिक वन होंगे हमारा पर्यावरण भी उतना ही सुरक्षित होगा। पर्यावरण की सुरक्षा में जंगलों और पेड़ों के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं। इन आयोजनों के मौके पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए कुछ न कुछ थीम भी रखी जाती है, जिसके पीछे उसकी उपयोगिता, उनके संरक्षण का भाव होता है। प्रकृति संरक्षण दिवस 2026 की प्रमुख थीम पुनर्स्थापना, लचीलापन और जिम्मेदारी है। इसे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और बिगड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने के लिए तय किया गया है। वनों के बगैर आज मानव समाज की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति द्वारा इंसानों को दिया गया एक बेहतरीन और कीमती तोहफा वन ही तो हैं। इन्हीं वनों में संपूर्ण प्रकृति के दर्शन हो जाते हैं और इतनी कीमती चीज पाने के बाद तो हमें अपने आप को धन्य महसूस करना चाहिए। वन हमें भोजन, लकड़ी, हवा और कई जरूरी चीजें लगातार देते रहते हैं। वह अनेक जानवरों के लिए एक घर की तरह हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण

0: को कम करने और मानसून लाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम सभी को याद रखना होगा कि हम सभी एक ही प्रकृति का हिस्सा हैं और हम अलग अलग नहीं हैं। हमें याद रखना होगा कि वन हैं तो हम हैं। और अब कुछ बातें सेहत टिप्स की। बरसात का मौसम है, इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा उबालकर या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, जिससे टाइफाइड हैजा जैसी बीमारियां ना हों। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू, अनार और गर्म सूप का सेवन करें। पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए दही और छाछ को अपनी डाइट में शामिल करें। खुले हुए, रखे, कटे हुए फल, स्ट्रीट फूड, बासी भोजन ना खाएं। और चलिए कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये मधुर बरसाती गीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओ, 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है।

0: विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में ISF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The discussion is underway in the Lok Sabha on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair

0: वार्ताकार हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह अग्र।
1: पृथ्वी पर समस्त जीव सह अस्तित्व से सामंजस्य से सुखी रहते हैं। प्रकृति जीवनदाता है, परमात्मा की रचना का सच्चा प्रतिबिंब है। आषाढ़ मास में किसान जब अपने खेत खलियानों हेतु हल तैयार करते थे तो कवि घाक की प्रकृति संबंधी पंक्तियों से सजग होकर पूर्ण विश्वास के साथ में भविष्यवाणी कर देते थे। वारिस के बारे में जनमानस में ये पंक्तियां प्रचलित थीं। कल से पानी गर्म हो, चिड़िया नावें धूल, घाघ कहे सुन वट्टरी, वर्षा होए मूल। अर्थात जब मटके का पानी अपने आप गर्म होने लगे और चिड़ियाएं धूल से नहाने लगे तो समझ लेना चाहिए अच्छी वर्षा होने वाली है। ऐसे ही कार्तिक के महीने में स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल को कवि ने सोने के समान मूल्यवान बताया। कार्तिक स्वाति कनक समान, घाघ कहें कि सुनो सुजान। तो इस प्रकार से पुराने समय में हमारे पूर्वज प्रकृति के बारे में कहते थे कि हमें प्रकृति जगाती है, चेताती है और हमें इशारा करती है, बिंबों द्वारा हमें सजग करती है कि हमें किस प्रकार से चेतना जागृत करके आगे बढ़ना है। कुछ वर्ष मैं कार्निकुवार में था। सुनामी तारसी से पूर्व की बात है। वहाँ के मूल निवासी जिन्हें होलचू कहा जाता है, पक्षियों की चहचहाट और बोली से समुद्र के उतार चढ़ाव के बारे में सजग हो जाया करते थे। ऐसा मैंने वहाँ अन्य चर्चाएं भी सुनी। ऐसे ही लोक चेतना में मान्यता है कि सुबह के समय पूर्व दिशा में अगर इंद्रधनुष दिखाई दे तो प्रकृति का संकेत है कि आगे मौसम खराब हो सकता है। परमात्मा की सच्ची रचना है प्रकृति और ये प्रतिबिंब है। प्रकृति तपस्वी की भांति मौन, अनुशासित, नियम और समय से कार्यबद्ध रहती है। प्रकृति में वृक्षों को स्थावर जीवन कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में नदी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, पृथ्वी सभी को देवता और मां स्वरूपा मानकर पूजा जाता है। जहां प्रभात काल में सूर्य की रश्मियां जीवन देती आती हैं और भारतीय संस्कृति में दिवाकर जगदाता को नमन कर अर्घ देकर पूजा जाता है। सूर्य सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। जगत के जीवनदाता पिता की भांति पशु पक्षी पादप सभी को जीवन ऊर्जा देते हैं। अनंत और असीम ऊर्जा के स्वामी हैं। जब हम किसी की प्रशंसा और आशीष देते हैं किसी को तो कहते हैं कि तुम्हारा यश सूर्य की भांति देवदीप्तमान होकर बढ़ता रहे। पृथ्वी हमारी माँ है और जल देवता है। सभी रस और गंध पृथ्वी माँ और जल देवता से ही तो संभव है। हमारी संस्कृति में नदियों को पूजा जाता है, माँ कहा जाता है। नदियां हमें परोपकार सिखाती हैं, अपने लिए जल सींच कर नहीं रखती बल्कि पशु पक्षी मानव वृक्ष सभी की जीवनदायिनी है। आवश्यकता है कि हम नदियों का संरक्षण करें, प्रदूषण से बचाएं। उनमें पुनर्जीवन की स्वच्छ होने की सहज शक्ति होती है। किन प्रदूषित कचड़े का निस्तारण सीधे किए जाने से उनका जीवन हाँफ उठता है। पृथ्वी पर शांति और संतुलन वृक्षों और वनों से ही संभव है। वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं। उनकी छांव पशु पक्षियों का बसेरा है। उनके फल समस्त जीवों का पोषण है। वृक्ष देवता हैं, वृक्ष परोपकारी हैं, सभी जीव जंतु उनके कृतज्ञ हैं। आज जब हम एक वृक्ष माँ के नाम सार्थक पहल चला रहे हैं तो यह हमारे वर्तमान के साथ साथ आगामी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षा की पहल है। वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं है, वृक्ष पूजनीय है। मेरी दादी माँ हमें सूर्यास्त पश्चात पत्ते नहीं तोड़ने देती थी, कहती थी अब पौधे सो रहे हैं। वैद्य जब पत्ते फूल औषधि चुनते थे तो पहले नमन करते थे, तत्पश्चात कृतज्ञता प्रकट करते हुए पत्ते या फूल इत्यादि लेते थे। प्रकृति कठिनाइयों को धैर्य के साथ सहन करती है। वृक्ष समस्त ऋतुओं में स्थिर प्रज्ञ योगी की भांति परोपकार की भावना से रहते हैं। हम मानवों को भी धैर्यवान और परोपकारी होना चाहिए। जीवन में नदी जैसी सरलता का प्रवाह होना चाहिए, पृथ्वी जैसा धैर्य होना चाहिए। प्रकृति से हमें शांति और संतुलन बनाए रखना सीखना है। हम नदी से सरलता, सहजता और परोपकार सीख सकते हैं। वृक्ष हमें बहुत सी कठिनाइयां होते हुए भी फल ही देते हैं, अपने लिए संचय नहीं करते। हमने धरती को माँ कहना बंद कर दिया। आज पर्यावरण असंतुलन शायद इसीलिए है। आधुनिक मानव ने

0: प्रकृति को पूज्य मानना शायद बंद कर दिया है। हमने नदियों को पानी का बहाव मात्र समझ लिया है। इसका परिणाम क्या है? अंधाधुंध वनों की कटाई, जहरीली हवा और अनियमित वर्षा, प्रकृति का यह स्वरूप इसी कारण से तो है। आज जब हम पुनः वृक्षारोपण कर रहे हैं तो हम सजग होकर प्रकृति के उस पीड़ा को समझ रहे हैं और पुनः पुनरुत्थान में लगे हुए हैं। मुझे अपने बचपन की एक बात याद आती है। हमारे बुजुर्ग जब खेतों में हल चलाने जाते थे तो हल चलाने से पहले पूर्व अपनी धरती माँ को नमन करते थे, उस माटी को माथे पर धारण करते थे। माटी धरती माता वृक्ष फसल और फल सब पोषण तो देती है। अगर हमारी जन्मदायिनी से हमें मोह है तो धरती माँ हमें पोषित करती है, हमें सब कुछ देती है। ऋषि मुनियों के आश्रम में वनों में ही होते थे, जिनकी सुरक्षा और संवर्धन का दायित्व वह स्वयं निभाते थे। पेड़ों के नीचे बैठकर ज्ञान चर्चा होती थी, आत्मचिंतन होता था और उस आत्मचिंतन से सत्संग से और ईश्वर का स्मरण करते हुए भारतीय संस्कृति की प्राचीन ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। आज हमें पुनः प्रकृति से वही प्रेम रखना है। वृक्ष केवल वनस्पति का हिस्सा नहीं है बल्कि वे मानवता में नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं, साझीदार हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना है। हम समस्त मानवों को पुनः इसी प्रकार से उठना होगा और रक्षापूर्ण और वृक्ष संवर्धन केवल एक सामाजिक अभियान नहीं है बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत प्राण है। बचपन में बालक का जीवन बिल्कुल सरल होता है, वासंती सूरज प्रभात सा, मन होता कोमल सीधा सादा, आम तरु के किस तले पात सा, उस वसंत के गवाक्ष को खुल जाने दो, सरल नदी सा बह जाने दो। जीवन में हमें नदी से सरलता और परोपकार सीखना है। एक बाल कवि लिखते हैं, नहर मधुजल गंगा जल सा, अम्मा के दुलार लाड़ सा, ताऊ चाचा के दुलार सा, इन वृक्षों के मधुर हास सा, वही प्रेम रस जन जन में भर जाने दो, सरल नदी सा बह जाने दो। प्रकृति से हम सरल निश्चक और संयम सीखें तभी हमारा जीवन धन्य है। प्रकृति हमें सजग करती है जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, जीवन में अनुशासन बनाए रखने के लिए और मानव चेतना को सहज रूप में बनाए रखने के लिए। नमस्कार।
1: श्रोताओ, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्ता। विषय था प्रकृति से सीखें सजग रहने के सबक। वार्ताकार थे डॉ. योगेंद्र सिंह अग्र। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्यरात्रि से लागू होगा डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। डॉ सिंह ने कहा कि यह संशोधन विधेयक कानून को और सख्त बनाने और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि इन सभी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ सके।
1: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्स, अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है, 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाए। और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त जाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्वरित और सुगम न्याय के प्रहरी के रूप में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। श्री योगी ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाने के साथ ही 500 करोड़ रुपए के कॉपर्स फंड की व्यवस्था की है।
3: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता की दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे, हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। राज्य सरकार कोई भी रहे इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 48वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ।

0: दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के 63,183 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने, नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश शासन ने आज 15 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। तबादला सूची के अनुसार तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अशोक मोथा डीजी फायर सर्विस बनाए गए हैं। आईपीएस मधुर अशोक जैन को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से पुलिस महानिदेशक अग्निशमन और आपात सेवा बनाया गया है। अमरेन्द्र कुमार सिंगर को पुलिस आयुक्त लखनऊ से पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया है, जबकि राम कुमार को लखनऊ रेंज से गोरखपुर जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। नवीन अरोरा को तकनीकी सेवाओं से वाराणसी जोन और पीयूष मोडिया को वाराणसी जोन से प्रयागराज पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन आज मध्य रात्रि से लागू होगा। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ वीके सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं।
1: मेरठ की लगभग 222 किलोमीटर से अधिक कांवर मार्ग है, जिसमें की 8 प्रमुख मार्ग है और सभी मार्गों का वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। नगर निगम के द्वारा भी बिजली के खम्भों का इंसुलेशन का काम किया जाता है। ये सारे काम प्रगति पे हैं। इसके अलावा कांवर पटरी मार्ग जो राइट सलावा अपर गंगा केनाल बोलते हैं, उनकी भी मेजर रिपेयरिंग हो चुकी है। जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग पूरे मार्ग में पथ प्रकाश की व्यवस्था अच्छे से हो, इसलिए विगत वर्ष में यदि कोई कमी रह गई उसको भी ठीक दुरुस्त कराते हुए वो व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को अतिरिक्त आजीविका और आय का अवसर प्राप्त होगा। वहीं प्रदेश के प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने के राष्ट्रीय अभियान को भी गति मिलेगी। अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्य रात्रि से लागू होगा डायवर्जन। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ आज का विषय लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले ये गीत सुनना बहुत जरूरी है।

जी हाँ श्रोताओ, अभी आपने ये जो गीत सुना उस गीत में कुछ ऐसा था जो हम सभी, जिसको प्रकृति कहते हैं, जी हाँ, पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं और हवा घुंघरू बजाती है। तो इसका मतलब है कि प्रकृति तो संगीतमय है। जी हाँ श्रोताओ, प्रकृति संगीतमय है, लेकिन इन सभी चीजों से मिलकर, जिन्हें हम वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियां, समुद्र, पशु पक्षी कहते हैं, जी हाँ, इन सब से मिलकर बनती है हमारी सुंदर प्रकृति। श्रोतो, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में मनुष्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन इस विकास की दौड़ में उसने प्रकृति का भी अत्यधिक दोहन किया है और उसका परिणाम ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, जल संकट, प्रदूषण और जैव विविधता का विनाश, इतनी सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई। इन समस्याओं के प्रति श्रोताओं, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक करने के लिए ही और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से ही प्रत्येक वर्ष यानी आज के दिन 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हम सभी मनाते हैं। श्रोताओ, प्रकृति केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करती बल्कि संपूर्ण जीवन चक्र को संतुलित बनाए रखती है। अगर पेड़ नहीं तो सांसें नहीं, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां हमें जीवनदायिनी जल उपलब्ध कराती हैं, तो मिट्टी अन्न उत्पन्न करती है। इसके अलावा वन्य जीव जो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। श्रोताओं, यदि सोचा है कभी कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? जी हां, इसका उत्तर है मानव जीवन पर, यानी हम सभी के जीवन पर। साथियों, प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना ही नहीं है, बल्कि वायु, भूमि, वन, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित रखना भी है। यह हम सभी जानते हैं कि आज के समय में प्रकृति के सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं, या यूं कहें कि आज प्रकृति अनेक समस्याओं का सामना कर रही है, जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, विकास के नाम पर औद्योगिकरण बढ़ा, शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में श्रोताओं जंगल काटे जा रहे हैं, उनकी जगह सीमेंट और कंक्रीट के महल खड़े किए जा रहे हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास जो भगवान ने उनके लिए बनाया था

0: उसको नष्ट किया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का जो संतुलन है श्रोताओं, वो बिगड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस जो गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण हमारी जो धरती का तापमान ना लगातार बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हम सभी देखते हैं अभी बरसात का मौसम है, कहीं पानी की बूंद नहीं है तो कहीं बाढ़ ने विनाश कर दिया है। श्रोताओं, ये विनाश जो हो रहा है इसका कारण एक बार अगर हम गौर से सोचें, विचारें, तो कोई जीव जंतु नहीं बल्कि मनुष्य है जो अपने लालच में आकर इन सब परिस्थितियों को खड़ा कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है। आज क्या पेड़ों का मूल्य हमें पता नहीं है? जब हम तपती धूप में जा रहे होते हैं और कोई हमें पेड़ दिख जाता है तो हम उसके नीचे खड़े होकर सुस्ताते हैं, या यूं कहें कि सांस लेते हैं, अपने आप को ठंडक देते हैं। इनके मूल्य को हम कैसे भूल जाते हैं? बहुत सारी बातें अभी आपसे और करेंगे, लेकिन उससे पहले यही प्रकृति से जुड़ा हुआ एक और गीत सुन लेते हैं।
1: ऊपर वाले ने
2: समझो।

श्रोताओ, हम बात कर रहे थे आपसे पेड़ पौधों के बारे में। श्रोताओ, हमारे भारत देश की तो परंपरा और संस्कृति भी ऐसी है कि ये देश हमेशा से प्रकृति पूजक देश रहा है। हमारे देश में वृक्षों, नदियों, पर्वतों और पशु पक्षियों को सम्मान देने की हमेशा से परंपरा रही है। पीपल, बरगद, तुलसी ऐसे वृक्षों की पूजा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है। श्रोतो, हम सभी को याद होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शाम होने के बाद पेड़ के पत्ते मत तोड़ो क्योंकि वो सोए हुए होते हैं। पीपल के पेड़ को काटने नहीं दिया जाता था, कहते थे कि इस पर देवताओं का वास होता है। तुलसी हर घर में सुख समृद्धि का वास लेके आती है। तो श्रोताओ, ये सभी जो चीजें हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति में शामिल हैं। हम इनका पूजा पाठ करते हैं, इनमें आस्था रखते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही हस्तांतरित करते हैं। फिर कहां कमी रह जाती है कि जिससे हम अपनी ही प्रकृति से छेड़छाड़ कर देते हैं और उसको संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। जी हां, आज प्रकृति को संरक्षण करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है स्वच्छ वायु और शुद्ध जल के लिए, खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए। श्रोताओ, भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण देने के लिए और पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति संरक्षण आवश्यक है। श्रोताओ, हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं और अभियान चलाती है। हम सब भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ये बहुत जरूरी है। तभी हम नमामि गंगे जैसे अभियान हैं उनको पूर्ण साकार रूप दे पाएंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे प्रोग्राम हैं उनको हम सही रूप दे पाएंगे, या अब यूं कहें कि वन महोत्सव मना पाएंगे और स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ पाएंगे। साथियों, इन अभियानों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों के अंदर प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना भी विकसित करना होता है। श्रोताओ, प्रकृति संरक्षण के लिए छोटे छोटे से उपाय करके हम सब इसको बचा सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। और श्रोताओ, पौधे लगाकर हमें भूल नहीं करना चाहिए कि उनको देखभाल की भी जरूरत होती है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। जिस तरह हम अपने छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने जो लगाए गए पौधे हैं उनका भी ध्यान बिल्कुल उसी तरह से रखना है। समय समय पर पानी देना, धूप से अधिक धूप से बचाना, ये सब चीजें हैं जो पौधे को बड़ा एक वृक्ष के रूप में खड़ा करते हैं। और सच माने श्रोताओ, तो जब आप एक पौधे को लगाते हैं और उसे बड़ा करते हैं तो जो खुशी होती है ना, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इसके अलावा जो हम पानी की बर्बादी करते हैं और अक्सर देखा जाता है, उसको थोड़ा सा विवेक के साथ, ज्ञान के साथ उपयोग करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें देना है। सिर्फ हम उसका फायदा

लें और इस दुनिया से चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? इसके अलावा ऊर्जा की भी बचत करें और वन्य जीवों की जो प्राकृतिक आवास है श्रोताओं, उनकी रक्षा करना हम सभी का पहला कर्तव्य है। और पर्यावरण संबंधी जितने भी कानून हैं उनका पालन भी हम सभी को करना चाहिए। श्रोताओं, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इसका संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्था का कार्य नहीं, बल्कि हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम आज से ही पर्यावरण के प्रति सजग होकर छोटे छोटे से कदम ही उठाएं, तो यकीन मानिए हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित और सुंदर बना सकते हैं। तो आइए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर हम सभी आज ये संकल्प लें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, हरित एवं सुरक्षित पृथ्वी का निर्माण करेंगे।

श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील

का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए यह संशोधन

विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव।
नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

0: इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की दो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोता, उस समय स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब है।

श्रोताओ, मोहम्मद रफी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म जिगरी दोस्त का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की ही आवाज में फिल्म जीने की राह का ये गीत।

श्रोताओं, मोहम्मद रफी गा रहे थे आनंद बख्शी के बोल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म थी जीने की राह। आइए अब सुनते हैं फिल्म नया दौर से ये गीत, जिसे आवाजें ली हैं बलबीर, मोहम्मद रफी और साथियों ने। गीत के बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीत है ओपी नैयर का।

श्रोताओ, मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नया दौर से ये गीत। इसी के साथ कार्यक्रम भारत भारती अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं कुछ और गीत।

श्रोताओं, वाणी जयराम गा रही थी गुलजार के बोल, बसंत देसाई के संगीत निर्देशन में फिल्म थी गुड्डी। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर।

श्रुतवाणी जयराम गा रही थी गुलजार के बोल, बसंत देसाई के संगीत निर्देशन में फिल्म थी गुड्डी। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, शागिर्द फिल्म के इस गीत को स्वर दिया था लता मंगेशकर ने, शब्दकार थे मजरूह और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, मुकेश के गाए फिल्म मिलन के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी

0: आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की पहली तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbh region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders.

0: Floodwaters continue to recede in most affected areas. However, relief and rehabilitation efforts remain in full swing. Prime Minister Narendra Modi today met members of parliament from Assam in New Delhi and discussed the prevailing flood situation in various parts of the state. In a social media post, the Prime Minister said the centre is working closely with the Assam government to assist those affected by the floods. Meanwhile, the IMD has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Vidarbha during the next 2 days. The IMD issued an orange alert for heavy rainfall for Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh till the 31st of this month. Benchmark domestic equity indices ended nearly flat today. The Sensex dipped 70 points to close at 76,766. The Nifty dropped 11 points to settle at 23,985. On to sports. In shooting, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon secured the bronze medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the ongoing ISSF World Cup in Hangzhou, China today. With this, India's medal tally at the tournament has risen to 4, including 1 gold, 1 silver and 2 bronze. At the Commonwealth Games, India's Srihari Natraj qualified for the semi-final of men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland today. Athlete Vishal TK progressed to the semi-finals of men's 400-meter race. Para-swimmers RVBK Budijina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle S13 final. India is currently placed at the 8th position in the overall standings with 10 medals, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. At ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixing event. That is all in the news at 9. Good night.
1: लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज की खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निज़ाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जून के महीने में सनअती पैदावार की शरह तरक्की पिछले 23 महीनों की बलंदतरीन सतह 7.3% हो गई है। ओडिशा में शदीद बारिश के सबब बड़े दरियाओं में तुगयानी आने की वजह से सैलाब की संगीन सूरतहाल पैदा हो गई है। अगले 2 रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते के लिए ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिस टीम मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। ये बिल पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। ये कानून सख्त जुर्माने जैसे 10 साल तक की कैद

10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार करार दिए गए मुजरिमों की जायदाद जब्ती जैसे अहम इंतजाम का इजाफा करेगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के हालिया वाकयात का नोटिस लेते हुए फैसला किया कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। डीएमके के दयानिधि मारन ने बहस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट मरकजी मौजू है जो यकसा नहीं है और तलबा मुखालिफ है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर तलबा के मफादात के तहफ्फुज़ में नाकाम रहने और निजाम तालीम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलबा से किए गए वादों को पूरा करे। मोहतरमा गांधी ने मजीद कहा कि नौजवान निजाम तालीम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं और जवाबदेही तय करना चाहते थे। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज, टीडीपी के लाभू श्री कृष्णा, शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दिगर अराकी ने पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लिया। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट तरमीम बिल 2026 को मुतारफ कराया। बिल के तारुफ के दौरान अपोजिशन अराकीन ने तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा आराई जारी रहने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया मुलगीर एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस अहलकारों के जख्मी होने के इल्जाम की मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानबदाराना तहकीकत जरूरी हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे कम उम्र तलबा जिनका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी कि एहतजाज से मुतालिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद महफूज रखे जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन दरखास्तों की समाअत कर रही थी जिनमें एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। अदालत आलिया ने कहा कि तहकीकात में उन 200 से ज्यादा जख्मी पुलिस अहलकारों के अहल खाना के खदशात को भी मलहूज रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम रियासतों को जहां एहतजाज हुए हिदायत दी कि वो एहतजाज से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरों की फुटेज, वायरलेस मुआसलाती रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग्स और दिगर तमाम डिजिटल शवाहिद महफूज रखें। अदालत आलिया ने यह भी हुक्म दिया कि एहतजाज करने वाले तलबा से मुतालिक इकट्ठा किया गया तमाम डिजिटल डेटा महफूज रखा जाए ताहम इसे अवामी सतह पर जारी न किया जाए। बेंच ने दिल्ली हुकूमत को दर्ज एफआईआर की तहकीकात जारी रखने की इजाजत दी लेकिन ये भी वाजे किया कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने तक एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। इसके अलावा बेंच ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज से भी दरखास्तों में आयद किए गए इल्जाम पर जवाब तलब किया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दाखिले उमूर के रियासती महकमे को हिदायत दी है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर रियासत भर में हाल ही में मुजाहरा करने वाले तलबा के खिलाफ सभी दर्ज मामले वापस ले ले। एफआईआर वापस लेने का अमल मुतालिका अदालतों से इजाजत मिलने के बाद शुरू होगा। मुंबई, पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे अहम शहरों में एहतजाज हुए थे। ये कदम मरकज की उस गारंटी से मुताबकत रखता है कि मुजाहरों में शामिल तलबा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिहार और आसाम की रियासती हुकूमतों ने उन लोगों के खिलाफ मामलात और दिगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जो मुबैना तौर पर नीट यूजी इम्तिहान में बेजाबतगियों के सिलसिले में एहतजाज में शामिल हुए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज अपनी सदारत के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में किताबों के इजरा की एक खसूसी तकरीब की सदारत की। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने 5 यादगारी किताबों का इजरा किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि सदर का आईनी ओहदा महज एक एजाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना उनके जाती ख्वाबों से भी बढ़कर है। हुकूमत ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक मुल्क भर में चीनी के ताजिरों के लिए जखीरा

0: हद मुकर्रर करने का फैसला किया है। सारफीन की उम्र, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद जखीरांदोजी को रोकना, क्यास आरई पर मबनी तजारत की हौसला शिकनी करना और मुनासिब कीमतों पर चीनी की मुसलसल दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नाम निहाल कानून साल असम्बली इंतखाबात को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से दुनिया की तवज्जो हटाने और खित्ते में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने की कोशिश करार दिया है। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इंतखाबात को महज दिखावा करार दिया।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: कल रावलाकोट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़िदा एक तवील मार्च के दौरान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसके बाद पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कम से कम 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक कई जख्मियों की हालत नाजुक है, जिससे हलाक होने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है। सनती पैदावार के इशारे IIP के जरिए पैमाइश करदा भारत की सनती पैदावार इस साल जून के महीने में 23 महीनों की बुलंदतरीन सतह 7.3% हो गई है। हुकूमत की जानिब से आज जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक चार अहम शोबों ने जून के महीने में मुस्बत नमू का मुजाहरा किया। इशारे में सबसे ज्यादा हिस्सा रखने वाले मैनुफैक्चरिंग के शोबे ने 7.8%, बिजली और गैस फराहमी के शोबे ने 10.6% नमू का मुजाहरा किया। वहीं पानी की फराहमी, निकासी और फजले के बंदोबस्त के शोबे की नमू 6.1% रही। ताहम कानकनी और खुदाई के शोबे ने निस्बतन 1% की मोतदिल शरह नमू का मुजाहरा किया। उड़ीसा में मॉनसून की शदीद बारिश के पेश नजर रियासत भर में अहम दरियाओं में तुगयानी आने के बाद सैलाब की हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। बेतरानी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि महानदी में भी पानी की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से इससे मुतासिर होने वाले अजला में तशवीश में इजाफा हो गया है। IMD ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और दीगर 13 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और हसास मकामात पर हंगामी सूरत हाल से निपटने वाली फोर्स तैनात कर दी गई है। मजीद तफसील हमारे नाम निगार से।
2: ओडिशा में मानसून की शदीद बारिश के सबब अहम दरियाओं में पानी की सतह में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, जिससे मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में खदशात बढ़ गए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी ओडिशा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बारगढ़ और झारसुगुड़ा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और कुदरती आफात से निपटने वाली टीमें तैनात कर दी हैं। बचाव और हंगामी सूरतहाल से मुतालिक तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। एहतियाती इकदामात के तहत कुछ जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे, जबकि कुछ हिस्सों में रेल खदमात भी मुतासर रह सकती हैं। रियासती हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि सूरतहाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और सभी जरूरी एहतियाती इकदामात किए जा रहे हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: रियासत केरलम के 10 जिलों में शदीद बारिश से मुताल्लिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: रियासत केरलम के 14 में से 10 जिलों में शदीद बारिश से मुताल्लिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाम तक 4 मजीद जिलों में भी इस वार्निंग को जारी कर दिया गया है। पूरे केरलम में अगले 4 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लूरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: इस दौरान भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 2 रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने इस माह की 31 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जापान के जनूबी सूबे कुमामोटो में 7.1 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया है, जिसके नतीजे में हजारों घरों की बिजली गुल हो गई, सड़कें टूट गईं और कम से कम 50 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक कई अफराद जुजवी तौर पर मुनहदिम होने वाले एक शॉपिंग

0: accelerating reforms already, whether it's increasing, I'd say, domestic value addition or supplier ecosystems, or resolving implementation bottlenecks, supporting competitiveness by encouraging innovation so that we are able to export. So overall, the entire objective of this mission is not just import substitution and stopping, you know, toys from coming into India, for coming into our markets, but instead creating globally competitive Indian brands that can not just wide local audiences, but also look at audiences around the world.
1: Thank you so much, Vinod Kumarji, for being with us on this very intensive and in-depth discussion on how the toy industry is going to develop with the government support, especially when it comes to manufacturing, serving both the export market and the domestic market, while at the same time also ensuring that there is a development of a highly skilled workforce and employment is generated, because our entire purpose is to ensure that Viksit Bharat 2047 is achieved with the Atmanirbhar Bharat already policy in place, DPIIT scale and rapid unit of the Union Ministry of Commerce and Industry playing a very important role in this regard. Thank you so much, Vinod Kumarji, for being with us on this program on Akashvani.
0: Such a pleasure to be here. Thank you for having me.
2: You were listening to a discussion on government's plan to transform India into a global toy manufacturing hub. The participants were Vinod Kumar, President, India SME Forum, and Arjun J. Chaudhary, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about the program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 92890940044.
3: Money Talk.
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एसीमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
5: हिमा बिंदु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत धन्यवाद
5: जी। हिमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले एक बहुत ही ऐसा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जहां पर हम भारत को खेल की दुनिया में अग्रणी बनाने की बात करते हैं। सरकार के लक्ष्य की अगर बात करें तो 2036 तक भारत को दुनिया के अग्रणी खेल देशों में शामिल करने और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने का विजन हम लेकर के चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी आज की नीतियां हैं और जिस तरह से हमारी जो तैयारियां चल रही हैं वो किस दिशा में जा रही हैं और अभी तक कहां तक हम पहुंच चुके हैं और आगे हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अवसर आने वाले हैं?
6: जी, अगर हम नीतियों के बारे में बात करें तो पिछले साल में खेलो भारत नीति लागू हुआ है और इसका अगर हम इसमें क्या है अगर इसमें देखा जाए तो उसमें 5 स्तंभ की बात होती है। विश्व मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल और खेल को जन आंदोलन रूप में कैसे बनाना है और शिक्षा के साथ खेल को कैसे हमको एकीकरण करना है, ये हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसी से बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने रहती है। अगर अवसर की बात करें, हम ये सब तो हासिल करने की जरूरत है, इस सबको सशक्तिकरण करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमको इस दिशा में हम जब जाते हैं तो बच्चों को खेल से जुड़ने का प्रयास हम सबको करना है और ये सिर्फ खेल से नहीं और खेल और शिक्षा को एकीकरण से ही ये हो सकता है। उनको जब सुविधा सही टाइम पे देंगे, सही टैलेंट खोजना, हमको टैलेंट पूल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना, यही हमारा सबसे ज्यादा अवसर है
5: जी। हिमा जी, खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो गेम्स हैं, जो खेल खेले जाते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत, वो स्कूल, यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा, विंटर, बीच, वाटर स्पोर्ट्स, ट्राइबल गेम्स तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो विस्तार दिया जा रहा है इन खेलों का, तो इससे आपको लगता है कि भारत की खेल संस्कृति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इसका सकारात्मक असर लगातार हमारे जो युवा प्रतिभा है, खेल प्रतिभा है, उस पर पड़ रहा है?
6: अगर हम खेलो इंडिया प्रतियोगिता की बात करें, ये सबसे सक्सेसफुल मैकेनिज्म रहा है स्पोर्ट्स के प्रति। इसमें बच्चों को एक तो खेल के ऊपर इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए और खिलाड़ी

0: खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे खेलो इंडिया प्रतियोगिता कहाँ कहाँ पे हुआ है देश में, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर से लेके बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है, दक्षिण भारत देश में हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। इसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है कि अंतर जातीय स्तर पे एक प्रतियोगिता कैसे किया जाता है। जब बच्चे उस कॉम्पिटिशन को देखेंगे उनको एक झिझक नहीं रहता है जब वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाते हैं। ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर हम पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अगर खेलो इंडिया गेम्स का योगदान देखेंगे, ये स्पोर्ट्स इवेंट जब भी होता है कोई भी राज्य में, उस राज्य ये सोचता है कि हम इवेंट के बाद क्या करें, मतलब हम लेगेसी प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो उसमें दिशा स्पोर्ट्स एक्सलेंस की तरफ जाती है। स्पोर्ट्स इवेंट से हम शुरू करेंगे पर वो जाता है एक्सलेंस के ऊपर और मेडल्स की तरफ जाता है। तो इवेंट्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एक्सलेंस, ये सब खेलो इंडिया प्रतियोगिता के द्वारा हासिल हुआ है।
1: हिमा जी, आप भारतीय खेलों की अगर हम बात करें और खेलो इंडिया की बात करें तो बहुत ही नजदीकी से आप इन्हें देखती हैं, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो योजना रही इसने वास्तव में ग्रामीण और जो छोटे कस्बों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर नई प्रतिभाओं को खोलने के अवसर हमें ज्यादा प्राप्त हुए, वहां से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके सामने आई हैं?
0: खेलो इंडिया का अगर आप उसका लक्ष्य देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एक है मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और फिर स्पोर्ट्स एक्सलेंस है। तो इसके द्वारा खेलो इंडिया में अगर आप ग्रास रूट को लेकर बात करेंगे, हम पूरे देश में 1000 के ऊपर खेलो इंडिया सेंटर है और
1: जी
0: इसमें 28,000 से ज्यादा बच्चे इसमें प्रशिक्षण को प्राप्त हो रहा है उनको। और अस्मिता लीग्स में महिला खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, ये सिर्फ महानगरों में नहीं छोटे शहर में भी होने लगा है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया गेम्स का ब्रांड है वो गांव तक आजकल पहुंच गया है। तो खेलो इंडिया में सिर्फ महानगर के बच्चे नहीं है, इसमें गांव वाले और छोटे शहर बच्चों को भी एक मौका मिल रहा है, एक पहचान मिल रहा है, एक दिशा भी मिल रहा है और सुविधा भी मिल रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो जिला स्तर पर भी बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा गया है। तो खेलो इंडिया और को ग्रास रूट्स में स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने जो सक्सेस देखा है खेलो इंडिया के द्वारा ग्रास रूट्स में, उससे ये अंडरस्टैंडिंग पे आ गया है कि हमको इसको और मजबूत करने की वजह से और रिजल्ट हमको आ सकता है।
1: यदि मैं आपसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करूं, जिसे हम सभी टॉप्स के नाम से जानते हैं, तो ये खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस तरह की जो योजना है तो भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक प्रदर्शन में काफी बदलाव हमें देखने को मिला है बीते कुछ समय में, तो इस योजना की आज की स्थिति और इसके फ्यूचर के बारे में और लोगों को इससे कितना फायदा हो सकता है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: हम टारगेट ओलंपिक स्कीम जो होता है इसके द्वारा खिलाड़ियों को कस्टमाइज सपोर्ट दिया जाता है। इसमें हम एक्सपर्ट कोचेस, खेल उपकरण, खेल विज्ञान विशेषज्ञ, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह दिया जाता है। और इस एथलीट को, जो चुने हुए एथलीट्स है, इनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है। आपने जैसे बताया कि इसका फल हम सबको पिछले 10 साल में ओलंपिक्स में, आशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में देखने को मिला है। इसमें हमको आगे ओलंपिक एस्पिरेशंस के हिसाब से अगर सोचे,
1: जी
0: ओलंपिक आकांक्षा के हिसाब से हम अगर सोचे तो और सपोर्ट करने की जरूरत है और उसी दिशा में बहुत पहल लिया जा रहा है। एंड डिलीवरी मैकेनिज्म जो है टॉप्स का, उसको मजबूत करने की प्रयास निरंतर जारी है।
1: हिमा जी, आज के समय में भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, तो ये जो युवा शक्ति है, और वो ऐसा युवा जो स्कूल और कॉलेज से निकल रहा है, वहां से पास आउट हो रहा है, तो खेल की संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहा है, इसमें और बेहतर बनाने के लिए ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है युवा जो है वो खेल संस्कृति का लाभ उठाए और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, खासतौर पे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर विश्व कप हो, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: हम अगर युवाओं के बारे में बात करें तो दो चीज हमेशा याद में आता है कि एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड और दूसरा है उनका फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो जरूरी है, ये दोनों। और इसमें अगर खेल में हम बात करें, हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से मेडल कितना आना चाहिए इसका बात होती है, पर हमको ये मिसिंग लिंक जो है कि इस पॉपुलेशन में कितने बच्चे खेल पा रहे हैं और वो युवा होने के बाद कितने साल खेल पा रहे हैं और खेल के ऊपर उनका समय कितना है, न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम खेल को

0: सिर्फ मेडल के रूप में नहीं, खेल को हम अगर जब सेफ सिक्योर लाइवलीहुड के रूप में, खेल को जब हम फिटनेस के रूप में, खेल जीवन के भाग के रूप में जब देखेंगे हम, तब ज्यादा से ज्यादा युवा और बच्चे हम खेल की तरफ आएंगे और तब हमको ऑटोमेटिकली मेडल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो भी पहल है खेलो इंडिया के द्वारा या टॉप्स के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा, स्कूल्स के साथ जुड़े रहने का जो प्रयास है, ये सब उसी के लिए है।
1: जी हेमा जी, इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं और 2026 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें 124 सदस्यीय भारतीय दल उतरा है। हमारी शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, स्वर्ण पदक के साथ में हमारी शुरुआत हुई है और मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीता, इतिहास रचा है। तो ये जो सफलता हमें मिल रही है, इस सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि अभी जो कुछ समय से हमारी योजनाएं खेल के लिए चल रही हैं और जो तैयारियां हमारी हैं उनका कितना योगदान है?
0: हमारा तैयारी ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक स्टेक होल्डर का रिजल्ट नहीं है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर जब कोलैबोरेशन में और कन्वर्जेंस में काम किया है उसी का नतीजा है ये आज हम देख रहे हैं। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे इंटरमीडिएट और ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया काम कर रही है, टॉप्स एलीट लेवल के लिए काम कर रही है, और अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स, एशिया गेम्स, ये सब हम देखें तो एक माहौल बन चुका है देश में। और नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हॉकी टीम, ये सब एक माहौल बन चुका है और सक्सेस इज कंटेजियस आज के दिन में स्पोर्ट्स में, और एक को देख के एक और बढ़कर एफर्ट लगा रहे हैं। ये सबको ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस, एक्सपर्ट कोचेस, ये सब मदद हो रहा है और आगे हम ये उम्मीद है कि हम इससे और गुना मेडल देश के लिए आएगा, उसी के लिए प्रयास है।
1: हिरमा जी, एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो साल 2014 में भारत ने 57 पदक जीते थे और 2023 में रिकॉर्ड 107 पदक हासिल किए, लगभग दोगुने तक हम पहुंच चुके थे। तो क्या ये बेहतर खिलाड़ियों का परिणाम आप मानती हैं या जो हमारी देश की सशक्त हुई खेल नीति है उसका असर है?
0: दोनों को क्रेडिट देने की जरूरत है इसमें,
1: जी
0: क्योंकि जब आपको इसमें अगर एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट अगर देखा जाए तो जब नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला टोक्यो ओलंपिक्स में,
1: जी
0: तब उसके बाद एक उम्मीद आई है कि एथलीट्स में कि हम भी कर सकते हैं, और
1: जी
0: एक माहौल भी बन गया कि पूरे देश में कि अगर नीरज चोपड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का स्ट्रेंथनिंग करना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको मजबूत करना, खेल विज्ञान विशेषज्ञों को बहुत ताकत देना, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को ताकत देना,
1: जी
0: एथलीट का कस्टमाइज सपोर्ट देना, टॉप्स के द्वारा हमारा सेंटर्स में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जुड़ के काम करना, तो ये कन्वर्जेंस, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और जो हम मजबूत करने का जो भी एफर्ट्स है इसी का नतीजा है।
1: हिमा जी, अभी आपने ओलंपिक का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर हम पैरालंपिक का यहाँ पर जिक्र करते हैं तो भारत ने 2016 में 4 पदक जीते थे पैरालंपिक में, वहीं 2024 में 29 पदक जीते। ये बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि रही है भारत के लिए। तो पैरा खिलाड़ियों का जो ये पहले की तुलना में बेहतर हम परिणाम देख रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है उन अवसरों की ओर इशारा करता है जो उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे की अगर योजना की हम बात करें तो किस तरह के और बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: अगर हम पैरा खेल की बात करें, ये तो मानना पड़ेगा कि पैरा एथलीट्स जो है हमारा, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है।
1: जी
0: हम अगर जब वो मेडल जीतते हैं, जो उनका चैलेंजेस पार करके जो मेडल जीतते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसको रिकॉग्नाइज करते हुए जो सपोर्ट उनको मिल रहा है हमको टॉप्स के द्वारा, टॉप्स आजकल पैरा एथलीट्स भी टॉप्स में है,
1: जी
0: और हमारा खेलो इंडिया एथलीट्स जो हमारा उत्कृष्ट एथलीट्स को हम जो सपोर्ट करते हैं उसमें भी पैरा शामिल है। इसके अलावा डेडिकेटेडली खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुआ है, उसमें से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट उस खेलो इंडिया एथलीट्स 6 एथलीट्स पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में।
1: जी
0: तो हमको ये आगे जाके पैरा खिलाड़ी जो भी है उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्लासिफायर्स को बनाने की जरूरत है, एक्सपर्ट कोचेस को इसमें बनाने की जरूरत है हमको, और बहुत सारे फैसिलिटीज। हम खेलो इंडिया में ये भी स्टेप लिया है कि अगर कोई प्राइवेट एकेडमी एक्सेसिबिलिटी के साथ है, वो पैरा फैसिलिटी के लिए अक्रेडिटेशन लेना चाहती है, वो भी सुविधा आज के लिए अवेलेबल है। तो हम पैरा अक्रेडिटेड एकेडमीज, जो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हो सकता है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आज के दिन में। हम उनके लिए ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र अवेलेबल करने की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा मेडल आने की चांसेस है।
1: जी हिमा जी, बिल्कुल, कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। देश में खेल संस्कृति विकसित करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और कई

0: ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं जो बहुत ही छोटी जगहों से आए हैं हमारे सामने, तो इनकी सफलता और भारत की मौजूदा खेल नीति और भविष्य की बात करें तो इनके बारे में आपके विचार क्या होंगे?
1: जो बच्चे आते हैं खेल में, उनके लिए एक भूख होता है, एक लक्ष्य होता है। बहुत बच्चों के लिए एक अपवर्ड मोबिलिटी की मौका होती है स्पोर्ट्स। तो हमको इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ बहुत बच्चों को हमको नर्चर करने की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल में आना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एकीकरण हो जाता है।
0: जी
1: और हमको देश में बहुत सारे प्रशिक्षित कोचेस का जरूरत है।
0: जी
1: हमको पीईटी है, पीईटी को हम ग्रास रूट कोचेस को डेवलप करने की जरूरत है। वो हमारा देयर और आईज ऑन द ग्राउंड, तो
0: जी
1: ये प्रशिक्षित कोचेस को बनाने का बहुत जरूरत है। और जैसे बताया था कि टैलेंट खोज और टैलेंट डेवलपमेंट सही टाइम पे करे, सही तरीके से करे, तब हमको ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त करने का अवकाश है।
0: जी
1: और हम सबको और ज्यादा कन्वर्जेंस करने की जरूरत है। इनके लिए जो भी सुविधा स्कीम कानून मजबूत करने की जरूरत है, वो सबकी दिशा में ही प्रयास और सोच दोनों जारी है।
0: हेमा बिंदु जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद निखिल।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एस हेमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी पौड़ी से प्रस्तुत है जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित विभिन्न खेल गतिविधियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम खेल दर्पण। मानव जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये शारीरिक और मानसिक विकास के मुख्य आधार हैं। खेलों से अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व करने की क्षमता जैसे जीवन कौशल विकसित होते हैं। ये तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और जीवन को संतुलित रखते हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होने वाले प्रमुख खेलों में से एक खेल है खेल महाकुंभ। युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति से प्ले ग्राउंड संस्कृति की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा विभाग और खेल विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के इतर इस वर्ष खेल महाकुंभ कुछ बदलावों के साथ आयोजित किया गया। खेल महाकुंभ के बारे में हमने बात की खेल महाकुंभ के नोडल अधिकारी श्री भगवान गुसाई से।
1: वित्तीय वर्ष 25-26 में खेल महाकुंभ का जो स्वरूप, उसमें शासन स्तर से बदलाव किए गए। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में खेल महाकुंभ का स्वरूप था, सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता, उसके पश्चात विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता, फिर उसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। जिसके स्वरूप में बदलाव करते हुए सर्वप्रथम जो न्याय पंचायत की प्रतियोगिताएं होती थी उसको स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के नाम से जाना गया। उसके पश्चात विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, फिर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और अंत में

0: मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के दो कैटेगरी में आयोजित की गई, अंडर 14 बालक बालिका और अंडर 19 बालक बालिका, जिसमें चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो और मुर्गा झपट। इसमें जिन भी प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया उनको नगद पुरस्कार के रूप में 300, 200 और 150, साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अगले स्तर पे जो प्रतियोगिताएं हुई, विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसमें विधानसभा स्तर पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 500, 400, 300 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से और साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में हमारी जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की टीमों ने प्रतिभाग किया, उन्होंने कुल 93 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 21 स्वर्ण, 32 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल रहे।
1: खेल महाकुंभ के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली स्थानीय जन प्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के तहत न्याय पंचायत घंडियाल में हो रही खेलकूद प्रतियोगिता के नोडल श्री हनुमंत कुकृति से हमने बात की।
2: इस समय मैं हूं सीकू के ऐतिहासिक मैदान में और यहां पे न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं नोडल अधिकारी न्याय पंचायत घंडियाल श्री हनुमंत कुकृति जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी खेल विधाएं आज यहां पे न्याय पंचायत इस तरह खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजित की जा रही हैं।
3: यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई, इसमें एथलेटिक्स हो गया, खो खो हो गया, मुर्गा झपट हो गया, जो हमारे पारंपरिक खेल है उसको, विधा को भी काफी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो ये खेल है वाकई में ना कहीं जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं, उन ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जिनको न तो कोई सहयोग मिल पाता है, गरीब बच्चे रहते हैं, तो ये खेल महाकुंभ वाकई न कहीं संजीवनी का काम करेगा उन छात्रों के लिए, उन परिवारों के लिए, या उस छात्र को जिसको सुविधा नहीं मिल पा रही है। खेल महाकुंभ अपने आप में जैसे कि इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है कि वाकई में महाकुंभ है, क्योंकि ये केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जितने भी ग्रामीण प्रवेश हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं या विद्यालय में आते हैं, उन सब के लिए वाकई में खुला एक मंच है। और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कहीं ना कहीं समाज के लिए और उस जो छात्र हैं और जो जिसने विद्यालय छोड़ दिया हो या त्याग कर दिया, उनके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा मंच महाकुंभ है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जीवन का एक अमूल्य मूल मंत्र है, तो उसको देखते हुए वाकई ना ये जो हमारे खेल विधाएं होती हैं, ये शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक रूप से कहीं ना कहीं सबलता और प्रबलता प्रदान करती हैं।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल की सभी न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के उपरांत जनपद पौड़ी की 6 विधानसभा स्तर पर विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसके बाद रांची स्टेडियम पौड़ी में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन दिनांक 15 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के मध्य किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना बुटोला ने किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
4: हमारे युवा कल्याण के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी मेरे शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनपद से आए हुए, विभिन्न जनपदों से आए हुए बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर बहुत दूर से आए हुए हैं और अपने अपने लक्ष्य को पूरा करें। पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन आज जमाना बदल गया है और सभी लोगों के पेरेंट्सों की भी सोच बदल गई है। तो आज के जमाने में आप अपने बच्चे से सभी लोग यही कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे और भी प्रताप। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और हम सब देख रहे हैं कि आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है और आप सभी बच्चों को अनुशासन के साथ खेलना है। इसी के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
1: सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन समारोह में उपस्थित जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री रविंद्र कुमार सिंह ने कहा,
5: सांसद चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो कि पौड़ी जनपद में आयोजित की जा रही है, इसमें 11 विधानसभा के प्रतिभागी भाग ले, इसके अलावा कोटद्वार और अन्य जो 5 विधानसभा है जिनमें नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग

0: केदारनाथ व रामनगर, इन सभी विधानसभा के जो विजयी प्रतिभागी है उनके द्वारा यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता आज दिनांक 15 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। जो सांसद स्तरीय जो चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है उसमें अपना बढ़ कर भाग ले और अपना सर्वोच्च और अपने इस संसदीय क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करें।
1: विगत वर्ष से विलुप्त होते पारंपरिक खेल मुर्गा झपट और पिट्ठू को खेल महाकुंभ में शामिल कर उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पारंपरिक खेल मुर्गा झपट के संबंध में हमने बात की जनपद पौड़ी गढ़वाल में पारंपरिक खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश कंडारी जी से।
2: श्रोताओं, इस समय हम हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में और यहाँ पे खेल महाकुंभ के अंतर्गत सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल स्पर्धा में कुछ पारंपरिक खेल भी इस बार आयोजित किए जा रहे हैं और ये एक चर्चा का विषय बने हुए हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं पारंपरिक खेलों के बारे में श्री सतीश कंडारी जी।
3: पारंपरिक खेल के अंतर्गत जो मुर्गा झपट प्रतियोगिता है वह पिछले साल से उन शुरू की गई थी और इस बार भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने पिछले बार प्रतिभाग ना किया हो और अलग अलग जो भार वर्ग रखे हुए तो उनमें इस साल फिर उनके द्वारा मौका दिया गया। और निश्चित तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि पारंपरिक खेल के अंतर्गत मुर्गा झपट में हमारे पौड़ी जनपद से जो 5 भार वर्ग हैं, चाहे वो मैं अंडर 14 की बात करूं, चाहे मैं अंडर 19 की बात करूं, दोनों में ही चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों ने ही विशेष उत्साह दिखाया और उनके द्वारा प्रतिभा किया गया। तो और अगर मैं सर थोड़ा सा जो ये पारंपरिक खेल है और उसमें अगर मैं विशेष तौर पे मुर्गा झपट की बात करूं, जो हमारा जो एरिना होता है इसका जो सर्कल बनाया जाता है वह 2 मीटर का रेडियस का एक वृत्त बना हुआ होता है जिसमें कि आपके और उसके साथ साथ एक एक मीटर चारों ओर से एक वर्गाकार टाइप का पूरा एक बॉक्स बना दिया जाता है और उसमें हमारे 5 वर्ग, जो क्योंकि मैं खेल महाकुंभ की बात कर रहा हूं तो यह 5 भार वर्ग में रखा गया है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, अंडर 14 या अंडर 19 में बात करता हूं। और अगर मैं नियम की बात करूं तो इसमें आपने देखा होगा सर कि जैसे पहले भी हो चुका है तो इसमें अगर मैं अंडर 14 में बालक की बात करता हूं या किसी भी वर्ग की बात करता हूं तो 2 बालकों के बीच में सेम भार वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और दोनों में अगर थोड़ा सा मैं नियम देखूं तो नियम में अगर आप बात करूं तो जिस प्रकार से मुर्गा एक नाम दिया गया है पारंपरिक मुर्गा झपट, तो उसी प्रकार एक बालक के द्वारा एक हाथ से पांव को पकड़ा जाता है, आगे पंजे को पकड़ा जाता है और दूसरा हाथ, अब वो स्ट्रॉन्ग हाथ कुछ भी हो सकता है उसका, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे हाथ से वो शोल्डर को पकड़ता है और इस प्रकार से हमारे रेफरी के द्वारा प्रतियोगिता शुरू की जाती है, बाउट शुरू की जाती है और 1 मिनट बाउट का समय दिया जाता है इसमें। तो इसमें जैसे ही शुरू किया जाता है तो दोनों जो प्रतिभागी होते हैं वो प्रतिभाग करते हैं, लड़ते हैं और तो बच्चों के द्वारा शोल्डर से पुश किया जाता है। और अगर उसमें आप देखेंगे सर, अगर बच्चे का चाहे मैं शोल्डर से हाथ अगर नीचे खिसक जाए या पांव छूट जाए जिस हाथ से उसने पांव पकड़ा है तो 1 पॉइंट दिया जाता है और वहीं पे बाउट रोक दी जाती है। फिर रेफरी दोनों को फिर तुरंत ही, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए तुरंत उनको फिर सेंटर लाइन पे खड़े करके फिर दोनों को फिर बाउट स्टार्ट की जाती है और इस प्रकार से 1 पॉइंट दिया जाता है। और अगर मैं अधिकतम पॉइंटों की बात करता हूं तो अधिकतम 3 पॉइंट दिए जाते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि जैसे ही रेफरी के द्वारा शुरू की जाती है और बच्चे जब शोल्डर से पुश करते हैं और पुश करते करते अगर कोई भी प्रतिभागी अगर अपने ओपोनेंट प्लेयर को जो आपका सर्कल बनाया है उस सर्कल से बाहर फेंक देता है, बाहर कर देता है, तो उसको रेफरी के द्वारा 3 पॉइंट दिए जाते हैं। और इसमें एक साइड हमारा ब्लू कॉर्नर होता है जो हम प्लेयरों को जर्सी भी दे सकते हैं, जो बिप्स देते हैं हम उनको, तो एक साइड ब्लू कॉर्नर होता है और एक साइड रेड कॉर्नर होता है। तो ये हमारे पॉइंट का वो चलता है। तो 3 हमारे राउंड्स होते हैं 1-1 मिनट के और उनमें फिर स्कोर दिया देखा जाता है कि सम्मानित रेफरी के द्वारा किसका स्कोर ज्यादा हुआ है। फिर वो दोनों को सेंटर में, जैसे ही बाउट खत्म हो जाती है दोनों को सेंटर में खड़ा करके जिस प्रकार से आपने देखा होगा बॉक्सिंग में दोनों के एक एक करके अंक बोले जाते हैं, तो उसी प्रकार हमारे मुर्गा झपट में भी रेफरी बीच में रहता है, एक साइड दोनों साइड खिलाड़ी रहते हैं उसके और फिर नंबर बोले जाते हैं, जिसके अधिकतम अंक होते हैं वह विनर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा मुर्गा झपट खेल चलता है।
2: तो आपने नियम कायदे विस्तृत

0: रूप से हमें हमें समझाए और इनके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताया। अच्छा, जैसे कि पारंपरिक खेलों को फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक तरह से मैं कहूँ कि विलुप्त के कगार पे हमारे पारंपरिक खेल थे, तो खासकर मुर्गा झपट की अगर मैं बात करूँ तो प्रतिभागियों में किस प्रकार उत्साह आप देख रहे हैं?
1: सर, अगर मैं प्रतिभागियों में उत्साह की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों का जो आज का जो टाइम है, आज के समय को, परिस्थिति को हम देखते हैं, तो इसमें बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल या अन्य जो हमारे गैजेट्स हैं उनके प्रति, उनके कारण बहुत ज्यादा रुझाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक खेलों के कारण, क्यों? क्योंकि इन पारंपरिक खेलों को बच्चे नहीं, उनके माँ बाप या मैं एक सोसाइटी के जो हमारे पुराने जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनके द्वारा इन खेलों को जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों को इन खेलों के प्रति उनमें उत्साह आए, क्योंकि जो और अन्य हमारे खेल हैं उन खेलों में थोड़ा सा माँ बाप या परिवार या समाज में, मैं बोलूं, सबको नियम कायदे की जानकारी नहीं होती, लेकिन मुर्गा झपट हो गए इस प्रकार के खेल में थोड़ा माँ बाप भी जानते हैं या समाज में कोई अन्य व्यक्ति भी जानता है कि किस प्रकार से इसको रूल या किस प्रकार से खेला जाता है, तो बच्चों को जैसे। और दूसरा, अगर मैं दूसरा जो हमारे माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये भी पता है कि मुर्गा झपट में कहीं ना कहीं जो हमारे शारीरिक पुष्टि होती है, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल फिटनेस कहते हैं, तो अगर मैं उनके कुछ कंपोनेंट्स तत्वों की बात करूं, क्योंकि हर खेल में आप देखते हैं कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा जो 100 मीटर दौड़ होती है, तो उसमें स्पीड को देखा जाता है। तो अगर मैं अपने पारंपरिक खेल में मुर्गा झपट में बात करूं, तो आपने देखा होगा जब बच्चों के द्वारा पांव या शोल्डर पे आपका बैलें हाथों से पकड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे संतुलन का जो क्षमता है उनके अंदर, उसको विकसित किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब आप वो बाउट कर रहे हैं, तो बाउट करते समय उनकी जो कोऑर्डिनेटिव एक एबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि दो तीन कंपोनेंट्स को एक साथ करना पड़ता है। जैसे आपने देखा हो कि बच्चे को एकदम से फुर्ती से शरीर को थोड़ा सा, क्योंकि बाउट एक दूसरे से हो रही, तो फुर्ती से शरीर को कभी लेफ्ट या राइट या डोज करना पड़ता है। दूसरा, आप देखेंगे एकदम से तेजी से स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हुए शोल्डर से पुश भी करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे इन शारीरिक पुष्टियों के जो हमारे तत्व हैं, इनके द्वारा भी बच्चों में उनको भी विकसित किया जा रहा है।
2: जनपद पौड़ी गढ़वाल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। अगर मैं महिला क्रिकेट की बात करूं, तो इस साल जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। जनपद में महिलाओं की बढ़ रही क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी के बारे में हमने बात की अंडर 19 नेशनल क्रिकेट टीम में चयनित कुमारी सलोनी से।
3: मेरा नाम सलोनी बिष्ट है, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गांव का नाम मरगांव है, जो कि खिरसू ब्लॉक में आता है। मेरे क्रिकेट की स्टार्टिंग गांव से हुई है। गांव में नरेंद्र भैया थे, उन्होंने मेरे को पूरा क्रिकेट खेलना सिखाया है। उस टाइम पे मैं अकेली लड़की थी, जो मतलब भैया लोगों के साथ खेलती थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे, जिससे कि उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट आए और क्रिकेट का नॉलेज हो। तो भैया लोगों के साथ ही मैंने सब कुछ सीखा है। इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, खास करके मेरी मम्मी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक दिन स्कूल गेम में क्रिकेट के ट्रायल्स आए, जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट के लिए, फिर नेशनल के लिए। गांव की लड़की के लिए नेशनल खेलना बहुत बड़ी बात है, खास करके तब जब उनके पास सुविधाएं ना हो, खेलने के लिए ग्राउंड ना हो। मैंने स्कूल्स गेम में क्रिकेट में 2 बार नेशनल खेला है। फिर उसके बाद गांव में भी काफ़ी टूर्नामेंट होने लगे लड़कियों के। अभी पाबो में हुआ था सडनली, तो वहाँ 50,000 का टूर्नामेंट था पहले, जिसमें हम फाइनल में रनर अप रहे। तो जैसे वो टूर्नामेंट लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, जिससे कि उन्हें क्रिकेट का नॉलेज हो, और उससे काफ़ी लड़कियाँ प्रैक्टिस करने लगी हैं गाँव में, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है आगे, कि और ज़्यादा लड़कियां गाँव से निकल सकती हैं क्रिकेट में। तो ऐसे टूर्नामेंट हर बार होने चाहिए, जिससे कि लड़कियों को खेल के प्रति थोड़ी रुचि आए और वो खेलें, उन्हें पता चले कि कौन से खेल कैसे खेले जाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि

0: ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और गांव में बहुत सारे जो करा सकते हैं लड़कियों के टूर्नामेंट, जो बॉयज़ के कराते हैं वो गर्ल्स के भी कराए ताकि गर्ल्स भी खेल पाए।
1: शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में हमने बात की क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक श्री राजपाल सिंह रावत जी से।
2: नमस्कार। आज के समय में जहां महिलाएं भी इस खेल के प्रति जागरूक हुई हैं, और देखा होगा कि पौड़ी जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है और उसमें महिलाएं प्रतिभाग करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि संसाधनों की काफी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश और जुनून है इस खेल के प्रति महिलाओं को आकर्षित करता है। जहां हमने देखा कि पौड़ी जिले के चौबटाखाल विधानसभा के 3 या 4 ब्लॉकों में महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है। जैसे कि इस वर्ष जनवरी माह में चौबटाखाल में, उसके बाद एक्वेशर विकास खंड के धरासू में, उसके बाद विकास खंड पोखड़ा के गंवाड़ी में, और जून के माह में अभी अभी हाल में विकास खंड पोखड़ा के बीनागार द्वारा महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संसाधनों की कमी के कारण इसे महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी जो जोश और जुनून उनका इस खेल के प्रति है, मैं तो चाहूंगा कि टेनिस बॉल यानी कि डे नाइट गेम से हर जगह महिलाओं के लिए इस खेल को रखा गया है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कई खिलाड़ी हमने ऐसे देखे हैं जो कि प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो प्रॉपर होता है, और बल्लेबाजी भी कही महिलाएं बहुत अच्छी करती हैं। जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की कि पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्रिकेट के प्रति जो लगाव है महिलाओं का, संसाधनों के माध्यम से अगर अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, अच्छी प्रतियोगिता होती है, और महिलाओं का और क्रिकेट के प्रति लगाव, ये निश्चित रूप से एक आने वाले समय में एक अच्छा आयाम स्थापित कर सकता है। जहां महिलाएं हमारे कृषि क्षेत्र में यानी कि एक गृह के रूप में रह जाती थी, आज वे मैदान पे आती हैं, अपना खेल के प्रति अपना जौहर दिखाती हैं। जहां हाथ में दराती कुदाल को छोड़कर जब महिलाएं मैदान पर आती है और अपने गेंद और बल्ले से अपना जौहर दिखाती है, तो देखने को मिलता है कि हमारे इस पहाड़ी अंचल में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।
1: जीवन में खेलों का महत्व और खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना और माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने बात की सहायक क्रीड़ा समन्वयक विकास खंड कोट श्री ज्योत सिंह राणा से।
3: खेलों के संबंध में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा खेलों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्त जीवन के साथ गहरा संबंध रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में हमारे छात्र छात्राएं और हमारे युवा आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो तनाव है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में जो अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हीं में से एक ग्रंथि है एड्रेनल नाम की, जो कि कोर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको रिलीज करती है, उससे हमारे जीवन में तनाव बढ़ता है। तो खेलों के माध्यम से क्या होता है, जब हम खेल गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारा जो कोर्टिसोल नामक ये जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डिस्ट्रॉयड होके, या आप यूं कहिए कि उसका स्तर कम होके, हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो जैसे कि डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंड्रोफिन हो गया, इन हार्मोन्सों का स्तर हम खेलों के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। तो सरकार के द्वारा समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष करवाया जाता है, जिससे कि समाज में निश्चित रूप से एक जो खेलों का स्तर है वो बेहतर होता जा रहा है। इसी के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना की अगर मैं बात करूं तो ये 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो 6 आयु श्रेणियां जो विभाजित की जाती है उसमें प्रत्येक, जो अगर ग्रामीण खेलों की बात करूं तो नए पंचायत स्तर पर प्रत्येक आयु वर्ग में जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14 जो ये 6 आयु वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत

0: प्रत्येक न्याय पंचायत से दो बालक दो बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है। और अगर मैं नगर पंचायत स्तर की बात करूं तो नगर पंचायत स्तर पर तीन बालक और तीन बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है। और जो हमारे नगर निगम स्तर के जो क्षेत्र हैं तो नगर निगम से छह बालक और छह बालिकाओं का प्रत्येक आयु वर्ग में चयन कर विकास खंड स्तर पर किया जाता है। विकास खंड स्तर पर जैसे कि आप आज विकास खंड कोड के प्रांगण से देख सकते हैं कि हमारी सात न्याय पंचायत और हमारे नगर पंचायत पौड़ी नगर निगम श्रीनगर आदि के बच्चे भी यहाँ पर विकास खंड स्तर हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जो प्रतिभागी प्रतिभा करेंगे उसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग से छह बालक और छह बालिकाओं का चयन जनपद स्तर के लिए किया जाएगा। और जब जनपद स्तर पर इन बालक बालिकाओं का जो चयन होगा तो प्रत्येक जनपद के प्रत्येक आयु वर्ग के 25 बालक और 25 बालिकाओं को जो हमारी सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 1500 रुपए प्रतिमाह जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाएगी, जो निश्चित तौर पर हमारे छात्र छात्राओं के लिए भविष्य में राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए उसे उन लोगों को अवश्यंभावी रूप से प्रोत्साहित करेगी। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस ओर पे आकर्षित करना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है इसके अंतर्गत एक फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों की संपूर्ण शारीरिक क्षमता का एक सटीक मापन 6 इवेंटों के द्वारा किया जाता है। ये जो हमारे 6 इवेंट होते हैं उसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो, फॉरवर्ड बैंड रीच, 30 मीटर फ्लाइंग रेस, 6x10 मीटर शटल रन और 600 मीटर रनिंग। ये जो प्रत्येक इवेंट होते हैं ये 10-10 नंबर का इनका जो क्राइटेरिया है और ये टोटल 60 नंबर का फिटनेस बैटरी टेस्ट है और ये 60 नंबर मार्क्स के आधार पर ही हम प्रतिभावान प्रतिभागियों का चयन कर पाते हैं और उसके बाद इनको छात्रवृत्ति हेतु इनके चयन करने में हमें आसानी रहती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो हम खेलों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन हमारे ग्रामीण एवं शहरी बालक बालिकाओं के लिए जो किया जा रहा है निश्चित रूप से इनके जो भावी जो परिणाम होंगे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के बच्चे एक तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही लेकिन साथ ही साथ उनका आने वाला जो भविष्य होगा वो सुखमय होगा और वो एक करियर के रूप में भी इसको अपना सकेंगे। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं के लिए जो समय समय पर निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं वो भविष्य में भी इसी प्रकार से आयोजित किए जाएंगे।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल का फुटबॉल के क्षेत्र में अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हाल ही में मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के बारे में हमने बात की स्थानीय फुटबॉल कोच श्री रविंद्र रावत जी से।
2: श्रोताओं इस समय हम हैं पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया खेल मैदान में और अभी यहां पर जय कंडोलिया महोत्सव के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल प्रतियोगिता थी उसका फाइनल हुआ है। खचाखच भरे इस स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने का अलग ही मजा है और इस टूर्नामेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रवि रावत जो कि जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत इस फुटबॉल प्रतियोगिता में संयोजक के रूप में रहे हैं। तो रावत जी स्वागत है आपका इस बातचीत में। रावत जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया?
3: इसमें 11 तो जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई इसमें 11 तो जो थी वो इंडिया से टीमें थी और एक टीम नेपाल से थी। तो
2: मैं अभी देख पा रहा था कि फुटबॉल मैच देखने के लिए

0: हजारों की संख्या में लोग यहां पे उपस्थित हैं और खचाखची स्टेडियम भरा हुआ है। पौड़ी और फुटबॉल का एक अनोखा ही रिश्ता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी, पौड़ी में तो फुटबॉल का इतिहास ही बड़ा अच्छा रहा है, और जहां बात आती है राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता की, तो उसमें तो लोग सारे दर्शक पहुंचते हैं फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए।
0: यहाँ पे एक कोच के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि जो लड़के हैं उनके साथ साथ अब स्थानीय जो बालिकाएं हैं वो भी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बालिकाओं का रुझान फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है।
1: जी, लड़कियाँ, पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ आई थी हमारे पास, और उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो है वो कोचिंग डिप्लोमा उन्होंने किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करके वो उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं, और अभी भी बहुत सारी बच्चे जो है छोटे बच्चियां हमारे पास आती हैं, और लड़कियों का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है फुटबॉल में, अगर वो आए और मेहनत करें तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है।
2: जनपद पौड़ी गढ़वाल में खिलाड़ियों का भविष्य स्वर्णिम है, ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच मिल रहा है, और हम कह सकते हैं कि आने वाला समय खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम साबित होगा। ये था खेल दर्पण पर आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। संकलन, वाचन, आलेख अशोक सिंह, कार्यक्रम प्रस्तुति अशोक कुमार की।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोता, इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित भोलानाथ से बांसुरी वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंडित भोलानाथ का बांसुरी पर बजाया राग यमन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आइए सुनते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग हंस ध्वनि।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग हंसध्वनि। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है अब समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे